सुप्रभात आगरा। आप सभी श्रोताओं की सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। साथियों, आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हो रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जन

0: सांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी आगरा की प्रातःकालीन सभा में। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। इस समय हम आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले नमन जननी जन्मभूमि को इस देश गीत के साथ।

हे माता, आप आनंद से परिपूर्ण हैं। आप एक अनंत चेतना हैं। आप परम सत्य की साकार मूर्ति हैं। संपूर्ण सृष्टि के संचालक हैं। हे परमेश्वरी, हम सबको आशीर्वाद देकर हमारा जीवन सफल करिए।

हे प्रभु, आप मेरे प्राणों के आधार हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य हैं, मेरी आत्मा के आंगन में निवास करने वाले सर्वस्व हैं। प्रभु, मेरा शरीर तो अब उस वृंदावन के समान हो गया है जहां मेरे तन रूपी आंगन में भक्ति और पवित्रता रूपी तुलसी का वन महक रहा है। शत शत नमन, शत शत प्रणाम।

आपके स्मरण मात्र से ही हमारा जीवन कष्टमुक्त हो जाता है, हमारे सारे पापों का प्रायश्चित होता है और हम इस भवसागर को पार कर लेते हैं। सांसारिक सुखों की चाहत और अहंकार का छोड़कर जब भक्त ईश्वर की शरण में जाता है तो उसे सच्ची शांति की प्राप्ति होती है।

0: प्रभु के इस गुणगान के साथ ही भक्ति संगीत पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आपको बता दें, जो भक्ति रचनाएं आपने सुनी उनमें स्वर थे जगजीत सिंह, आशित देसाई, हेमा देसाई और लता मंगेशकर और साथियों के। चिंतन में आइए सुनते हैं गुरु नानक देव जी के संबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार।
1: देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, गुरु नानक जैसी हस्तियां संसार में जब उनकी जरूरत होती है तभी आया करती हैं। ऐसी हस्तियों का काम यही होता है कि जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हों तथा जो बिगड़ते जा रहे हों उनको सही रास्ते पर लाएं। इस तरह की जितनी हस्तियां संसार में आज तक हुई हैं सबने अपने अपने वक्त पर उस जमाने के मुताबिक काम किया है। इसी तरह तरह तरह के मजहब कायम हुए, उनमें उसूली फर्क कहीं नहीं है, मगर वक्त और जगह के ख्याल से रस्म रिवाज तौर तरीकों में कुछ ऊपरी फर्क होता रहा। आज हम जितने झगड़े देखते और सुनते हैं वे सब झगड़े उसूली मामले के बारे में नहीं है, क्योंकि उसमें उन झगड़ों की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर झगड़े होते हैं तो वे रस्म रिवाज और तौर तरीके जैसी बाहरी चीजों के लिए होते हैं। हिंदुस्तान में जिस वक्त गुरु नानक देव का अवतार हुआ उस वक्त शायद इसी तरह के झगड़े फैले हुए थे। तभी उन्होंने हमको ये बताया कि उस वक्त जो दो धर्म जोरों से प्रचलित थे उन दोनों में कोई फर्क नहीं है और उसूलन दोनों एक ही हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर दो ही नहीं और भी कई मजहब प्रचलित हैं और सभी मजहबों के लाखों लाख करोड़ों करोड़ों लोग इस देश में बसते हैं। आज हमको फिर वैसे ही अवतार की जरूरत है जो हमको वही सबक सिखाए जो गुरु नानक देव ने सिखाया था। बदकिस्मती से आज हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम ऐसे दिन को जो निहायत शुभ दिन है हर साल मनाया करें, जिससे कम से कम हम जो भूले और भटके हुए हैं ये जान सकें कि जितने मजहब हैं सबका उसूल एक ही है। आपस के मजहबी झगड़े सिर्फ बेबुनियाद ही नहीं बेउसूल भी हैं। सारे संसार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि मजहब के कारण जितने भी झगड़े हुए हैं उनमें कोई ये नहीं कह सकता कि वो जीत गया और दूसरा हार गया। कोई आदमी किसी

0: मजहब को कभी भी नेस्त नाबूद नहीं कर सका और आइंदे भी नहीं कर पाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए और खास करके इस मुल्क के अंदर जितने भी मजहब फैले हुए हैं उनकी एक दूसरे से अदावत नहीं होनी चाहिए, उनका आपस में मेलजोल होना चाहिए और एक दूसरे को उनके ख्यालात जाहिर करने का मौका देना चाहिए, जिससे देश में सभी लोग शांति और सुख के साथ बस सकें और अलग अलग रास्ते से चलते हुए भी अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। आखिर मंजिल तो एक ही है, ये तो हमारे देश के अंदर आज से नहीं हजारों वर्षों से माना गया है। हमारे यहां जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी साधु संत हुए हैं, उन्होंने बताया है कि सबको एक ही जगह जाना है, चाहे कोई पूर्व पश्चिम दक्षिण या उत्तर के रास्ते से जाए। इसलिए ये कहना ठीक नहीं कि कोई पूर्व या पश्चिम से क्यों आता है, सबका मकसद वहीं पहुंचना है। अगर अपनी जिंदगी पाक है तो इसमें कोई शक नहीं कि हम वहां पहुंचेंगे जहां चाहे हम पूर्व पश्चिम दक्षिण या उत्तर के रास्ते से जाएं।
1: चिंतन में अभी आप सुन रहे थे गुरु नानक देव के संबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार। हम आकाशवाणी आगरा से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। साथियों, से थोड़ी देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। उसके ठीक बाद 6:45 पर किसान भाई सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज की वार्ता का विषय होगा कृषि क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग। जानकारी देंगे संजय वर्मा।

7:10 पर कार्यक्रम होता है स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर यादराम शर्मा की वार्ता प्रसारित होगी। विषय होगा जल चिकित्सा। आसपास 7:31 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। सुबह 8:45 पर गीत मंजूषा। सुबह 9:25 पर और सुर सरिता सुबह 10 बजे प्रसारित होंगे। इस बीच 9:45 पर लोक संगीत में आज हम आपको रविंद्र कुमार शर्मा के गाए कुछ लोक भजन सुनवाएंगे। शास्त्रीय संगीत में सुबह 10:30 पर सुनेगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का राग भैरव में बांसुरी वादन। आज के कलाकार, जी हां, सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम में आज होंगे स्टंट मास्टर वीरू देवगन। कुछ बातें कुछ गीत 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेगा। दोपहर 12 बजे कुछ नए नगमे नए तराने में 12:30 पर हमारी बहनें सुनेंगी कार्यक्रम घर संसार। दिन में 1:15 पर इस कार्यक्रम में चर्चा होगी सकारात्मक सोच से बढ़ाएं रचनात्मकता। मेरी माटी मेरा देश में नेहरू स्मृति दिवस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आप सुनेंगे अर्चना सिंघल की कहानी बूढ़ा बरकत और मुझे कुछ कहना है आज UPI धोखाधड़ी से बचे इस बारे में जानकारी बहनों को दी जाएगी। समय दिन में 1:15। भूपिंदर सिंह और मिताली भी सिंह के गाए कुछ गजलें हम आपको सुनवाएंगे। दोपहर 1:45 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। उपशास्त्रीय संगीत में दिन में 2:30 पर पंडित जगदीश प्रसाद का राग पहाड़ी में गायन होगा और विदुषी सविता देवी खमाज प्रस्तुत करेंगी। भूले बिस्र गीत दोपहर 2:45 पर गीत कुंजन दिन में 3 बजे सुनिएगा। हमारे युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी हर रोज की तरह संध्या 5:30 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी स्माइल मिशन विषय पर। वार्ता होगी ज्ञान और भाषा के बीच सेतु पुस्तकालय। वार्ताकार होंगे DPS दीपा सिंह। आइए जाने में कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। जीने की कला में आज का विषय होगा

स्वयं को त्यागे। संध्या 6 बजे ग्रामीण कार्यक्रम में लोकगीतों के अलावा फार्मर हिस्ट्री पर चर्चा होगी। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि विषय पर चर्चा होगी। डॉक्टर रेवतीलाल राजपूत की वार्ता होगी गर्मी में पशुओं की देखभाल, मंडी भाव और मौसम की जानकारी भी श्रोताओं को दी जाएगी। हमारे श्रमिक साथी सुनेंगे कार्यक्रम मजदूर मंडल। संध्या 6:30 पर इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा आर्थिक विकास में श्रमिकों की भूमिका। डॉक्टर राकेश की कहानी होगी मन प्रेम। इसके अलावा फिल्म संगीत प्रसारित होगा। विविधा में संध्या 7:10 पर सुनिएगा नीरज जैन की वार्ता स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक वीर सावरकर। मेरी माटी मेरा देश संध्या 7:31 पर प्रसारित होगा। हम आपको बता दें मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में आज शाम 7:31 पर भेंट वार्ता प्रसारित होगी। विषय होगा सोशल मीडिया और AI का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। काउंसलर मंजू शर्मा से बातचीत करेंगी वैशाली शर्मा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक और अनेक रात 8 बजे, चित्रपट संगीत 8:30 पर और रात 10 बजे भी हम आपको फिल्म संगीत सुनवाएंगे। रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है और आज रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का राग रामदासी मल्हार में ख्याल गायन। ये था कार्यक्रम विवरण। आप हैं आकाशवाणी आगरा के साथ और अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर अपने पति शिव के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो। इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना के संशय के बावजूद पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद मूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए, कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कहन का आज का प्रसंग। गायक कलाकार थे सुधा मल्होत्रा और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। अब समय है कार्यक्रम खेती की बातें का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं संजय वर्मा की वार्ता, जिसका विषय है कृषि क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग।
1: किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं अनुदान पर दी जा रही हैं? नहीं, मैं आज आप लोगों के सामने बताता हूं। सबसे पहले है सोलर कुकर। यह धूप से खाना बनाने का एक आधुनिक साधन है। इसके द्वारा एक साथ चार प्रकार का खाना तैयार किया जा सकता है। विभिन्न परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि सोलर कुकर से बना भोजन अन्य ईंधन की सहायता से बने भोजन से अधिक पौष्टिक होता है। इसमें छोले, राजमा, दाल, केक, गोश्त, चिकन, खीर, बिस्किट, खिचड़ी आदि पकाई जा सकती है। यह भीगी और गीली वस्तुएं जैसे जड़ी बूटियों को सुखाने के काम में भी आता है। सादा सोलर कुकर की कीमत 1500 रुपये है। दूसरे तरह का है विद्युत बैकअप वाला सोलर कुकर। इसमें रात के समय तथा बरसात के दिनों में धूप ना होने की दशा में बहुत ही कम बिजली के खर्च पर खाना बनाता है। इसमें ना तो खाना जलता है और ना ही कोई गंध या धुआं होता है। इससे घर तथा वातावरण शुद्ध रहता। बिजली की व्यवस्था वाले सोलर कुकर की कीमत मात्र 2400 रुपये है। तीसरा है डिश टाइप सोलर कुकर। इसमें 10 से 15 व्यक्तियों का खाना 30 से 40 मिनट में तैयार किया जा सकता है। तापमान अधिक होने के कारण खाना बनाने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए चश्मा, दस्ताने आदि भी फ्री में मिलते हैं। घरों, ढाबों, कैंटीनों, होटल के लिए यह बहुत लाभकारी है। इसकी कीमत 5000 रुपये है, लेकिन सरकार द्वारा इसमें आधा अर्थात 2500 रुपये का अनुदान है। इसी प्रकार एक सूर्य की रोशनी से पानी गर्म करने वाला संयंत्र है, जिसका नाम है सोलर वाटर हीटर। यह संयंत्र पानी गर्म करने के काम आता है। इसकी कीमत क्षमता के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे 100 लीटर क्षमता वाले सोलर वाटर हीटर की कीमत लगभग 20,000 है। इस पर फिलहाल कोई अनुदान नहीं है, लेकिन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए यह बहुत उपयोगी है। नर्सिंग होम के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। इसमें बिजली की बचत, आयकर की छूट तथा बड़े क्षमता के संयंत्रों पर लोन आदि की व्यवस्था बैंक से की जाती है। इसमें लाभार्थी संस्था को 25% प्रोजेक्ट कास्ट वहन करना पड़ती है। लोन का 10 वर्ष बाद फिर पेबैक पीरियड है। आवेदन के साथ 7500 रुपये का डिमांड

जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, भी संलग्न करना पड़ता है। वर्तमान में 100 लीटर से 10,000 लीटर क्षमता के संयंत्र उपलब्ध हैं, जिनकी लागत ₹20,000 से 1 लाख तक है। इसी प्रकार एक बहुत उपयोगी संयंत्र है सोलर घरेलू लाइट। यह सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा करने का संयंत्र है। यह जनपद के सभी ग्रामों के लोगों के लिए, जो वर्तमान में अनुदान के बाद मात्र ₹5725 में उपलब्ध है। इससे लाभार्थी 2 ट्यूब रॉड और 1 पोर्टेबल TV भी चला सके। फिर है सोलर लालटेन। यह सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा करने का संयंत्र है। यह सभी प्रकार के लाभार्थियों को देय है, जो वर्तमान में अनुदान के बाद मात्र ₹1750 में दी जा रही है। सोलर लालटेन चार्जिंग स्टेशन एक ऐसी रोजगार परक योजना है, जिसमें 30 लालटेनों की एक चार्जिंग सेट दिया जाता है। उसमें सोलर पैनल उपलब्ध कराए जाते हैं और अविद्युत क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति जो विवाह, शादी आदि के लिए प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, अपने व्यवसाय में इसको शामिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अनुदान व लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना सभी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए है। फिर आता है सोलर पंप। दिनों दिन बिजली की परेशानी को देखते हुए सौर ऊर्जा के पंपों की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे अविद्युतीकृत ग्राम जहाँ पेयजल की समस्या है, तथा ग्रामवासी लगभग ₹22,000 पानी की टंकी आदि के निर्माण के लिए खर्च करना चाहते हैं, वहाँ यह योजना क्रियान्वित की जा सकती है। इसमें अंबेडकर ग्राम व गांधी ग्रामों को प्राथमिकता दी जाती है। 1 किलोवाट पंप की लागत ₹3,20,000 है। वर्तमान में अनुदान इस पर ₹1,20,000 है। इरेडा द्वारा लोन भी दिया जा रहा है, जो ₹80,000 है। इसमें करीब 3 इंच डिलीवरी पर एक दिन में 1 एकड़ पानी से सिंचाई की जा सकती है। कुल 70,000 लीटर भूमिगत जल भी ये पेयजल के रूप में उपलब्ध कराता है। फिर आता है बायोगैस संयंत्र। 10 सीट से लेकर 30 सीट लेटरिन कॉम्प्लेक्स, बाथरूम, यूरिनल्स के साथ इसमें 10 से 35 घन मीटर क्षमता के बायोगैस के साथ साथ 500 से 3500 व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था भी की जा रही है। इससे उत्पन्न गैस का उपयोग पंप सेट चलाकर पानी निकालने या जनरेटर चलाकर बिजली की व्यवस्था के रूप में किया जाता है। नगर पालिकाएँ या ऐसी संस्थाएं जो लागत का 40 से 50% लाभार्थी अंशदान वहन करने के लिए तैयार हैं, वहाँ इस योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है। लाभार्थियों को ₹50 सिक्योरिटी व ₹30 प्रति मास प्रति परिवार मेंटेनेंस के लिए जमा करना पड़ता है। आवश्यकता पड़ने पर आटा चक्की की स्थापना भी की जाती है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका नाम है एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंडों का चयन किया जाता है। उसमें भारत सरकार से अनुदान के आधार पर केरोसिन लालटेन, प्रेशर कुकर, सोलर लाइट, सोलर लालटेन और बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जाती है। एक आता है पवन चक्की। हवा की गति 10 से 15 मीटर प्रति सेकंड होने पर पवन चक्की से ऊर्जा पैदा की जाती है, जिसका उपयोग भूमिगत जल बोरिंग करके पेयजल के रूप में और सिंचाई के रूप में किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दिनों दिन एक प्रकार की समस्या आती जा रही है कि वहाँ कूड़े कचरे का निपटान सही नहीं हो पा रहा। इसके लिए भारत सरकार ने गैसीफायर की एक स्थापना करने की योजना बनाई है। गैसीफायर संयंत्र धान की भूसी, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों, बुरादों, घास फूस जैसे बायोमास को अत्यंत ज्वलनशील गैस में परिवर्तित करने वाला संयंत्र है। इसमें उत्पन्न होने वाली गैस को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। 1 किलो धान की भूसी या लकड़ी से 2.5 से 3 न्यूटन स्क्वायर मीटर गैस उत्पन्न होती है, जिससे 2,500 से 3,000 किलो कैलोरी ताप उत्पन्न होता है। यह डीजल इंजन में डीजल की 65 से 85% बचत करता है। भट्टी या चूल्हों में जिसमें फर्नेस ऑयल, डीजल इत्यादि का प्रयोग हो रहा है, यह गैस अकेले या वर्तमान ईंधन के साथ प्रयोग की जा सकती है। इसमें कोई प्रदूषण नहीं फैलता।
इसमें 900 डिग्री

0: टेम्परेचर से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप मिलता है, या रोलिंग मिल, बॉयलर, ब्रेकरी, ईंट उद्योग के लिए होटल, कैंटीन और रेस्टोरेंट में अत्यंत उपयोगी है। इसमें भारत सरकार तथा नेडा विभाग द्वारा मान्य अनुदान देय है, इनकम टैक्स में भी छूट एवं बैंकों द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध है।
1: किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज हम आपको बता रहे थे कृषि क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जानकारी दे रहे थे संजय वर्मा। हम आकाशवाणी आगरा से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 हो रहे हैं, अब समाचार होंगे।
2: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तरजालीये पटले केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्य रूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमंत्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिव रूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमंत्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुं अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् संबोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगः इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेऽपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतंत्रं, मुक्तं, सुरक्षितं, समृद्धं च हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेशमंत्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तरजालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिंद प्रशांत प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः

0: विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः दृढ़विश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मंत्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। सीबीएसई ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली डीईएमयू रेलगाड़ी के

0: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी आगरा की प्रातःकालीन सभा में। सुबह के 7:10:30 हुए हैं। इस समय हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज की वार्ता का विषय है जल चिकित्सा। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर यादराम शर्मा।
1: प्राणी मात्र को होने वाले भयंकर रोगों को नष्ट करने के लिए जो अद्भुत शक्ति औषधियाँ प्रकृति ने अपने भंडार में संचित की हैं, उनमें जल मुख्य है। जल प्राणियों के लिए प्राण स्वरूप है। अन्न के बिना बहुत दिन तक प्राणी जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना थोड़े ही समय में प्राण का नाश हो जाता है। क्योंकि तृष्णा से मोह उत्पन्न होता है और मोह से प्राण का नाश होता है, इसलिए जीवन रक्षण के किसी भी अवस्था में जल का त्याग नहीं किया जा सकता। मात्र जीवन रक्षण के लिए जल ही उपयोगी नहीं है, बल्कि व्याधि और चिकित्साओं के लिए भी बहुत जल बहुत ही उपयोगी है। जिस प्रकार बहुत सी औषधियों को खिलाकर अथवा बाहर से लगाकर रोगों को नष्ट किया जाता है, उसी प्रकार औषधियों के सिवाय जल से ही अनेक रोग दूर किए जा सकते हैं। प्राचीन काल से इस देश में यह रीति रही है और वैदिक शास्त्रों में भी विस्तृत रीति से इसका उल्लेख किया गया है। परंतु आज दुख का कारण यह है कि आजकल हमें पश्चिमी सभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है, रीति रिवाजों पर से विश्वास उठ गया है और अपने शास्त्रों की बताई हुई बातों को मानने में अहम आनाकानी करते हैं। परंतु जिस प्रकार पश्चिमी विद्वान अपने शास्त्रों की बताई हुई बातों को अनुभव प्राप्त करके लोगों के सामने प्रकट करते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपनी नवीन खोजों को लोगों के सामने उत्साहपूर्वक प्रकट करना चाहिए। जल द्वारा रोगों को दूर करने की विधा जो इस देश में टूटी फूटी दशा में चलती आई थी, पाश्चात्य विद्वानों के हाथ लगी और विशेष अनुभव में आई। जल उपचार में उपयोगी हो सकता है, इस बात की जांच पश्चिम देशों में पहले पहल की थी सीपीसीआ के बीसेंट प्रीजनिस्ट नामक एक पुरुष ने की थी। परंतु इसके बाद बहुत से सुधार होने पर रोगों को जल से ही आराम करने की पद्धति चली। इस पद्धति के अनुसार उपचार करने के दो मुख्य विभाग हैं। बहुत से उपचारक अनेक रोगों को दमन करने के लिए शुद्ध जल का उपयोग करते हैं और कितने ही शुद्ध प्राकृतिक ढंग के झरने या कुंडों का जिनमें रासायनिक क्षार मिश्रित जल होता है उसका दूसरे रूप में प्रयोग करते हैं। जो केवल शुद्ध जल का प्रयोग करते हैं उसे उस पद्धति को हम वाटर क्योर कहते हैं और जो दोनों प्रकार के जलों का उपयोग करते हैं उसे हम हाइड्रोपैथी कहते हैं। इन दोनों पद्धतियों को हम अपनी भाषा में जल चिकित्सा कहते हैं। इस जल चिकित्सा का शास्त्र इतना बड़ा है कि संपूर्ण वर्णन करें तो इस ग्रंथ का एक ग्रंथ बन जाएगा। इस समय केवल कुछ उपयोगी जल चिकित्सा के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। ऊंचा जलपान प्रातःकाल सूर्योदय के पहले लघु शंका अर्थात मूत्र त्यागने के बाद बिस्तर पर ही बैठकर जो मनुष्य रात्रि को तांबे के पात्र में जल भरकर सुबह पिए उस मनुष्य के बड़े हुए वात पित्त और कफ शांत होते हैं और मनुष्य के मन में बहुत ही शांति उत्पन्न होती है और वह शक्तिशाली बनता है। पीने की जल की कितनी मात्रा होनी चाहिए इस विषय में निघुंड रत्नाकर बतलाते हैं कि सूर्योदय के समय 8 अंजलि अर्थात 0.25 लीटर पानी पीना चाहिए। निद्रापद स्नान, जिसे अच्छी नींद नहीं आती हो, सोने के पहले से दोनों पैरों को कुछ गर्म जल में डुबोकर सिर पर ठंडे जल की धार डालनी चाहिए। इससे सिर का रक्त पैरों की तरफ तेजी से जाएगा और थोड़ी देर में अच्छी नींद आ जाएगी। शांतिदायक स्नान, रोगी को आराम की कुर्सी पर बैठाकर उसके सिर पर ऊंचे से जल की फुहारें डालनी चाहिए। इससे सिर बहुत ही आनंदित हो जाता है। जिन्हें मानसिक कार्य करना पड़ता है उनके लिए यह स्नान बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ आँखों की दृष्टि तेज होती है, बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। जल का प्रयोग करना हो तो हवा और पंखे को बंद कर देना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि जल चिकित्सा का सही प्रकार से यदि उपयोग किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में एक नई ताजगी स्फूर्ति तथा स्वस्थ रहकर अपनी अच्छी से अच्छी सेहत का आनंद ले सकता है तथा विभिन्न रोगों से भी बच सकता है। हमारे भारतीय चिकित्सा शास्त्रों में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदि ग्रंथि।

0: गावा, अर्थात मानव देह का मिलना अत्यंत दुर्लभ है, जो कि अनेक जन्मों के संचित पुण्य और शुभ कर्मों का फल है। जिसने यह मानव शरीर रूपी मिला है, इसके साथ साथ मानव के सात सुखों का भी वर्णन मिलता है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में बासा, छठवां सुख राज में पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य है जीवन।
1: जल चिकित्सा, इस बारे में आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर यादराम शर्मा। कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी आगरा से किया गया। और अब सुनते हैं देशगान, और देशगान के तुरंत बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे समिति की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए केंद्र सरकार के 12 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है ये दौर। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और लखनऊ में महापौर के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। एक रिपोर्ट।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2014 में कल ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया।
3: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके विस्तृत चर्चा की। इस दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज दौरे पर पहुंचे।

0: वहां उन्होंने नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगो का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यूनेस्को द्वारा प्रयागराज महाकुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थान दिए जाने की उपलब्धि के बारे में चर्चा की।
1: जब 19 में हमारी सरकार को पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके प्रयास से प्रयागराज के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता के अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता देकर के हमारे पूर्वजों की इस परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के इस आयोजन को वैश्विक मान्यता देने का काम किया था।
0: मुख्यमंत्री ने गंगा दशहरा के अवसर पर कल प्रयागराज में संगम तट पर मां गंगा का दर्शन पूजन किया और आरती में भी शामिल हुए। उन्होंने प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री योगी ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला है, हमें इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
1: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान किए गए। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ 56 भोग लगाए गए। हमारे अयोध्या प्रतिनिधि ने बताया कि वहां दिनभर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में कल भी दिनभर तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहा। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे समिति की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए केंद्र सरकार के 12 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है ये दौर। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और लखनऊ में महापौर के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में तेज धूप और भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से

0: थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

समय 7:31 का आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हम आपको सुनवाते हैं दैनिक सूचना पर आधारित कार्यक्रम आसपास। सभी श्रोताओं को प्रदीप का नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। इस समय मौसम काफी गर्म है और ऐसे में आप जरूर अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का विशेष ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ साथियों, बात मौसम की हो रही है तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि मौसम कैसा होने वाला है अगले 2-3 दिनों में। जी हाँ, भीषण गर्मी और गर्म हवाओं से जल्द निजात मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल से तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसा 3 दिन तक चलेगा। इससे दिन के तापमान में लगभग 9 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है, तो बहुत अच्छी सूचना है साथियों। ये तो आप जानते हैं कि इस बार गर्मी ने लोगों को बहुत परेशान कर दिया है और बीते दिनों अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था और कई दिन तापमान 45 डिग्री या इससे अधिक रहा है। बात आगरा की हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी तेज गर्मी के साथ लू के थपेड़े झेलने पड़ेंगे सभी लोगों को। इसके बाद कल से राहत मिलने की संभावना है और कल से ओले पड़ने की संभावना है, गरज चमक। और ये भी बताया गया है कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ और तेज बारिश हो सकती है। बिजली गिरने की भी संभावना बताई गई है। ऐसा होने पर दिन और रात के तापमान में भारी कमी आएगी। 31 मई तक दिन का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह जाने की उम्मीद है साथियों। जी हाँ, जबकि 1 जून से मौसम धीरे धीरे फिर से गर्म होगा। ये थोड़ा परेशान करने वाली खबर है। तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी का अंदेशा ये दिन हालांकि नहीं है और ऐसे में चूंकि तापमान परिवर्तित हो रहा है, कल से राहत मिलने की आसार है। हालांकि 1 जून के बाद से फिर से मौसम गर्म हो सकता है, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। तो ध्यान ये रखना है कि आंधी जब आती है, बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, तो हमें भी ध्यान रखना होगा कि हम बड़े जो पेड़ होते हैं उनके नीचे ना खड़े हो जाएं, बिजली के खंभों के पास, और जर्जर इमारतें जो होती हैं, दीवारें होती हैं, छप्पर हैं, टिन शेड हैं, इसके नीचे कभी भी शरण नहीं लेनी चाहिए। खुले में होर्डिंग्स, ग्लो शाइन बोर्ड लगे हों, वहाँ भी खतरा है। ऐसे में बिजली गिरने की भी संभावना रहती है और इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि जब इस तरह का मौसम होता है तो हम खुले स्थान पर शरण लें या किसी पक्के मकान के नीचे शरण लें, जिससे कि कोई नुकसान हम लोगों को ना होने पाए। इसके अलावा साथियों, कुछ और सावधानी बरतने की जरूरत होती है। जैसे आधी बारिश होने पर हम खिड़की और दरवाजे बंद कर दें, घर के बाहर खुले में छत पर जाने की गलती बिल्कुल ना करें, मौसम बिगड़ते ही बाहर रखा जरूरी सामान अंदर कर लें, बिजली अगर कड़कती है तो मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग कदापि ना करें, बच्चों को

बाहर क्या बाहर खेलने नहीं देना नहीं जाने देना चाहिए और बाहर निकलने पर वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। ज़्यादा तेज अंधड़ अगर आती है तो कार में पिछली सीट पर बैठना उचित माना जाता है। दोपहिया चालक रुककर किसी भी पक्के निर्माण में शरण ले सकते हैं और उसके अलावा जो भी सरकार की तरफ से अलर्ट या चेतावनियाँ जारी होती हैं उनका पालन ज़रूर करें। तो साथियों, फिलहाल अगर हम सावधानी बरतेंगे तो किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। चूंकि तापमान में काफी वृद्धि है, काफी गर्म है और गर्मी के चलते कई बार हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, चक्कर जैसे आने लगते हैं, तो ऐसे में हमें जो व्यक्ति प्रभावित है उसको किसी ठंडी छायादार स्थान पर ले जाना चाहिए, उसके कपड़े ढीले कर देने चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट्स या थोड़ा पानी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। और गर्मी में डिहाइड्रेशन भी होता है तो पानी तो हमें बार बार पीना ही चाहिए। अगर बेहोशी आ रही है, सीने में दर्द है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है। अगर यूरिन का आना कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कमजोरी का एहसास हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तो तत्काल हमें उस मरीज को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा साथियों, और भी कुछ चीज़ें ध्यान रखने की है। तेज़ गर्मी या धूप में अगर हम बाहर निकलना हमें पड़ रहा है, कोशिश करें कि हम धूप में दोपहर में बाहर कम से कम निकलें या नहीं निकलें। अगर आवश्यक है तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रख लें। एसी से तुरंत गर्मी में या धूप से सीधे गर्मी में जाने की गलती ना करें। शरीर के तापमान को तालमेल देने की आवश्यकता होती है। हमें ORS का घोल भी अपने साथ रखना चाहिए। इस समय श्रोताओं, पुदीना, मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन लाभकारी होता है। पुदीन हरा जैसी जो औषधियाँ हैं काफ़ी उपयोगी हैं। एक गिलास पानी में अगर हम कुछ फूदें पुदीन हरा की डालकर पीते हैं तो ये लाभप्रद होता है। और भोजन हमें सुपाच्य करना चाहिए, सीमित मात्रा में करना चाहिए और गरिष्ठ भोजन से हमें बचना है क्योंकि गर्मी में पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है। ताज़ा भोजन लेना है और बाहर का भोजन तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। किसी तरह का बासी भोजन का सेवन नहीं करना है और डॉक्टरों के अनुसार अरहर या मूंग की दाल को गाढ़ा करने के बजाय उसे पतला रखना हमें ठीक रहेगा। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, हरी सब्जियों का प्रयोग लाभप्रद होता है। तो इस तरह से हम आम का पन्ना, जलजीरा, नींबू पानी का प्रयोग काफ़ी लाभदायक होता है। फ्रिज का बहुत ठंडा पानी पीने से भी परहेज करना चाहिए। घड़े का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो साथ ही इस तरह की सावधानी अगर हम बरतेंगे तो मौसम का हम पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। और वैसे भी दोस्तों, आप जानते हैं कि कुदरत जैसे हमें चलाती है वैसे हमें चलना पड़ता है, लेकिन हाँ, सावधानी बरतेंगे तो हर मौसम का अपना एक तकाजा होता है, हर मौसम का अपना एक आनंद होता है और हमें अवश्य सावधानी बरतते हुए मौसम को एंजॉय करना चाहिए, मौसम का आनंद लेना चाहिए।

जी हाँ दोस्तों, हर मौसम का तकाजा होता है और हर मौसम की तासीर भी होती है, इसलिए हम हर मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, हर मौसम में आनंदित हो सकते हैं। ज़रूरत होती है सावधानी बरतने की, और वैसे तो प्यार का मौसम तो हमेशा सुहावना होता है। बस एक दूसरे से मोहब्बत करिए, सावधानी बरतिए और ज़िंदगी को खुशहाल बनाना ही चाहिए। जी हाँ साथियों, आप आकाशवाणी आगरा के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम आसपास। जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं को पता लग ही गया होगा कि बकरीद की जो छुट्टी थी, जो अवकाश था, वो पहले आज निर्धारित था, लेकिन अब वो छुट्टी

कल हो गई है क्योंकि कल बकरीद मनाई जाएगी। जी हां, शासन ने ईद उल अजहा बकरीद के सार्वजनिक अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया है। पहले यह अवकाश 27वें बुधवार यानी आज घोषित किया गया था, लेकिन आप जानते हैं कि चांद दिखने के आधार पर यह त्यौहार मनाया जाता है, इस कारण अब बकरीद कल यानी 28वें गुरुवार को मनाई जाएगी। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 27 मई का अवकाश यानी आज का अवकाश निरस्त हो गया है और कल सार्वजनिक अवकाश होगा और कल सारे सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय वगैरह बंद रहेंगे और आज सारे कार्यालय खुले रहेंगे। क्योंकि कल बकरीद मनाई जाएगी तो अच्छी सूचना यह भी है कि कल ताजमहल 3 घंटे के लिए निःशुल्क रहेगा। जी हां साथियों, ईद उल अजहा बकरीद पर 28 मई गुरुवार को ताजमहल 3 घंटे निःशुल्क फ्री रहेगा। समय सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भारतीय और विदेशी पर्यटकों को स्मारक में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। लेकिन एक बात इसमें और हम बताना चाहेंगे कि अगर आप मुख्य मकबरे पर जाना चाहते हैं तो वहां के लिए आपको 200 रुपये की टिकट तो लेनी होगी और बाहर का जो प्रवेश शुल्क है वो निःशुल्क रहेगा। और इसके अलावा जो ईद उल फितर में जो लोग नमाज के लिए आएंगे, उन पर्यटकों, उन नमाजियों को जो पहले से वहां पर पंजीकृत हैं, उनका प्रवेश भी निःशुल्क होगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि भीषण गर्मी के चलते गुरुवार को शाही जामा मस्जिद में ईद उल अजहा पर अदा की जाने वाली नमाज के समय में भी परिवर्तन हुआ है। पहले नमाज का समय सुबह 8 बजे मुकर्रर किया गया था, अब इसे सुबह 7:15 पर किया गया है। शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अनुसार, अध्यक्ष के अनुसार, भीषण गर्मी के चलते मस्जिद में शामियाने और आदि लगवाए गए हैं, इसके चलते नमाज के समय में परिवर्तन हुआ है। गर्मी को देखते हुए नमाजियों के लिए मस्जिद में कूलर, पंखे आदि की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है और शाही ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज सुबह 6:45 पर होगी। इंतजामिया कमेटी के अनुसार शहर की अन्य प्रमुख मस्जिदों में भी नमाज का समय पूर्ववत रहेगा।

जैसे कि हमने श्रोताओं को बताया कि आज का अवकाश रद्द हो गया है और आज की जगह कल बकरीद की छुट्टी रहेगी, तो ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी गतिमान परीक्षाओं के कार्यक्रम में संशोधन किया है। विश्वविद्यालय ने 28 मई 2026 को होने वाली यानी कल होने वाली बीएमएस, एलएलएम, पीपीईएस और बीएससी बायोटेक की परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव हुआ है। हालांकि इन परीक्षाओं का समय, पाली और परीक्षा केंद्र पूर्व निर्धारित ही रहेंगे। जी हां, परीक्षा मंत्र के अनुसार कुछ पाठ्यक्रमों की प्रस्तावित परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। बीएएमएस चतुर्थ प्रोफ की परीक्षा 28 मई के स्थान पर अब 29 मई शुक्रवार को होगी। बीएससी बायोटेक की परीक्षा जो 28 को होनी थी अब 1 जून सोमवार को होगी। एलएलएम द्वितीय सेमेस्टर जो कि दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा 28 मई की जगह अब 2 जून मंगलवार को संपन्न होगी। वहीं बीपीईएस के चतुर्थ सेमेस्टर की निर्धारित परीक्षा 2 जून यानी मंगलवार को होगी। और हम आपको ये बता दें, समय, पाली और परीक्षा केंद्र पूर्ववत रहेंगे।

आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं दैनिक सूचना पर आधारित कार्यक्रम आसपास। एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद फिर से हाजिर होंगे कुछ और सूचनाओं के साथ।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: एक बार फिर से स्वागत आप सभी श्रोताओं का आकाशवाणी आगरा के कार्यक्रम आसपास में। अगली सूचना क्रिकेट के बारे में है। जी हां साथियों, ताजनगरी के युवाओं में क्रिकेट को लेकर जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। जिला क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बना है जब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ आगरा DCAA में क्रिकेट सीखने के लिए पंजीकरण कराने वाले खिलाड़ियों की संख्या में बड़ा उछाल आया है। जी हां साथियों, सत्र 2025-26 की तुलना में इस साल 42% अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। हर आयु वर्ग में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ी है। सत्र 2025-26 में 776 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था जबकि इस साल ये आंकड़ा बढ़कर 1100 पहुंच गया है। DCAA पदाधिकारियों का दावा है कि आगरा के क्रिकेट इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने क्रिकेटर बनने के लिए पंजीकरण कराया है। अच्छी सूचना है साथियों। DCAA के अध्यक्ष के अनुसार इस साल करीब 42% की वृद्धि दर्ज की गई है जो शहर के क्रिकेट भविष्य के लिए बड़ी अच्छी सूचना अच्छी खबर है। यह भी बताया गया है कि इस बार 130 महिला क्रिकेटरों ने भी पंजीकरण कराया है जो महिला क्रिकेट के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है। साथियों जैसे कि आप जानते हैं कि आगरा से निकले ध्रुव जुरैल, दीपक चाहर, राहुल चाहर, दीप्ति शर्मा और पोनी मैदौर जैसे क्रिकेटर युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हैं। इन्हीं खिलाड़ियों से प्रेरित होकर अब आगरा के युवा क्रिकेट को करियर के रूप में अपनाने जा रहे हैं। UPCA से संबद्ध क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में महिला खिलाड़ियों की बढ़ती मांग भागीदारी से शहर की बेटियां भी प्रभावित हो रही हैं। नए खिलाड़ी मैदान पर आकर सीखने के लिए उत्साहित हैं। उनमें कुछ कर गुजरने की जज्बा उनमें दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगरा से कुछ और स्टार्स निकलेंगे जो क्रिकेट की दुनिया में न सिर्फ आगरा का बल्कि हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे।

और अब कुछ रेलवे के संबंध में सूचना है। सुबेदारगंज बांदा टर्मिनस सुबेदारगंज से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को और बांदा टर्मिनस से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित होगी। उत्तर रेलवे में मेगा ब्लॉक के कारण ट्रेनें बदले मार्ग से चल रही हैं। गांधीधाम भागलपुर स्पेशल, भागलपुर गांधीधाम स्पेशल, गोरखपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, बनारस अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ अहमदाबाद मल्होर, ऐशबाग और मानक नगर से संचालित हो रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की है। कानपुर सेंट्रल मदुरई स्पेशल ट्रेन 27 मई तक यानी आज तक और मदुरई से 29 मई तक चलेगी। वहीं आगरा कैंट असरवा स्पेशल ट्रेन भी संशोधित दिनों में संचालित होगी। हमारी ये सूचना है विवाह पंजीकरण के बारे में। विवाह पंजीकरण में अब वरवधु और उनके गवाहों की पहचान बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के बाद ही होगी। सभी उपनिबंधक कार्यालयों में यह लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय भी आधार सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक और सूचना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अब आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। प्रभारी

जिला कल्याण अधिकारी के अनुसार आवेदन के लिए परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र ही स्वीकार होंगे। ये थी आसपास की कुछ सूचनाएं। अब गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में आपको बता दें। जी हाँ, एक युवती जिनका नाम सपना है, इनकी उम्र 26 वर्ष है, इनका कद 5 फुट 3 इंच है और ये ग्राम औरंगपुर थाना कागरौल की रहने वाली हैं। 28 मार्च 2026 की रात 8 बजे से अपने घर से लापता हैं। लापता होते समय इन्होंने हरे रंग का सूट पहना था। अगर इनके बारे में कोई सूचना आपको मिलती है तो कृपया थाना कागरौल को सूचित कर दें। एक और महिला जिनका नाम खुशबू है, इनकी उम्र 30 वर्ष है, कद 5 फीट 1 इंच है, बाल काले हैं। लापता होते समय इन्होंने भी हरा सूट और सलवार पहना था। बाकी इनकी बनावट सामान्य है और ये 7 अप्रैल 2026 से अपने घर ग्राम त्रिशंकपुरा थाना बाह आगरा से लापता हैं। इनके बारे में कोई जानकारी मिलने पर कृपया थाना बाह को सूचित कर दें। एक युवती जिनका नाम खुशी है, इनकी उम्र 19 वर्ष है और इनका कद 5 फीट के आसपास है, रंग गोरा है और ये 21 फरवरी 2026 से बिंदु कटरा आगरा से लापता है। इनके बारे में कोई जानकारी मिलने पर कृपया पुलिस चौकी बिंदु कटरा को सूचित करें।

ये थी आसपास की सूचनाएं, और अपने श्रोताओं को एक बार फिर से बताना चाहेंगे, फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आप सुनते हैं। सुबह की सभा में इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे गीतांजलि कार्यक्रम में सुबह 8:45 पर, उसके बाद गीत मंजूषा में सुबह 9:25 पर, और सूर सरिता में सुबह 10 बजे। लोक संगीत के श्रोताओं को भी बताना चाहेंगे, लोक संगीत में सुबह 9:45 पर आज हम आपको रविंद्र कुमार शर्मा के गाए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे। अपनी बहनों को बताना चाहेंगे आज दोपहर में 1:15 पर घर संसार कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें चर्चा होगी सकारात्मक सोच से बढ़ाएं रचनात्मकता। मुझे कुछ कहना है हमें यूपीआई धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दी जाएगी, अर्चना सिंघल की वार्ता होगी, बुढ़ा बरगद, समय दोपहर 1:15। तो श्रोताओं, गर्मी का प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है, ऐसे में अपना ख्याल रखना, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और जब हम मौसम के मुताबिक अपना खान पान रखेंगे, अपनी दिनचर्या रखेंगे, तो मौसम का प्रकोप हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। आज का आपका दिन विशेष शुभ हो, इसी कामना के साथ आसपास कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। सुबह के 8 बजने को हैं, आपको ले चलते हैं अपने दिल्ली स्टूडियो समाचार प्रभात के लिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
3: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
5: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर

0: प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
1: याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमेरिकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।

0: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन

0: अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले दो से तीन दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून एक या दो दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rolls. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today.

0: मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाजों की तफसीलात जारी की हैं, जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटन्स को 92 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर मस्कूरा कमेटी की सदारत करेंगे। मर्दुमशुमारी के कमिश्नर के साथ साबिक आईएएस अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिरे मुआशियात डॉक्टर शामिका रवि को कमेटी के मेंबरान के तौर पर मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में फॉरेनर्स वन डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में गैर फितरी तब्दीली हो रही है और इससे किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल को बड़ा खतरा लाहिक होता है। उन्होंने मजीद कहा कि आबादी के तनासुब में तब्दीली एक संगीन मामला है, जो सिर्फ मुल्क की खुद मुख्तारी से ही नहीं बल्कि कौमी सलामती, अमनो कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली मुआशरे के तहफ्फुज से भी वाबस्ता है। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
1: आला सतह की ये कमेटी गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीलियों का जाम जायजा लेगी। ये कमेटी मजहबी और समाजी तबकों की सतह पर आबादी में होने वाली गैर मामूली तब्दीलियों के रुझान का तजज़िया भी करेगी और इसके लिए एक मनसूबा बंद और मुकर्रर वक्त के अंदर पूरा होने वाला हल पेश करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से यौम आज़ादी के अपने खिताब में आबादी के तनासुब के एतबार से होने वाली तब्दीली के बारे में आला सतह की कमेटी का ऐलान किया था।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: ये कमेटी एक साल के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। अगर जरूरी हुआ तो कमेटी की मुद्दत में 6 माह की तौसी की जा सकती है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असगर अली।
0: सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरेसानी एसआईआर के कानूनी जवाब को चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस चोयमालिया बागची पर मुश्तमिल एक बेंच आज अपने फैसले का ऐलान करेगी। मजकूरा बेंच ने तफसीली समाअत के बाद इस साल के अवाइल में इस मामले में अपना फैसला महफूज रखा था। इन दरखास्तों में इंतखाबी कमीशन की जानिब से एसआईआर के अमल के कानूनी जवाज को ये दलील पेश करते हुए चैलेंज किया गया है कि वोटर फहरिस्तों पर नजरेसानी का ये अमल आईन की दफा 326, अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 और बाद में मुरतब किए गए जाब्तों के तहत चुनाव कमीशन को हासिल इख्तियारात से तजावुज करता है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में एसआईआर अमल से मुतासिर होने वाले राय दहिंदगान की मुश्किलात दूर करने और शफाफियत को फरोग देने की खातिर उबूरी हिदायत जारी की थीं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने यह वजाहत की है कि इम्तिहान के पर्चों की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए उसके हकीकी ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम में किसी तरह की कोई सिक्योरिटी कोताही नहीं हुई है। बोर्ड ने कहा है कि दाखिली जांच और नजरेसानी के मकासद के लिए सैंपल डेटा के साथ URL cbse.onmarks.co.in सिर्फ एक टेस्टिंग साइट है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: सीबीएसई ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो यूआरएल सर्कुलेट किया जा रहा है वो इम्तिहान के पर्चों की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए पोर्टल से मुख्तलिफ है। बोर्ड ने कहा है कि शिकायत के इजाले के लिए मजबूत निजाम के साथ असेसमेंट में शफाफियत बढ़ाने की खातिर ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम नाफिज किया गया है। सीबीएसई ने अपने हकीकी ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम में किसी तरह की सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी के दावों को खारिज करते हुए सभी मुतालिका अफराद को फिर यकीन दिलाया है।

0: के जांच के प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए सभी तहफ़ुज़ात नाफिज किए गए हैं। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के अपने दौरे के दूसरे दिन आज सुबह नाथुला पास जाएंगी। सदर जमहूरिया नाथुला में तैनात फौजियों से बातचीत करेंगी और इस दौरान फौज के आला एहलकार उन्हें इलाके की मुख्तलिफ सरगर्मियों से वाकिफ कराएंगे। सदर जमहूरिया बाबा हरभजन की दरगाह भी जाएंगी। बाद में दिन में सदर जमहूरिया मुर्मू गंगटोक में मनन केंद्र में सिक्किम यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद के दौरान तलबा को डिग्री और तमगों से सरफराज करेंगी। 33 डिपार्टमेंट से वाबस्ता तकरीबन 14,000 डिग्रियां दी जाएंगी, जिनमें 199 खवातीन समेत 285 तलबा को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिए जाएंगे। कल सदर जमहूरिया ने ऑर्किडेरियम और नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेटोलॉजी का दौरा किया था। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दीगर एहलकारों ने ऑर्किडेरियम में सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोलकाता की एक खसूसी अदालत ने मालदा के मोथाबारी इलाके में जुडिशल अफसरान पर हमले के मामले में मजीद 15 अफराद को 5 जून तक कौमी जांच एजेंसी की तहवील में भेज दिया है। पीर की रात को मोथाबारी और आसपास के इलाकों में मरकजी एजेंसी की छापे मारने की कार्रवाई के दौरान इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था। अदालत की कार्रवाई के दौरान एनआईए ने इस मामले के सिलसिले में 2 केस डायरियां पेश की। एनआईए के जराये के मुताबिक इस वाकये के दिन की सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स का तज्जिया करने के बाद मुश्तबा अफराद की शिनाख्त की गई। एजेंसी ने मजीद छानबीन के लिए गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से 15 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की अपनी हम मनसब पेनी वोंग के साथ 17वें वज़राए खारजा फ्रेमवर्क मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत बहरुल काहिल मगरबी एशिया की सूरत हाल और दीगर इलाकाई आलमी और कसीर जहती मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की मुसलसल पेशरफ्त का जायजा भी लिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जौहरी तवानाई पैदा करते हुए यूरेनियम की फराहमी समेत तवानाई के शोबे में बाहमी तआवुन बढ़ रहा है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों मुल्क अहम मादनियात के शोबे में मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से लेकर बहुत शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून के केरलम पहुंचने में 1-2 दिन की ताखीर हो सकती है। इससे पहले मानसून के कल वहां पहुंचने की पेशगोई की गई थी। तफसील हमारे नामा निकार से।
2: केरलम के जनूबी हिस्से में कुछ इलाकों में आज सुबह तक 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दीगर मकामात और लक्षद्वीप में कोई बारिश नहीं हुई। केरलम में फिलहाल अगले 4 दिन तक तेज बारिश होने की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। इससे पहले वहां मॉनसून के 26 मई को पहुंचने की पेशगोई की गई थी। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में फजाई आलूदगी कम करने की खातिर मुख्तलिफ एजेंसियों के माबैन बेहतर तालमेल, तेजी के साथ अमल दरामद और सख्ती के साथ निफाज की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर मौसूफ ने कौमी राजधानी में हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाने की खातिर किए जाने वाले इकदाम की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के साथ जायजा मीटिंग की। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाजों की तफसीलात जारी की हैं, जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है। अमेजोन के बानी जेफ बेजोस की खलाई कंपनी ब्लू ओरिजिन उन कंपनियों में से एक है जिनका इंतखाब मशीनें तैयार करने के लिए किया गया है। अमरीका का ये मंसूबा है कि साल 2028 में सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने ओहदे से सुबुकदोश होने से कबल अमरीकी खलाबाज

0: जहाजों को फिर से चांद पर भेजा जाए। रेलवे की वजारत ने हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली डीईएमयू ट्रेन के लॉन्च की मंजूरी दे दी है। इसमें 10 रेल डिब्बे होंगे। ये इकदाम रेलवे के शोबे में माहौलियात के लिए साजगार और पायदार ट्रांसपोर्टेशन को फरोग देने की समत एक अहम कदम है। ये रेलगाड़ी बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल्स का इस्तेमाल करते हुए जींद और सोनीपत के दरमियान चलेगी, जिसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा होगी। मस्कुरा रेलगाड़ी में 1200 किलोवाट की मजमुई पावर सलाहियत होगी। इस ट्रेन में पावर निजाम सिर्फ एक रेल इंजन तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये ट्रेन के सभी रेल डिब्बों तक फैला होगा। कल पंजाब में हुए आम बल्दियाती इंतखाबात में तकरीबन 64% वोटिंग दर्ज की गई। 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, 75 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 19 नगर पंचायत समेत 102 बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए इंतखाब कराए गए थे। मुखालिफ पार्टियों के हामियों के दरमियान कुछ झड़पें भी हुईं, लेकिन रियासती इंतखाबी कमीशन ने इस बात की तस्दीक की है कि इंतखाबी अमल ज्यादातर पुरअमन रहे। वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इस बीच गुरदासपुर के दीनानगर, कादियान और शाम 84 के म्यूनिसिपल काउंसिल हलकों में 13 जून को इंतखाबात कराए जाने का ऐलान किया गया है। कल रात धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर वन मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंच गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जानिब से दिए गए 255 रन के बड़े निशाने का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम 3 गेंद रहते 162 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबल होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असगर अली।
1: शुक्रिया नीतिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में होने वाली क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग को अहमियत के साथ शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि क्वाड वज़राए खारजा के इजलास में अहम समझौते। रोजनामा प्रताप ने इसे अपनी पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि हिंद बहरुल काहिल खत्ते में बहरी सलामती में क्वाड रोल निभाएगा। हज के सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफात की अदायगी के मौके पर दुनिया भर से लाखों हुजाज इकराम के मैदान अरफात में जमा होने की खबर को भी बेशतर उर्दू अखबार ने पहले सफ़े पर जगह दी है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर उनको मुबारकबाद दिए जाने और नेक ख्वाहिशात के इजहार को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया करते हुए इन 12 सालों को कौमी खिदमत, अच्छी हुक्मरानी, खुद इन्हेजारी, गरीबों की फलाह बहबूद और हिंदुस्तान की आलमी साख को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का दौर करार दिया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दाखिला अमित शाह के बैन अलावी सरहदों को नाकाबिल तस्खीर बनाने के बयान को दूसरी सबसे अहम खबर बनाई है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी सरकार ने दरअंदाजी और दीगर वजूहत से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजर सानी को चैलेंज किया गया है। सीबीएसई ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम की खिलाफ वर्जी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी आगरा की प्रातःकालीन सभा में। 8:45 हो रहे हैं, इस समय हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: आज तक कोई नहीं नाप पाया है। जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे प्यार की हद की, उसके इंतहा की, उसके अंजाम की, वो खूबसूरत इजहार की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस मधुर गीत के साथ।
1: जी कर देखता रहूं
2: क्या

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आज हम आपको कुछ ऐसे गीत सुनवा रहे हैं जिसमें सिर्फ मोहब्बत की बात हो रही है। वैसे हमारे गीतकारों ने लाखों हजारों गीत लिखे मोहब्बत पर, मोहब्बत के इजहार पे, मोहब्बत के अंजाम पे। जी हाँ, तो अगला गीत सुनते हैं। प्यार छुपाने से नहीं छुपता, ये तो इत्र है, महक जाता है। दिल की बात जुबां पर ना आए तो आंखों से छलक जाता है।

नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश पर बात कर ली। मोहब्बत की महफिल में धड़कते हुए दिलों ने शुरुआत कर ली।

फिल्म का नाम मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अब अजय कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीत रानी मलिक का था, संगीत अनु मलिक का। और उसके पहले हमने आपको राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत सुनवाया था जिसमें आवाज़ थी उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीत समीर का था, संगीत नदीम शमन का था। आप यहाँ आकाशवाणी आगरा के साथ सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। अगली पेशकश

आधे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें तेरी मेरे साथ पांव पांव चली, बस टिक गई नजरें तुझ पर तेरी खूबसूरती पर।

जैसे भी हो हम शौक से चलते हैं, सुकून ही चैन है मगर बेचैनी भी, ख्याल बिखरने का, टूट जाने का। जी हाँ, आपने राज फिल्म का गीत सुना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, बोल समीर के, संगीत नदीम शर्मन का। अगली पेशकश। प्यार, जिक्र एक बार फिर से मोहब्बत का, इश्क का। पेश खिदमत है ये खूबसूरत नगमा। मोहब्बत की हद का

बनारस। इस पर मैं आप सुन रहे थे अलका याग्निक को, गीत एक बार फिर समीर का था और संगीत हिमेश रेशमिया का, और प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। महसूस करते हैं प्यार की हद को। फिल्म का नाम लव 86।

ये आवाजें कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की और गीत संतोष आनंद का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

नाम कुछ भी दीजिए, ये मेल है दो दिलों का, दो तनों का, दो मनों का, और बंधन है मोहब्बत की मजबूत डोर का। फिल्म लवेटिसिस के इस गीत के साथ ही गीतांजलि प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। और आपको बता दें, गीत मंजूषा लेकर हम फिर से हाजिर होंगे कुछ पुराने फिल्मी नगमों के साथ सुबह 9:25 पर। फिलहाल आपको ले चलते हैं अपने लखनऊ स्टूडियो जिले के हलचल के लिए। बस थोड़ी ही देर में।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और भदोही जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
1: जनपद उन्नाव में भीषण गर्मी से तापमान लगातार 43 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे लू हीट वेव का प्रकोप जारी है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जहां भीषण गर्मी और तापमान से जिला अस्पताल में डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में भारी उछाल आया है, वहीं ओपीडी में रोज लगभग 1200 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। वहीं गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग ने जिले के सरैया, शुक्लागंज और गंगाघाट टाउन सब स्टेशनों पर लगे बड़े ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए जंबो कूलर लगाए गए हैं। वहीं हीट वेव से बचाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से अपील की है कि अत्यधिक तेज धूप में बाहर न निकलें। विशेषकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलते समय सिर एवं शरीर को ढके टोपी, गमछा, दुपट्टा या छाते का प्रयोग अवश्य करें। पर्याप्त मात्रा में पानी एवं तरल पदार्थ का सेवन करें। शरीर को हाइड्रेट रखने हेतु दिन भर पानी पीते

0: रहे ORS, शिकंजी, आमपना, नींबू पानी आदि का सेवन लाभकारी है। वहीं प्रशासन ने खेतों में कार्य करने वाले कृषकों को दोपहर में कार्य न करने की सलाह दी है। वह पशुओं को छायादार स्थान पर बांधने तथा उन्हें पर्याप्त पानी पिलाते रहें। घरों की छतों पर पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें तथा किसी भी प्रकार की आपात सहायता है तो कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर संचालित कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क करें। जिले में सड़क संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए बिलग्राम उन्नाव प्रयागराज मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। सांसद साक्षी महाराज ने इस परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सड़क को सुरक्षित, सुगम और आधुनिक बनाना है, जिससे क्षेत्रीय जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सड़क तथा आधारभूत ढांचे के विकास पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है। सड़क के चौड़ीकरण से आवागमन में आसानी होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं यह परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसकी स्वीकृति मिलने से जनता में खुशी है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क से ग्रामीण क्षेत्रों की जिला मुख्यालय और अन्य शहरों से जुड़ने की सुविधा मिलेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतियों में तेजी आएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी सड़क निर्माण परियोजना पर प्रसन्नता व्यक्त की। उनका कहना है कि मार्ग के चौड़ीकरण से आए दिन लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इससे भारी वाहनों और यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। जिले के निराला प्रेक्षागृह में शिक्षा में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में लगभग 1300 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जिन्हें इस अवसर पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि
1: जनपद में लगभग 1300 के आसपास शिक्षा मित्र हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और जो उनका मानदेय राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया है उसी क्रम में ये प्रोग्राम किया गया था। कुछ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको हम लोग ने मंच पे भी उनको सम्मानित किया और इससे एक अच्छा मैसेज आएगा और साथ ही जो हमारी शिक्षा का जो स्तर है उसको और हम लोग सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे।
0: यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय में की गई वृद्धि के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से शिक्षा मित्रों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस कार्यक्रम से सकारात्मक संदेश जाएगा और जिले की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र धौरा में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन एवं संतुलित उर्वरक उपयोग पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज ने की। इस अवसर पर कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक, आम उत्पादक, व्यापारिक और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम उत्पादकों, व्यापारियों और संबंधित संस्थाओं को एक साझा मंच प्रदान करना था। इसका लक्ष्य आम उत्पादक, भंडारण और विपणन जैसी जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनके समाधान खोजना था। प्रतिभागियों ने आम की गुणवत्ता सुधारने, बेहतर विपणन व्यवस्था स्थापित करने और उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज ने कहा कि प्रशासन किसानों और आम उत्पादकों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संजय कुमार श्रीवास्तव का।
3: हीट वेव के प्रकोप से भदोही समेत पूर्वांचल के कई जिले तप रहे हैं। जिले में तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को घरों से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तमाम उपाय अपनाने पर मजबूर हैं। इसी बीच जिला प्रशासन ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी और चेतावनी के अनुसार भदोही उन जनपदों में शामिल है जहां भीषण ग्रीष्म लहर की चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन विभाग और जिला अधिकारी कार्यालय आपदा मित्रों के माध्यम से गांव और शहर स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डीएम ने कहा, गर्मी अपने चरम पे है, लोग 12 से 4 बजे के बीच बाहर से निकलने से बचें, अधिक से अधिक पानी पीकर शरीर को हाइड्रेट रखें और चेहरे और शरीर को ढककर ही बाहर आएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर हीट वेव वार्ड और ORS काउंटर संचालित किया जाए, जबकि पब्लिक एड्रेस सिस्टम और वाटर स्प्रे के जरिए भी राहत और जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया,
4: इस समय जो है गर्मी अपने चरम पर है और इस समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता

0: सकता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो कोशिश ये करें कि दोपहर में 12 से 4 अपने कार्य जो आउटसाइड के हैं उनको न करें, उसके पहले अथवा उसके बाद में ही जो है इस तरह के कार्य करें। दूसरे आवश्यक यह है कि अपना हाइड्रेशन बना करके रखने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक पानी पिए, चेहरे को शरीर को पूरी तरीके से ढक करके ही अगर अवश्यंभव स्थिति है तभी निकला जाए।
1: भदोही के युवा क्रिकेटर हर्ष दुबे का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हो गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे श्रृंखला के लिए उन्हें टीम में 15 खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है। हर्ष गोपीगंज नगर के समीप तिलंगा गांव के निवासी हैं। उनके चयन की खबर मिलते ही परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। हर्ष ने क्रिकेट में अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। वे विदर्भ की ओर से अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। रणजी ट्रॉफी में एक सीजन उन्होंने 69 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद उनका चयन इंडिया टीम ए में हुआ। वर्तमान में वे IPL के सनराइज हैदराबाद की ओर से खेल रहे हैं। उनके पिता सुरेंद्र भी पहले CISF में तैनात थे, अब परिवार नागपुर में रहता है। हर्ष की सफलता से भदोही जिले के युवाओं को प्रेरणा मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले को नई उपलब्धि मिली है। काशी नरेश राज की विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय में शोध और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने बताया कि
2: ये बहुत पुराना कॉलेज है, आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। तो इसमें हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, इस पे मेरा प्रयास रहेगा।
1: भदोही जिले में विकास कार्यों को गति मिल रही है। सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी को शिवनाथ धाम से जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 21.66 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही कार्य शुरू होगा। सड़क चौड़ी होने से लगभग 20 गांव के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भदोही जिले की सहकारी समितियों की जीर्णोद्धार की योजना शुरू की गई है। शासन ने 11 समितियों के नवीनीकरण के लिए 1.3 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। प्रत्येक समिति पर लगभग 9.40 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। जिले में कुल 52 सहकारी समितियां हैं, जिनमें से अधिकांश भवन काफी पुराने और जर्जर हो चुके हैं। इन समितियों के माध्यम से किसान को खाद, बीज और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। धान और गेहूं खरीद का कार्य भी इन्हीं केंद्रों पर होता है। भवन जर्जर होने के कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब इनके नवीनीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बेहतर होंगी। साथ ही समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य भी किया जा रहा है ताकि किसानों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके। उद्योग क्षेत्र में राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण MSME सेक्टर प्रभावित हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने रिलीफ योजना नामक विशेष सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 497 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है। भदोही का कालीन उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी सहायता से उद्योग को मजबूती मिलने की संभावना है। इससे भदोही के कालीन निर्यातकों को राहत मिलेगी।
3: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की चल का आज का अंक।
4: सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी आगरा की प्रातःकालीन सभा में। सुबह के 9:25 हो रहे हैं। समय है पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत मंजूषा का, और यह है कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है ताजमहल। आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। गीत साहिर का, संगीत रोशन का।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मी नगमे आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रोग्राम गीत मंजूषा में। अभी जो गीत आपने सुना उसे हमने फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी से लिया था। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी, गीत राजेंद्र कृष्ण का था, संगीत मदन मोहन का, एक छोटा सा अंतराल।

0: दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर्स पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: एक बार फिर से स्वागत आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गीत मंजूषा में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कश्मीर की गली। मधुर आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। गीत है सच्चे बिहारी का, संगीत ओपी नैयर साहब का।

0: गीत मंजूषा कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से और प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।
1: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
0: फिल्म का नाम है सच्चा झूठा, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत के बोल इंदीवर के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के गाए फिल्म सच्चा झूठा के इस गीत के साथ ही गीत मंजूठा कार्यक्रम अभी ही संपन्न होता है। आपको बता दें, फिल्म संगीत इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10 बजे कार्यक्रम सुर सरिता में। हम आकाशवाणी आगरा से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: रहने दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: और अब लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रविंद्र कुमार शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। गुरु मेरे देव समान, जी हाँ, सुनिए रविंद्र कुमार शर्मा को। प्रसारण आकाशवाणी आगरा से।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रविंद्र कुमार शर्मा के गाए कुछ प्रचलित लोकगीत। हम आकाशवाणी आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

0: अभी आप सुन रहे थे अमित त्रिवेदी को, फिल्म का नाम था अंधाधुंध। गीत जयदीप साहनी का था, संगीत अमित त्रिवेदी का ही था। उसके पहले हमने आपको बाजार फिल्म का गीत सुनवाया था, जिसमें आवाज़ें थी प्रतिभा सिंह बघेल, राहत फतेह अली खां की। गीत जमील अहमद का था, संगीत सोहेल सेन का था। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता, आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। प्रोग्राम जारी है छोटा संतराल।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

फिल्म का नाम है एयरलिफ्ट। गायक कलाकार अमाल मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार। गीत के बोल कुमार के, संगीत अमाल मलिक का।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।

फिल्म का नाम है अमावस, गायक कलाकार अरमान मलिक, गीत जुनैद वासी का, संगीत असद खान का। साथियों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरसरिता आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

प्रोग्राम के आखिर में सुनिए, फिल्म का नाम है हैप्पी फिर भाग जाएगी। गायक कलाकार शाहिद मलाया, पीयूष मिश्रा और मुदस्सर अजीज, गीत मुदस्सर अजीज का, संगीत सोहेल सेन का।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता अब यहीं संपन्न होता है। अपने सुनने वालों को एक बार फिर से बता दें, इसी सभा में सुबह 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार, और उस कार्यक्रम में आज होंगे स्टंट मास्टर वीरू देवगन। उसके बाद 11:30 पर आप सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हो रहे हैं। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का राग भैरव में बांसुरी वादन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग भैरव। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी आभा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय फिल्म जगत के जाने माने स्टंटमैन वीरू देवगन जी के बारे में। मित्रों, वीरू देवगन जी का पूरा नाम वीरेंद्र हरजीदास देव

किसान हैं, जिनका जन्म 25 जून सन 1934 में हुआ था। वीरू देवगन एक भारतीय एक्शन कोरियोग्राफर, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे, जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। मित्रों, अपने करियर के दौरान उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अपना योगदान दिया, जिनमें फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, 1979 में आई फिल्म मिस्टर नटवरलाल, फिल्म क्रांति, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, आज का अर्जुन, फूल और कांटे और फिल्म जिगर जैसी शानदार फिल्में शामिल हैं। तो मित्रों, आज वीरू देवगन जी के बारे में हम आपसे और भी विस्तार से बातें करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओ, वीरू देवगन ने बड़ी ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में फिल्म उद्योग में अपनी यात्रा शुरू की थी। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे पंजाब से बिना टिकट ट्रेन से बॉम्बे पहुंच गए थे। आर्थिक तंगी का सामना करते हुए उन्हें भोजन या आश्रय के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा था। फिल्म उद्योग में उनका प्रवेश अप्रत्याशित रूप से हुआ जब प्रसिद्ध एक्शन निर्देशक रवि खन्ना ने उन्हें गली लड़ाई के दौरान देखा। उनके इस लड़ाई कौशल से प्रभावित होकर रवि खन्ना ने उन्हें अगले दिन मिलने के लिए आमंत्रित किया, जिसे हिंदी सिनेमा में एक इंस्टंटमैन और बाद में एक प्रसिद्ध एक्शन निर्देशक के रूप में देवगन के करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद वीरू देवगन को पहली बार सन 1974 में

मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से ब्रेक मिला, जिसके बाद कई दशकों तक उन्होंने फिल्म मिस्टर नटवरलाल, एक खिलाड़ी, 52 पत्ते, फूल और कांटे, जिगर, फिल्म दिल क्या करे आदि सहित 100 से भी अधिक विभिन्न हिंदी फिल्मों के लिए लड़ाई और एक्शन दृश्यों की कोरियोग्राफी की। संजय गुप्ता जैसे निर्देशकों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का महानतम एक्शन निर्देशक माना है। और आप जानते हैं, ही मैन कहे जाने वाले हमारे अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी और जितेंद्र जी जैसे दिग्गज अभिनेताओं ने अक्सर केवल इस आधार पर फिल्म करते थे कि फिल्म के स्टंट देवगन द्वारा निर्देशित किए जा रहे थे। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उन्हें हिंदी सिनेमा का महानतम एक्शन निर्देशक

सर केवल इस आधार पर फिल्म करते थे कि फिल्म के स्टंट देवगन द्वारा निर्देशित किए जा रहे थे। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उन्हें हिंदी सिनेमा का महानतम एक्शन निर्देशक कहा है और कहा कि स्टंट के लिए देवगन का वही स्थान था जो पार्श्व गायन के लिए लता मंगेशकर जी और नृत्य कोरियोग्राफी के लिए सरोज खान का था, क्योंकि सभी प्रमुख अभिनेता वीर देखने के लिए उनके साथ काम करना चाहते थे। इतना ही नहीं, देवगन जी ने श्याम कौशल सहित अगली पीढ़ी के एक्शन निर्देशकों को भी अपना विशेष मार्गदर्शन दिया था।

श्रोताओ, कार्यक्रम आज के कलाकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। हम बात कर रहे हैं स्टंट मास्टर वीरू देवगन के बारे में। मित्रों, वीरू देवगन एक अच्छे स्टंट मास्टर होने के साथ साथ एक कुशल निर्देशक और निर्माता भी थे। देवगन ने सन 1999 में फिल्म हिंदुस्तान की कसम के साथ फिल्म निर्देशन में भी कदम रखा, जिसमें उनके बेटे अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, मनीषा कोइराला और सुष्मिता सेन ने अभिनय किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म निर्माण में भी अपना हाथ आजमाया और उसी वर्ष उन्होंने अपने बेटे के साथ ही मुख्य भूमिका में एक और फिल्म दिल क्या करे का निर्माण किया था। इसके साथ ही उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया, जिनमें ज्यादातर छोटी भूमिकाएं शामिल थीं। इनमें सन 1981 की फिल्म क्रांति भी शामिल है। और मित्रों, अगर हम उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो अमृतसर में देवगन परिवार में जन्मे वीरू देवगन का विवाह वीना जी से हुआ था और उनके तीन संतानें थीं, जिनमें अभिनेता अजय देवगन भी शामिल हैं, जिन्हें हम सभी जानते हैं। श्रोताओ, इससे पहले कि हम वीरू देवगन के बारे में और ढेर सारी बातें करें, पहले सुन लेते हैं उन्हीं के निर्देशन में बनी फिल्म हिंदुस्तान की कसम का ये गीत।

श्रोताओं, वीरू देवगन जो शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे, उन्हें अंतिम बार फरवरी 2019 में आई फिल्म टोटल धमाल की विशेष स्क्रीनिंग में देखा गया था, जिसके बाद वे अस्वस्थ हो गए थे और वृद्धावस्था व खराब स्वास्थ्य ने उनकी हालत और भी बिगाड़ दी थी। उन्हें लगातार सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत सांता क्रूज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि भर्ती होने के बाद भी उनकी हालत में सुधार तो नहीं हुआ, बल्कि हालत और गंभीर हो गई और अंततः 27 मई यानी आज ही के दिन सन 2019 की सुबह 84 वर्ष की आयु में उन्होंने सदा के लिए इस संसार को अलविदा कह दिया।

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम आज के कलाकार अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मुस्लिम समुदाय के विशेष त्यौहार ईद उल अजहा के बारे में। श्रोताओं, ईद उल अजहा इस्लाम धर्म के धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। रमजान के महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन ईश्वर के लिए कुर्बान करने जा रहे थे, जिसे ईश्वर ने जीवन दान दिया था, और इसी की याद में ये पर्व मनाया जाता है। तो श्रोताओं, आज इस विषय पर हम और भी बातें करने वाले हैं, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये गीत।

श्रोताओ, ईद कुर्बान का मतलब है बलिदान की भावना। अरबी में कर्ब नज़दीकी या बहुत पास रहने को कहते हैं, मतलब इस मौके पर ईश्वर इंसान के बहुत करीब हो जाते हैं। कुर्बानी यानी ईद उल अज़हा का त्यौहार हिजरी के आखिरी महीने के 10वें दिन मनाते हैं और पूरी दुनिया से मुसलमान इस महीने में मक्का सऊदी अरब में एकत्र होकर हज मनाते हैं। वास्तव में ये हज की एक अंशीय अदायगी और मुसलमानों के भाव का दिन है। दुनिया भर के मुसलमानों का एक समूह मक्का में हज करता है और ये बाकी मुसलमानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाव का दिन बन जाता है। ये त्याग वाली ईद है और इस दिन कुर्बानी देकर लोग ईश्वर के प्रति अपने त्याग की भावना को प्रकट करते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। हम बात कर रहे हैं ईद उल अजहा के बारे में। श्रोताओं, हज और उसके साथ जुड़ी हुई पद्धति, हजरत इब्राहिम और उनके परिवार द्वारा किए गए कार्यों को प्रतीकात्मक तौर पर दोहराने का नाम है। हजरत इब्राहिम के परिवार में उनकी पत्नी हाजरा और पुत्र इस्माइल थे। मान्यता है कि हजरत इब्राहिम ने एक स्वप्न देखा था जिसमें वे अपने पुत्र इस्माइल को ईश्वर की राह पर कुर्बान करने निकले थे। पुस्तकों में आता है कि ईश्वर ने अपने फरिश्ते को भेजकर इस्माइल की जगह एक जानवर को आगे कर दिया और इस्माइल को जीवन दान दिया। दरअसल इब्राहिम से जो असल कुर्बानी मांगी गई थी वो थी उनकी खुद की कुर्बानी, अर्थात ये कि खुद को भूल जाओ, मतलब अपने सुख अपने आराम को भूलकर अपने आप को मानवता यानी इंसानियत की सेवा में पूरी तरह से लगा दो। तब उन्होंने अपने पुत्र और अपनी पत्नी हाजरा को मक्का में बसाने का निर्णय लिया, लेकिन मक्का उस समय रेगिस्तान के सेवा कुछ न था। उन्हें मक्का में बसाकर वे खुद मानव सेवा के लिए निकल गए। इस तरह मित्रों, एक रेगिस्तान में बसना उनकी और उनके परिवार की कुर्बानी थी। जब इस्माइल बड़े हुए तो उधर से एक काफिला गुजरा और इस्माइल का विवाह उस काफिले में से एक युवती से करा दिया गया। फिर प्रारंभ हुआ एक वंश जिसे इतिहास में इस्माइलिट्स या वनु इस्माइल के नाम से जाना गया। मित्रों, हजरत मोहम्मद साहब का इसी वंश में जन्म हुआ था। मुख्यतः ईद उल अजहा के का संदेश है, परिवार के बड़े सदस्य को स्वार्थ से परे देखना चाहिए और खुद को मानव उत्थान के लिए समर्पित कर देना चाहिए। और मित्रों, ये दिन ये भी याद दिलाता है कि कैसे एक छोटे से परिवार

श्रोताओ, ईद उल अजहा को ईद उल अधा, ईद उल जुहा जैसे और बकरीद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मुसलमानों का एक प्रमुख त्यौहार है। इस दिन मुस्लिम बहुल क्षेत्र के बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। बकरीद पर लोग नए कपड़े, खजूर और सेवइयां खरीदते हैं। इस दिन कुर्बानी देना उनके यहाँ शबाब का काम माना जाता है। मित्रों, इस्लामी साल में दो ईदें पड़ती हैं, एक ईद उल जुहा और एक ईद उल फितर। इसमें ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है, जिसे रमज़ान को समाप्त करते हुए मनाया जाता है। लेकिन बकरीद यानी ईद उल जुहा का इस्लाम में एक अलग ही महत्व है। इसे बड़ी ईद भी कहा जाता है, जो कि हज की समाप्ति पर मनाया जाता है। श्रोताओ, इस्लाम के पांच फर्ज माने गए हैं, उनमें से हज करना आखिरी फर्ज माना गया है। और मुसलमानों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार हज करना ज़रूरी है। हज होने की खुशी में ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाता है। ये विशेषता बलिदान का त्यौहार है। और श्रोताओं, कहा गया है कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को खुदा की राह में खर्च करना ही सबसे बड़ा बलिदान है, यानी स्वयं को मानवता, नेकी और भलाई के कामों में समर्पित कर देना चाहिए। वास्तव में ईश्वर इसी से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं।

श्रोताओ, इसी के साथ ही कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत को यहीं संपन्न करने की अपने रेडियो साथी आभा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को आज हम किस फूल की बात करेंगे।
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना

0: चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुंचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से,
0: जी।
1: जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था।
0: जी।
1: बाद में यह शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
0: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3,000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी,
0: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है,
1: जैसे
0: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी
0: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
0: जी
1: अब विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास, जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
0: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो यह है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहां तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
0: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई, जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।

0: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
1: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
0: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
1: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
0: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
1: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
0: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
0: मश्क।
3: होशियार,
0: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
0: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
0: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
4: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
6: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से।

0: बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
1: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
0: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
1: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
0: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
2: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
3: क्या बात है,
2: सुनकर ही जोश आ गया।
3: हाँ
2: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े।

0: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
1: क्या बात है,
0: सुनकर ही जोश आ गया।
1: हाँ
0: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई। शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े, संभल कर रहना भाई।
1: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
2: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा।

विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन

0: पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था।

0: इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
1: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
2: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
3: क्या बात कही है?
1: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
2: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
2: जी सर।
1: हमला करो। दुर्गा माता की जय। माता की जय।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबरा कर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
3: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
3: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूं।
3: साहब जी
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक

0: परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCRT आकाशवाणी का। ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स एवं न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। अब समय है नई फिल्मों से फिल्म संगीत के कार्यक्रम नए तराने का। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं सोहम, आकृति कक्कर, मोनाली ठाकुर की आवाज़ों में गुलजार की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई है प्रीतम ने। फिल्म का नाम है बिल्लू बार बार।

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म राजा भैया का ये गीत। गीत को लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, कार्यक्रम नई तरह ने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे जावेद अख्तर की शब्द रचना को। धुन बनाई थी अनु मलिक ने, फिल्म का नाम था रिफ्यूजी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और असीस कौर की आवाज़ों में फिल्म सिम्बा का ये।

मोनाली ठाकुर के गाए फिल्म दम लगा के हईशा के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नए तरह ने अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना

0: न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. The judgment pronounced by CJI Suryakant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such a manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modalities contemplated for routine revision. Therefore, it cannot be said that the Commission has acted in excess of its statutory powers. The Central Bureau of Investigation CBI has arrested two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET UG 2026 questions leak case. According to CBI, he played a key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching center owner, in getting the chemistry questions from the accused P.V. Kulkarni. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching center. He got the leaked physics questions of NEET UG 2026 exam from the arrested accused Manisha Havaldar. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. In a social media post, Mr. Modi advised all to keep themselves hydrated and carry water when stepping out of homes, stressing about increasing difficulties caused by the heat in daily life. Mr. Modi said that in such a weather, sensitivity becomes a great source of support. He further directed placing a small vessel filled with water outside their homes, balconies, rooftops, shops or offices, keeping in mind the animals and birds. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a series of high-level meetings with senior Canadian business leaders and institutional investors in Toronto during the second day of his visit to Canada. The Commerce and Industry Minister said the meeting was aimed at deepening bilateral cooperation and promoting investments and technology partnerships across strategic sectors. During the visit, Mr. Goyal met Canada's International Trade Minister Maninder Sidhu and discussed

0: discussed growing complementarities between India and Canada and underscored the need for a more robust and predictable business ecosystem driven by stronger government-industry collaborations. The ministry said that both sides also reaffirmed their shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030 and concluding the CEPA negotiations by the end of the year. This was followed by Canada-India Investment Roundtable, co-chaired by both the ministers. United States Senator Lindsey Graham has questioned Pakistan's role as a possible mediator between the U.S. and Iran, saying it cannot be seen as neutral because of its long-standing opposition to Israel. In a social media post, Graham claimed that Iranian military aircraft were being kept at Pakistani air bases and said comments by Pakistani leaders about Israel were disturbing. Graham also urged Pakistan to clearly respond to U.S. President Donald Trump's call to join the Abraham Accords. The remarks came after Pakistan's defense minister, Khwaja Mohammad Asif, rejected the idea of Pakistan joining the Abraham Accords in an interview. Injured in Israeli air raids across southern Lebanon. According to Lebanon's Ministry of Public Health, the strikes targeted yesterday in several towns and villages amid escalating cross-border tensions between Israel and Hezbollah. And that is the end of this news bulletin.
1: Ye Akashvani Lucknow hai. Ilaqai khabrein Deeba Hashmi se. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सबसे बड़े निशानों को भी मुसलसल कोशिश, तहम्मुल और मजबूत कुव्वत-ए-इरादे से हासिल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि मुल्क की अवाम इसी जज्बे से मुतासर होकर हिंदुस्तान को नई बुलंदियों पर ले जा रही है। सुभाषितम कहता है कि एक ख्वाहिशमंद शख्स निशाना हासिल करने की सिमत में अगर मुसलसल बाकायदगी से कोशिश करता है तो वो उसे यकीनी तौर पर हासिल कर लेता है। ऐसा करते हुए उस शख्स को बीच रास्ते में ही हार मानकर अपने रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए। मरकजी हुकूमत ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से होने वाली डेमोग्राफिक तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज प्रभाकर नावलेकर करेंगे। सेंसस कमिश्नर के साथ साथ साबिक आईएएस अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शमिका रवि को इस कमेटी का रुक्न मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कमेटी में रुक्न सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि यह कमेटी गैर कानूनी नकल मकानी और दीगर गैर फितरी वजूहात से पूरे मुल्क में हो रही डेमोग्राफिक तब्दीलियों की जामे तशखीस करेगी। एक रिपोर्ट।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये उस पेठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहा है। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सेहत और महकमा तिब्बी तालीम के कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अहकाम दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और इमरजेंसी खिदमात की क्वालिटी मुसलसल बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के

0: लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के पेमेंट गेटवे निजाम में इसलाह के लिए अवामी शोबे के 4 खसूसी बैंकों के सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग कर तवील बातचीत की। इस दौरान जनाब प्रधान ने तलबा को दिक्कतों से बचाने के लिए बगैर रखना और महफूज अदायगी निजाम की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान CBSE ने वाजे किया है कि आंसर शीट की तशखीस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम में कोई हिफाजत खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। CBSE ने कहा है कि असली तशखीस कामों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पोर्टल पर कोई हिफाजत खिलाफ वर्जी रोशनी में नहीं आई। डालीगंज नकहा जंगल नई सवारी गाड़ी की बाकायदा आमदोरफ्त शुरू हो गई है। गाड़ी नंबर 55062 डालीगंज से आज 5:45 पर चलकर कल सुबह 4:45 पर नकहा जंगल पहुंचेगी। दरियस्ता वापसी में गाड़ी नंबर 55061 नकहा जंगल गोंडा डालीगंज सवारी गाड़ी

0: की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान सीबीएसई ने वाजे किया है कि आंसर शीट की तशखीस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम में कोई हिफाजत खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। सीबीएसई ने कहा है कि असली तशखीस कामों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पोर्टल पर कोई हिफाजत खिलाफ वर्जी रोशनी में नहीं आई। डालीगंज नकहा जंगल नई सवारी गाड़ी की बाकायदा आमदोरफ्त शुरू हो गई है। गाड़ी नंबर 55062 डालीगंज से आज 5:45 पर चलकर कल सुबह 4:45 पर नकहा जंगल पहुंचेगी। दरियस्ता वापसी में गाड़ी नंबर 55061 नकहा जंगल गोंडा डालीगंज सवारी गाड़ी नकहा जंगल स्टेशन से रात 11:10 पर चलकर अगले दिन सुबह 9:25 पर डालीगंज पहुंचेगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर कल देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में एक लड़की और दो खवातीन समेत तीन अफराद जा बहक हो गए, जबकि पांच लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए। यह हादसा रायबरेली जिले के सलोन थाना हलके के रसूलपुर गांव के नजदीक पेश आया, जब दिल्ली से जौनपुर लौट रहे कुनबे की तेज रफ्तार कार गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। रियासत में कल भी दिन भर तेज धूप, शदीद गर्मी और लू का कहर जारी रहा, मगर शदीद गर्मी से झुलस रहे लोगों के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से राहत भरी खबर है। महकमे के मुताबिक मगरबी खलल के चलते कल से आंधी तूफान के साथ बारिश के भी इम्कान है, इससे दर्ज हरारत में गिरावट के साथ साथ तपिश से भी राहत मिलेगी। कल दारुलहुकूमत लखनऊ में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 42.9 और कम से कम दर्ज हरारत 28.3 डिग्री दर्ज किया गया। बांदा एक मरतबा फिर से पूरे मुल्क में सबसे गर्म रहा, जहां ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 47.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार।

कार्यक्रम घर संसार सुन रही सभी बहनों को उनकी रेडियो सहेली मंगला शर्मा पाराशर का नमस्कार। बी पॉजिटिव। जी हाँ बहनों, जब कभी हमारा मन नकारात्मक विचारों से घिरने लगता है, उदास, दुखी या अवसादग्रस्त होने लगता है, तब बी पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव रहने की सलाह हमें दी जाती है। और यही पॉजिटिविटी हमारी क्रिएटिविटी, सृजनशीलता को साकार करती है। किसी भी व्यक्ति की वह क्षमता जिससे वो नवीन, मौलिक और उपयोगी विचारों या समाधान का निर्माण करता है, उसकी रचनात्मकता कहलाती है। खास बात यह है कि रचनात्मकता केवल कला या साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रक्रिया भी है। बहनों, रचनात्मकता के पौधे को फलने फूलने के लिए जरूरत होती है शक्तिशाली सकारात्मक सोच रूपी खाद की, या फिर यूं कहें कि रचनात्मकता का प्रमुख आधार सकारात्मक सोच ही है। सकारात्मक सोच का आशय चीजों के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने के अभ्यास से है। दरअसल बहनों, जो लोग अपने सकारात्मक विचारों की शक्ति का प्रयोग नहीं करते, उन्हें गिलास आधा भरा हुआ नहीं बल्कि आधा खाली दिखाई देता है। चाहे बात घर गृहस्थी की हो या फिर कार्यस्थल की, कम से कम उपलब्ध संसाधनों के द्वारा ही कार्य को पूरा करना, ये भी रचनात्मकता का ही रूप है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि हमारा विश्वास ही विचार का रूप धारण करता है। यही विचार शब्द रूप में सामने आते हैं और शब्द व्यवहार में परिवर्तित होते हैं। यही व्यवहार आदत में और आदत मूल्यों में बदल जाती हैं। ये मूल्य हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। बहनों, सकारात्मकता हर किसी के मजबूत व्यक्तित्व का प्रमुख स्तंभ है, लेकिन क्योंकि हम महिलाएं अपने घर परिवार की धुरी हैं तो

0: बहनों, एक वृक्ष तभी मजबूती से खड़ा रह सकता है जब उसकी जड़ें गहरी और मजबूत हों, अर्थात अपनी जड़ों से जुड़े रहकर ही वास्तविक उन्नति और समृद्धि मिल सकती है। बहनों, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे जीवन रूपी वृक्ष की जड़ें हैं। बड़े बुजुर्गों का हमारे जीवन में महत्व दर्शाती एक कहानी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बूढ़ा बरगद। कहानीकार हैं अर्चना सिंघल।
1: रोशन लाल जी छड़ी लेकर कमरे में इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। बीच बीच में वह एक नज़र घड़ी पर डालते, कभी दरवाजे पर हल्की सी आहट होने पर उनके कान खड़े हो जाते। शायद कैलाश आया हो। तभी अंदर से आवाज़ आई, क्यों बेचैन हो, अभी 9 ही तो बजे हैं, आ जाएगा, काम में कहीं फंस गया होगा। कैलाश रोशन लाल जी की इकलौती संतान थी। रोशन लाल जी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उन्होंने बड़े ही लाड़ प्यार से अपने बेटे का पालन पोषण किया, उसे अच्छी शिक्षा दी। आज वह बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। रोशन लाल जी बुढ़ापे के चलते आज नौकरी नहीं कर सकते। वह पूरी तरह बेटे पर ही आश्रित हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर अपने लिए थोड़ी बहुत सेविंग्स के अलावा कुछ नहीं जोड़ा। जो भी कमाया बेटे की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर दिया। नौकरी के दौरान अपने साथ काम करने वाली प्रियंका से कैलाश को प्यार हो गया। उनके माँ बाप ने बगैर

बगैर किसी हुज्जत के उन दोनों की शादी करवा दी। कुछ सालों तक सब सही रहा। कैलाश और प्रियंका नौकरी पर जाते और माँ घर संभालती, अपने पोते आदि की भी पूरी देखभाल करती। धीरे धीरे माँ का शरीर जवाब देने लगा। अब वह ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे प्रियंका की आंखों में माँ बाप खटकने लगे। अब वह परेशान रहने लगी। सारा दिन नौकरी, फिर सारा दिन घर में नौकरानी की तरह काम करना उसे गंवारा नहीं था। वह कैलाश से कहती कि मम्मी पापा का कहीं इंतज़ाम कर दो, अब मुझसे इतना काम नहीं होता। कैलाश भी बातों को आई गई कर देता। अब धीरे धीरे कैलाश और प्रियंका के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। कैलाश ने प्रियंका को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु प्रियंका अपने फैसले से टस से मस ना हुई। हार कर रोशनलाल जी ने कलेजे पर पत्थर रखकर कैलाश से कहा कि बेटा तुम हमारी चिंता मत करो और अलग मकान देख लो। कैलाश अपने बीवी बच्चों को लेकर दूसरे मकान में चला गया। अब वह शनिवार की शनिवार अपने माँ बाप से मिलने आने लगा। वह उनकी जरूरत का सारा सामान दे जाता था। माँ बाप इसी में अपनी खुशी ढूंढ लेते थे, पर प्रियंका कभी ना आती और ना ही अपने बेटे को दादा दादी से मिलने भेजती। उनके बुलाने पर बहाना बना देती कि आदि के स्कूल का बहुत काम होता है, इसलिए उन्हें समय नहीं मिलता। आज रोशन लाल जी बेचैन थे कि कैलाश क्यों नहीं आया। उन दोनों के मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। जब काफ़ी समय गुजर गया और कैलाश के आने की कोई उम्मीद नहीं बची, तब रोशन लाल जी ने कांपते हाथों से फ़ोन का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से प्रियंका ने फ़ोन उठाया, बोली, क्या आपको चैन नहीं है? रात के 10 बजे हैं, आप अभी तक सोए नहीं हैं। आपको तो नींद नहीं आती, कम से कम हमें तो सोने दो। बेटा, आज कैलाश नहीं आया, हमें बहुत चिंता हो रही थी, कहते कहते उनका गला रुंध गया। आज मेरी मम्मी आई हैं, इसलिए नहीं आ सके, आपके पास तो हमेशा आते हैं। मेरी मम्मी कौन सी रोज रोज आती हैं, कहते हुए प्रियंका ने फोन पटक दिया। बेचारे कैलाशनाथ अपना सा मुंह लेकर रह गए। अब पूरे हफ्ते तक इंतजार करने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। दूसरा शनिवार आया, आज भी कैलाश नहीं आया। धीरे धीरे कैलाश ने आना बंद कर दिया। अब वे दोनों परेशान रहने लगे। उनका खर्चा भी चलाना मुश्किल होने लगा, ऊपर से उनकी दवाइयाँ। इधर प्रियंका और कैलाश अपनी ज़िंदगी में मस्त थे, उनको किसी की कोई परवाह नहीं थी। धीरे धीरे आदि भी बड़ा हो रहा था। एक दिन कैलाश की कंपनी में एक बड़ा गबन हो गया। इसमें कैलाश का नाम भी शामिल था। अब कैलाश को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। प्रियंका तो पहले ही नौकरी छोड़ चुकी थी, क्योंकि अब उसे ही आदि की पूरी देखभाल करनी होती थी। अब वे दोनों परेशान रहने लगे। माँ बाप के पास भी किस मुंह से जाते वे दोनों? एक दिन रोशन लाल जी ने अपनी पत्नी से कहा, यदि कैलाश नहीं आ पाता, व्यस्त रहता है, तो क्या हम भी तो उससे मिलने जा सकते हैं? आखिर वो हमारे बहू बेटे जो हैं। उनकी पत्नी बोली, हाँ, मुझे भी आदि की बहुत याद आ रही है। अगले दिन दोनों सुबह ही नहा धोकर कैलाश से मिलने उसके घर चल दिए। घर के दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजाई। प्रियंका ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वह माँ पिताजी को देखकर अनायास ही खुश हो गई। उसने झुककर दोनों के पैर छुए और आदर के साथ घर के अंदर ले गई। आदर के साथ बिठाया, अंदर से कैलाश भी आ गया। उसने दोनों के पैर छुए। अरे, आज तो ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुआ, तबीयत तो ठीक है ना बेटा? रोशन लाल जी ने अचरज से पूछा। नहीं बाबूजी, मैं ठीक हूँ। ऑफिस जाकर क्या करता, जब नौकरी ही नहीं रही? नौकरी नहीं रही मतलब? रोशन लाल जी ने चौंकते हुए पूछा। क्या बताऊँ पिताजी, कहते हुए उसकी आंखें नम हो गईं और कैलाश ने सारी बातें उन दोनों को बताई। सारी बातें सुनने के बाद रोशन लाल गहरी सोच में डूब गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी और बोले, बेटा तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं बाहर घूम कर आते हैं। पर बाबूजी कहाँ? तुम चलो तो सही बेटा। माँ ने प्रियंका को संबोधित करते हुए कहा कि बहू, तुम दोबारा नौकरी क्यों नहीं कर लेती? पर माँ, आदि, तुम इसकी चिंता मत करो बहू, मैं संभाल लूंगी। बस तुम्हें थोड़ा सा घर के कामों में हाथ बटाना होगा। पर माँ, आप कैसे संभालेंगी? आपकी उम्र अब इन सब कामों की कहाँ है? इस उम्र में हमें आपकी सेवा करनी चाहिए। और आप, कहते कहते उसकी आंखें डबडबा गई। शायद कहीं कोई पछतावा था उसके मन में। इधर रोशन लाल जी बेटे को लेकर एक कंपनी में गए। यह वही कंपनी थी जहाँ रोशन लाल जी नौकरी करते थे। वहाँ के मालिक ने उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ बैठाया।
चाय आदि।

0: की औपचारिकता के बाद मालिक ने उनके आने का कारण पूछा। तब रोशनलाल जी ने उन्हें कैलाश के विषय में सब कुछ बताया और कहा कि आप इसे अपने ऑफिस में रख लें। देखिए रोशनलाल जी, वैसे तो जब तक इन पर गबन का चार्ज है हम इन्हें अपने यहाँ नहीं रख सकते, पर आपकी ईमानदारी और लगन की आज भी हमारी कंपनी में चर्चा होती है। हम आपकी बात टाल नहीं सकते। आपका बेटा कुछ गलत काम नहीं कर सकता, ऐसा हमारा विश्वास है। आप परेशान मत होइए, कल से आप इन्हें ऑफिस भेज दीजिए, हम देख लेंगे। रोशनलाल जी ने मालिक को धन्यवाद दिया और कहा कि आपका मुझ पर उपकार होगा। उपकार कैसा, यह तो आपकी मेहनत का नतीजा है। कैलाश को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपने पिताजी से नजरें मिलाऊं। घर आकर रोशनलाल जी ने राहत की सांस ली। बोले, बेटा तुमने अपने माँ बाप को इतना पराया कर दिया, इतनी परेशानी से गुजर रहे थे लेकिन हमें बताया तक नहीं। पिताजी, कैसे बताता और किस मुंह से बताता, आपसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी मुझमें। मैंने जो आप लोगों के साथ किया, ऐसा मत कहो बेटा, रोशनलाल जी ने टोका। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन एक गलती करके दोबारा उसी गलती को दोहराना उससे बड़ी गलती है। उन्होंने प्यार से प्रियंका और कैलाश को अपने पास बिठाया और समझाया कि परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं सबका अपना अपना महत्व होता है। तुम्हारी माँ भले ही बूढ़ी सही घर का काम ना कर सकती हो, पर घर पर रहकर घर की रखवाली करना, आए गए को देखना भी तो एक काम है। तुम्हारे घर पर ना होने पर आदि की देखभाल करना, तुम्हारे ऑफिस से घर लौटने पर घर का ताला खुला मिलना, क्या ये सब काम नहीं है बेटा? घर से बाहर कदम रखने पर तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि घर का ताला ठीक से बंद किया कि नहीं, घर पर सब ठीक है कि नहीं। बेटा, मैं मानता हूँ कि बूढ़े माँ बाप को संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम है, पर बेटा बूढ़े माँ बाप बूढ़े बरगद की घनी छाँव की तरह होते हैं जिनकी छत्र छाया में बच्चे फलते फूलते हैं, और बेटा एक ना एक दिन सभी बूढ़े होते हैं। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें कैलाश की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है, कहते हुए प्रियंका फफक फफक कर रो पड़ी। आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी। मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा कि जिन माँ बाप को हम बेकार का सामान समझकर घर से निकालने की सोचते हैं, असल में वही हमारे जीवन के आधार होते हैं। माता पिता ही मजबूत नींव की तरह हमारे परिवार को बांध कर रखते हैं। कैलाश ने कहा कि अब हम आपके साथ ही आपके घर में रहेंगे। अगले दिन वे किराए का घर खाली करके अपने घर में रहने आ जाते हैं। कैलाश अपनी नई नौकरी पाकर खुश है। प्रियंका भी नौकरी की तलाश शुरू करती है। परिवार में एक बार फिर से खुशी का माहौल है।
1: अभी आपने सुनी अर्चना सिंघल की कहानी बूढ़ा बरगद, और अब है बारी कार्यक्रम सेगमेंट मेरी माटी मेरा देश की। आदमी दूसरों से बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन हर जरूरी बात उसे अपनी ही खोज और अपने ही अनुभव से प्राप्त करनी पड़ती है। बहनों, ये महान विचार हैं आधुनिक युग के निर्माता कहे जाने वाले स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और बच्चों के प्रति अगाध स्नेह रखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के। 14 नवंबर सन 1889 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्म लेने वाले जवाहरलाल अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेकर 15 साल की उम्र में इंग्लैंड गए। वहां से वकालत की पढ़ाई पूरी कर सन 1912 में भारत लौटे। वर्ष 1912 में बांकीपुर पटना में एक प्रतिनिधि के रूप में अपने पहले कांग्रेस सत्र में भाग लिया। वर्ष 1916 में एनी बेसेंट की होम रूल लीग में शामिल हुए। फिर वर्ष 1919 में इस लीग का इलाहाबाद सचिव उन्हें चुना गया। संक्षेप में कहा जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पूर्ण स्वराज की मांग रखी। वर्ष 1936 के लखनऊ और 1937 के फैजपुर अधिवेशनों की अध्यक्षता, वर्ष 1929 से 1931 के दौरान मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का मसौदा तैयार करना, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व जैसे कार्यों से स्वतंत्रता संग्राम में अपना अतुलनीय योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1953 में पंच

0: वर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिकरण को बढ़ावा और गुट निरपेक्ष आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। वर्ष 1955 में भारत रत्न और वर्ष 1970 में मरणोपरांत विश्व शांति परिषद पुरस्कार से जवाहरलाल नेहरू को सम्मानित किया गया। बेनो सर्वपल्ली गोपाल ने अपनी क्लासिक कृति जवाहरलाल नेहरू आ बायोग्राफी वॉल्यूम 3 में नेहरू जी के अंतिम दिनों का गहरा और मार्मिक चित्रण करते हुए लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू स्वास्थ्य की कमजोरी के बावजूद काम कर रहे थे। 26 मई का दिन नेहरू के पूरे जीवन का प्रतीक था। वे उस दिन भी पूरी कर्मठता, संवेदनशीलता और अथक समर्पण से कामकाज करते रहे। 27 मई सन 1964 की सुबह दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। जवाहरलाल नेहरू का संपूर्ण जीवन भारतीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों को समर्पित था। बहनों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार होगी आपसे मुलाकात कार्यक्रम के अगले सेगमेंट मुझे कुछ कहना है में।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: बहनों, आज डिजिटलाइजेशन हमारे जीवन के हर क्षेत्र में समा चुका है, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन जो हम और आप अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर बात करें यूपीआई की, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने अपने यूजर फ्रेंडली फीचर्स के साथ ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया को अधिक सुलभ और तेज बनाया है। इस भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली ने वैश्विक स्वीकृति प्राप्त की है। भारत के अलावा भी कई अन्य देशों ने इसे अपनाया है। बहनों, यूपीआई एक लोकप्रिय सिस्टम है जो यूजर को मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके बैंक अकाउंट के बीच तुरंत फंड ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। लेकिन बहनों, हर वो चीज या सुविधा जो हमारे जीवन को आसान बनाती है, कभी ना कभी या कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट्स भी जरूर होते ही हैं। ऐसा ही कुछ यूपीआई के विषय में भी कहा जा सकता है। जी हाँ बहनों, यूपीआई धोखाधड़ी एक ऐसी ऑनलाइन ठगी है जिसमें जालसाज चालाकी, लालच या डर दिखाकर लोगों को अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने या अपना यूपीआई पिन साझा करने के लिए बरगलाते हैं। यूपीआई धोखाधड़ी के कुछ सामान्य प्रकार हैं, जैसे कलेक्ट रिक्वेस्ट स्कैम, फर्जी क्यूआर कोड। जी हाँ, इसमें ठग किसी सामान की डिलीवरी या नौकरी देने का बहाना बनाकर क्यूआर कोड आपको भेजते हैं और इसे स्कैन कर पैसे देने का लालच देते हैं, और फिर स्कैन करने और पिन डाल देने से खाते से सभी पैसे निकल जाते हैं। बहनों, इसका एक प्रकार और है जिसमें जालसाज या ठग बैंक कर्मचारी या कस्टमर केयर अधिकारी बनकर आपको कॉल करते हैं, केवाईसी अपडेट या सिम कार्ड ब्लॉक होने का डर दिखाकर यूपीआई पिन या ओटीपी मांगते हैं। यूपीआई धोखाधड़ी के प्रकार में लुभावने मैसेज या ईमेल भेजकर यूजर को फर्जी वेबसाइट पर ले जाकर भी पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। यूपीआई धोखाधड़ी से बचने के लिए हमेशा सावधान व सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। अपना यूपीआई पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें। अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। बहनों, यूपीआई सुविधा का उपयोग जरूर करें, लेकिन सावधानी और समझदारी के साथ।

0: बहनों, अपने कार्यक्रम के सेगमेंट कुछ तुम कहो कुछ हम के तहत हमने की बातचीत डॉक्टर आदित्य से। बातचीत का विषय है हीट स्ट्रोक से जुड़ी जानकारी।
1: नमस्कार डॉक्टर आदित्य, आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
1: जैसा कि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भीषण गर्मी से बचाव हेतु बार बार अलर्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिसमें बढ़ते तापमान के कारण

0: हीट स्ट्रोक जन सामान्य के लिए जानलेवा खतरा बन चुका है। तो इसी क्रम में बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि हीट स्ट्रोक की स्थिति को कैसे समझा जाए और हीट स्ट्रोक किन किन कारणों से हो सकता है।
1: देखिए, जब गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा होने लगता है तब हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री या उसके पार चला जाता है और बॉडी की जो सेल्फ कूलिंग जो प्रोसेस होती है, जो कि स्वेटिंग होके जो बॉडी अपने आप को ठंडा रखती है, वो मैकेनिज्म फेल हो जाता है जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। तो मेनली जो बाहर के जो जैसे लेबर क्लास वर्कर्स हैं या फिर जो स्पोर्ट्स खेलते हैं धूप में, और जो भी मतलब लोग हैं जो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रह के काम करते हैं, वो लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। इसके जो मेन कॉजेज़ हैं हीट स्ट्रोक के, वो ये हैं कि आप जैसे प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है हाई टेम्परेचर से, स्पेशली सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में या फिर ह्यूमिड वेदर में, या फिर जब लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हॉट एनवायरनमेंट में, जैसे कि वही मैंने बताया आपको स्पोर्ट्स या फिर वर्क लेबर जो होती हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं जो कि हीट लॉस को बॉडी से प्रिवेंट करता है, या फिर कोई जो पुअरली वेंटिलेटेड या फिर क्लोज्ड स्पेस में रहते हैं जहाँ पे जैसे कि पार्किंग एरिया है, पार्क्ड कार है इसके अंडर, तो इन सब रीजंस की वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसमें क्या है, बॉडी का जो मैंने आज जैसे बताया, बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन का जो सिस्टम होता है जो कि पसीना निकाल के बॉडी करती है, वो फेल हो जाता है जिसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन जो है मतलब ओवरहीट हो जाता है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और हीट स्ट्रोक जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है।
0: आदित्य जी, हीट स्ट्रोक के मुख्य लक्षण क्या हैं?
1: हीट स्ट्रोक के जो लक्षण हैं वो मतलब तुरंत भी आ सकते हैं हीट एक्सपोजर या फिर सनलाइट एक्सपोजर के बाद, या फिर कुछ घंटों के बाद भी आते हैं। तो पीड़ित जो है पहले उसको बहुत प्यास लगेगी, वो थकान होगी उसको, और थोड़ा चक्कर सा भी आ सकता है, लाइट हेडेडनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, उल्टी हो सकती है, मसल पेन हो सकता है। कुछ ना क्लासिक सिम्टम्स होते हैं हीट स्ट्रोक के जिसमें बॉडी का तापमान 40 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाता है, जो पीड़ित है वो कंफ्यूज दिखता है, इरिटेबल दिखता है, थोड़ा डिसओरिएंटेड सा दिखता है, उसकी जो त्वचा है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और सांस लेना भी उसका थोड़ा तेज़ हो जाता है, और सीवियर हेडेक बताता है। और जो कुछ सीवियर सिम्टम्स हैं, जैसे जो सीवियर सिम्टम्स होते हैं इसके हीट स्ट्रोक के, उसमें पेशेंट को मिर्गी भी आ सकती है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है, और बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि आपका किडनी है, लीवर है, हार्ट है, उसका डिसफंक्शन भी हो सकता है।
0: हीट स्ट्रोक के रोकथाम व उपचार के तरीके भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जा सकता है जो कि पीक आवर्स होते हैं, जो जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि टिपिकली 11 से 4 के बीच का टाइम होता है, उसमें यूजुअली बाहर निकलना अवॉइड करें, घर के अंदर ही रहें, और जो लोग बाहर काम करते हैं वो शेड में रहें और कूलर पंखे चला के रखें, उनके सामने रहें, अपने आप को ठंडा, अपनी बॉडी को ठंडा रखने की कोशिश करनी चाहिए, और प्रॉपर क्लोथिंग करें जैसे कि जो लाइट कलर के कपड़े हैं उनको पहने, लूज फिट कपड़े पहने हैं जिसमें से हवा आर पार जा सके, और अम्ब्रेला जब बाहर जाएं तो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका हाइड्रेटेड रहने का, तो पानी अच्छे से रेगुलरली पिएं, प्यास भी ना लगे फिर भी रेगुलरली पिएं, और जब हैवी स्वेटिंग हो तो ORS के जो सॉल्यूशंस हैं उनको लेते रहें।
0: आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हीट स्ट्रोक से जुड़ी जो भी जानकारियां हमें प्रदान की हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अब करते हैं बात पते की। गर्मियों में अक्सर हम लोग भरपूर मात्रा में पानी पीने को ही हाइड्रेटेड रहना मान लेते हैं, जबकि शरीर की नमी बरकरार रखनी

के लिए पानी के अलावा जरूरी सॉल्ट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी चाहिए होते हैं। शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स को समझना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर के जरूरी मिनरल्स होते हैं। हालांकि केला, नारियल पानी, हरी सब्जियां, दही, खट्टे फल जैसे खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में रोजाना शामिल करके भी हम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट को सामान्य स्तर पर बनाए रख सकते हैं। बहनों, गर्मियों में हमारे घरों में दैनिक रूप से पिए जाने वाला नींबू पानी के अलावा आम पन्ना भी बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। सबसे खास बात यह है कि खट्टे मीठे स्वाद के साथ आम पन्ना हमें गर्मी की लू से बचाने में भी कारगर है। बहनों, घरेलू नुस्खों के अलावा ORS घोल को भी नियमित अंतराल पर पीने से शरीर को जरूरी मिनरल्स और विटामिन मिल जाते हैं। तो बहनों, हीट वेव्स के इन दिनों में अपने शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन रखें और अपना व अपनों का ध्यान रखें। और इसी के साथ दीजिए आज्ञा अपनी रेडियो सहेली मंगला शर्मा पाराशर को। नमस्कार।

अभी हमारी बहनें सुन रही थीं अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 1:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भूपिंदर सिंह और मिताली बी सिंह की गाई चंद गजलें।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली पी सिंह।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मिताली बी सिंह की गाई चंद गजलें। इसी के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: firm shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030. CBI arrests two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. U.S. Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in U.S.-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in eliminator match in Chandigarh this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
3: कमीशन की तरफ से दिल्ली में एसआईआर टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है बीएलओज की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया

0: कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष ग्रहण पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
2: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में

0: में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित तीन छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरल में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुत्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
2: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
3: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
4: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ

में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित जगदीश प्रसाद का राग पहाड़ी में गायन और विदुषी सविता देवी का राग खमाज में गायन। सबसे पहले आइए सुनते हैं पंडित जगदीश प्रसाद का गायन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित जगदीश प्रसाद का राग पहाड़ी में गायन, कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विदुषी सविता देवी का राग खमाज में गायन। इसी के साथ ही उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम में इस समय दोपहर के 2:45 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना को, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म का नाम था प्यार किए जा। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में फिल्म 12 o'clock का ये गीत। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं ओपी नैयर।

श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म 12 ओ'क्लॉक का ये गीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। अगला गीत सुनते हैं आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है बात एक रात की। मजरूर सुल्तानपुरी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है एस टी बर्मन ने।

श्रोताओं, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म बात एक रात की के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा। समीर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म तुमसा नहीं देखा का ये गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मेरे बाप पहले आपसे। गीत को लिखा है एक बार फिर समीर ने, संगीतबद्ध किया है विद्यासागर ने।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म मेरे यार की शादी का ये गीत। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया था जीत प्रीतम ने। कार्यक्रम गीत गुंजन का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा है। आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल तो पागल है का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण व साथियों की आवाजों में फिल्म दिल तो पागल है का ये गीत। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था उत्तम सिंह ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में फिल्म हम दिल दे चुके सनम का ये गीत।

कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम दिल दे चुके सनम का ये गीत। गीत को लिखा था महबूब ने, संगीतबद्ध किया था इस्माइल दरबार ने। इसी के साथ ही लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स एवं न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, इस समय दिन के 3 बज

कर 30 मिनट हो रहे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर इस समय संध्या के 5 बजने को हैं। हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सबसे पहले आप सुनिए दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये

0: योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक PDS योजना के दूसरे चरण के लिए 25,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि ये तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने आज केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। जापानी संसद ने आज विदेशी खतरों से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। IPL क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर 5:05 हो चुके हैं। अब वक्त है आज के कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण का।

हमारे सभी साथी 5:10 पर आनंद ले सकेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का। 5:30 पर आप सुन पाएंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, जिसमें होगी चर्चा स्माइल मिशन पर। साथ ही आप सुनिएगा वार्ता ज्ञान और भाषा के बीच सेतु है पुस्तकालय। वार्ताकार होंगी दीपा सिंह और जीने की कला में आप सुनेंगे अहम को त्यागे।

शाम 6 बजे हमारे किसान भाई सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम्य लोक, जिसमें चर्चा के विषय होंगे फार्मर रजिस्ट्री और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर रेवती लाल राजपूत से वार्ता, गर्मी में पशुओं की देखभाल, लोकगीतों के साथ लीजिएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। सांझ 6:30 पर कार्यक्रम मजदूर मंडल में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा आर्थिक विकास में श्रमिकों की भूमिका। साथ ही आप सुनिएगा डॉक्टर राकेश कुमार सिंह की कहानी मन प्रेम।

7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेगा वार्ताकार नीरज जैन से स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक वीर सावरकर पर वार्ता। शाम के 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे काउंसलर मंजू शर्मा से वैशाली शर्मा की बातचीत। भेंट वार्ता का विषय होगा सोशल मीडिया और AI का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव।

रात्रि 8 बजे आप सभी आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक और अनेक, और 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रात्रि के 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रैन 10 बजे आकाशवाणी आगरा से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित मलिका अर्जुन मंसूर से राग रामदासी मल्हार में ख्याल गायन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज की सायकालीन सभा के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, भक्ति बिना सुख नहीं और भक्ति बिना शांति नहीं, चाहे फिर ईश्वर हो या फिर देश। तो आइए सुरों और शब्दों की आराधना में डूबते हैं आकाशवाणी के भक्तिपरक फिल्म संगीत भक्तिपरक संगीत कार्यक्रम सुर संध्या में।

राम का नाम लेते ही हृदय में असीम शांति और शक्ति का संचार होता है। राम की भक्ति में डूबा मन हर दुख और भय को भूल जाता है। आप सुन रहे थे फिल्म स्वदेह से भक्ति रचना, आवाजी थी मधुश्री, विजय प्रकाश और आशुतोष ग्वारिकर की, शब्द रचना थी जावेद अख्तर की और संगीत था AR रहमान का।

फिल्म हला बोल से ये भक्ति रचना आपने सुनी, सुखविंदर सिंह की आवाज में, जिसको लिखा था समीर ने और संगीत भी सुखविंदर सिंह ने ही दिया था। आइए अब सुनते हैं अगली रचना, जो कि फिल्म केदारनाथ से, जिसको लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत और आवाज है अमित त्रिवेदी की।

शंकर केवल आराधना का प्रतीक नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो हमें सही राह दिखाती है। शंकर के चरणों की धूल में ही भक्ति का सच्चा आनंद छुपा है।

0: आप सुन रहे थे फिल्म लगान से रचना, आवाजें थी लता मंगेशकर, उदित नारायण एवं साथियों की। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार एआर रहमान।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: इसी के साथ ये कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम युववाणी का।

नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त स्वस्ति जैन। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे खूबसूरत काम क्या है? किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। मुझे लगता है अगर आप बिना किसी स्वार्थ के केवल सच्चे मन से किसी को खुशी पहुंचाते हैं तो वो हर पूजा हर पुण्य से बड़ा है। और खुद भी मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराते हुए तो सब लोग खूबसूरत लगते हैं। हेल्थ के लिए भी लाफ्टर इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, सो कीप स्माइलिंग पीपल। और स्माइल नाम से तो एक मिशन भी है जिसमें गवर्नमेंट भी पिछड़े वर्ग के लोगों के कष्ट कम करके उनको भी मुस्कुराहट देना चाहती है। स्माइल मिशन का पूरा नाम

सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज है. यह योजना भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा वर्ष 2022 में शुरू की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों, विशेषकर भिक्षावृत्ति में लगे लोगों तथा ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मानजनक जीवन और रोजगार के अवसर प्रदान करना है. इस मिशन के अंतर्गत लोगों को कौशल विकास, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आवास और रोजगार की सहायता दी जाती है. सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पहचान पत्र, छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता तथा सुरक्षित आश्रय गृह जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. स्माइल मिशन एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है भिक्षावृत्ति मुक्त शहर अभियान. इसके तहत जरूरतमंद लोगों को पुनर्वास केंद्रों में रखकर उन्हें नई शुरुआत का अवसर दिया जाता है. सरकार गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से इस योजना को प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही है. स्माइल मिशन समावेशी और संवेदनशील भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. और दोस्तों, स्माइल से ही याद आए वो प्रधानमंत्री जिनको बच्चे बहुत पसंद थे. अगर आप अभी भी नहीं समझे तो ये एक हिंट थी आज का सवाल की आज किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि है और उनकी किस पुस्तक को प्रसिद्धि मिली, उसका नाम क्या है. इस सवाल का जवाब हम जानेंगे कार्यक्रम के अंत में. तब तक आप सोचिए और साथ ही सुनिए ये प्यारा सा गीत.

चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडदुम चकडदुम चिकिचकचो।

0: की गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से इस अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं अपना मन पसंद कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त स्वस्ति जैन। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे किसी देश की जहां न्याय ना मिलता हो, जहां कोई कानून ना हो। आज अगर हम आजादी से खुलकर जी सकते हैं तो वो इसलिए कि हमारे देश में कानून है। किसी के कुछ भी एक्शंस के रेपरकशंस भी उसे झेलने पड़ेंगे। अगर कभी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम कह सकते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट। कितनी आयरोनिकल बात है ना दोस्तों, जो चीज हमें कुछ भी कर देने से बांधती है असल में उसी की वजह से हम सच में आजाद भी हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है देश के सबसे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती कैसे है? कॉलेजियम सिस्टम से। कॉलेजियम प्रणाली भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर न्यायाधीशों के चयन का निर्णय लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना है। कॉलेजियम प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों विशेषकर 3 जजेस केसेस के माध्यम से विकसित हुई। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। उच्च न्यायालयों में भी इसी प्रकार वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह नियुक्तियों से सिफारिश करता है। इस प्रणाली के तहत योग्य, अनुभवी और ईमानदार व्यक्तियों को न्यायाधीश बनने का प्रयास किया जाता है। कॉलेजियम द्वारा भेजी गई सिफारिशों को केंद्र सरकार स्वीकार या पुनर्विचार विचार के लिए वापस भेज सकती है, लेकिन दोबारा सिफारिश आने पर सरकार को उसे मानना पड़ता है। हालांकि कॉलेजियम प्रणाली की कई आलोचनाएं भी होती हैं। कुछ लोग इसे पारदर्शिता की कमी और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था मानते हैं। इसके बावजूद समर्थकों का कहना है कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। पर समझदार इंसान वही है जो पहले शांत मन से दोनों पहलुओं को समझे और फिर फैसला ले। डोंट बी सो क्विक टू जज। और ये समझदारी आती है एजुकेशन से, किताबों से। किसी ने बहुत खूब कहा है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और पुस्तकालय से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। इसीलिए तो नालंदा विश्वविद्यालय को खोने के नुकसान से हम आज तक उभर नहीं पाए। पर खैर, जो हो गया सो हो गया।

0: बदल तो नहीं सकते, पर आज तो हम अपने पुस्तकालयों को की कद्र कर सकते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी को छोड़कर किताबें उठा सकते हैं। चलिए इसी विषय पर जानते हैं वार्ताकार दीपा सिंह के विचार, जो बात करेंगी ज्ञान और भाषा के बीच सेतु है पुस्तकालय। चलिए सुनते हैं।
1: मैं भर्तृहरि के नीति शतकम के एक श्लोक से शुरू करना चाहूंगी। न चोरहार्यम, न राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम, न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात ज्ञान ऐसा धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना कोई सत्ता छीन सकती है, ना इसे भाइयों में बांटा जा सकता है, और यह भार भी नहीं बनता। खर्च करने पर यह रोज बढ़ता है। इसीलिए विद्या सभी धनों में प्रधान अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। आज जब हम युवाओं की जिंदगी देखते हैं तो लगता है कि हमारे पास सब बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, कम्युनिकेशन बदल रहा है, पढ़ने का तरीका बदल रहा है, यहाँ तक कि हमारी सोच और हमारी भाषा भी बदल रही है। हम घंटों मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं, एक स्वाइप में सैकड़ों वीडियोस देख लेते हैं, हजारों जानकारी हमारे सामने होती है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि हम जानकारी के बीच रहकर भी गहराई से जुड़ नहीं पा रहे। कभी कभी हम नोटिस करते हैं कि बातें बहुत हैं लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन अंडरस्टैंडिंग कम रह जाती है, और शायद यही वह जगह है जहां किताबें और पुस्तकालय हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि पुस्तकालय केवल किताबों का कमरा नहीं होता, वह एक ऐसी जगह होती है जहां भाषा सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और ज्ञान सिर्फ याद नहीं किया जाता, समझा जाता है। जब कोई युवा पहली बार किसी कविता को पढ़ता है, किसी लेखक की कहानी में खुद को खोजता है, किसी जीवनी से प्रेरित होता है, या किसी इतिहास की किताब में अपने देश की यात्रा को समझता है, तब वह सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता, वह अपनी भाषा, अपनी सोच और अपने व्यक्तित्व को विकसित कर रहा होता है। यहीं से धीरे धीरे यह बात समझ में आती है कि पुस्तकालय वास्तव में ज्ञान और भाषा के बीच एक सेतु है। दोस्तों, पुस्तकालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पुस्तक धन आलय, यानी वह स्थान जहां पुस्तकों और ज्ञान का निवास हो। लेकिन अगर आज के समय में इसकी सरल भाषा में बात करें तो पुस्तकालय सिर्फ किताबों का कमरा नहीं है, बल्कि यह विचारों, भाषाओं, संस्कृतियों और पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक जीवंत माध्यम है। हम सभी जानते हैं कि भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं होती, बल्कि हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान का आधार होती है। और भाषा को सबसे अधिक समृद्ध कौन करता है? किताबें। जब एक बच्चा कहानी की किताब पढ़ता है तो उसकी कल्पना बढ़ती है, जब एक युवा साहित्य पढ़ता है तो उसकी भाषा बेहतर होती है, जब कोई शोधकर्ता पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करता है तो ज्ञान आगे बढ़ता है। यानी पुस्तकालय वह जगह है जहां ज्ञान भाषा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचता है। पहले के समय में विद्यार्थी गुरुकुलों में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे, बाद में नालंदा और तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालय बने, जिनके विशाल पुस्तकालय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। वहां केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यह हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि हमने ज्ञान को हमेशा बांटने और आगे बढ़ाने में विश्वास किया। साथियों, किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वे इंसान को सोचने का तरीका देती हैं। एक अच्छी पुस्तक कई बार वह बात समझा देती है जो शायद कोई व्यक्ति भी ना समझा पाए। यही कारण है कि पुस्तकालय समाज के बौद्धिक विकास का केंद्र माने जाते हैं। प्रसिद्ध रोमन दार्शनिक सिसेरो ने कहा था, पुस्तकों के बिना एक कमरा आत्मा के बिना शरीर के समान है। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस समाज में पढ़ने की संस्कृति खत्म होने लगती है, वहां सोचने और समझने की क्षमता भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। आज के युवाओं की बात करें तो हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर सोशल मीडिया और रात तक स्क्रीन, यही हमारी दिनचर्या बनती जा रही है। जानकारी हमारे पास बहुत है लेकिन गहराई से पढ़ने और समझने की आदत कम होती जा रही है। शॉर्ट वीडियोस और इंस्टेंट कंटेंट ने हमारा अटेंशन स्पैन कम कर दिया है। हम जल्दी जल्दी सब कुछ देखना चाहते हैं लेकिन ठहर कर पढ़ना नहीं चाहते, जबकि किताबें हमें धैर्य सिखाती हैं, वे हमें शब्दों की ताकत समझाती हैं और हमारी भाषा को मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती,

0: भाषा हमारी सोच को आकार देती है और जितना अधिक हम पढ़ते हैं उतनी ही हमारी भाषा प्रभावशाली होती जाती है। पुस्तकालय इसीलिए ज्ञान और भाषा के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हिंदी अच्छी करनी है, किसी को अंग्रेजी सीखनी है, किसी को संस्कृत साहित्य समझना है या किसी को विज्ञान और तकनीक का ज्ञान बढ़ाना है। पुस्तकालय हर व्यक्ति को उसकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार सीखने का अवसर देता है। यहाँ हर भाषा की पुस्तकें मिलती हैं। साहित्य, विज्ञान, इतिहास, दर्शन, कविता, जीवनी, शोध, हर विषय का ज्ञान पुस्तकालय में मौजूद होता है। यानी पुस्तकालय केवल किताबें नहीं देता बल्कि भाषा और ज्ञान दोनों को विकसित करने का अवसर देता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है और एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। मुझे लगता है कि ये बात आज के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम कनेक्टेड तो बहुत हैं, लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं अकेले भी होते जा रहे हैं। ऐसे समय में किताबें हमें खुद से जोड़ती हैं, पढ़ना हमें शांत करता है, सोचने की क्षमता बढ़ाता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। आज के आधुनिक पुस्तकालय पहले जैसे शांत कमरों की तरह नहीं रह गए हैं। अब पुस्तकालय डिजिटल हो चुके हैं, ई लाइब्रेरी, और डिजिटल लाइब्रेरी ने ज्ञान को और अधिक आसान बना दिया है। आज छात्र घर बैठे मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से ई बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च पेपर, ऑडियो बुक्स और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल तक पहुंच सकते हैं। गुलजार साहब की नज्म किताबें झांकती हैं कविता में डिजिटल युग और किताबों से दूर होती जा रही नई पीढ़ी के दर्द और हसरतों को बहुत खूबसूरती से बयां किया है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं महीनों, अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं ये किताबें, बड़ी बेचैन रहती हैं ये किताबें। यह डिजिटल परिवर्तन युवाओं के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि अब ज्ञान किसी एक शहर या संस्था तक सीमित नहीं रह गया। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया का ज्ञान हर युवा तक पहुंच रहा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रिंटेड बुक्स का महत्व खत्म हो गया है। स्क्रीन पर पढ़ना और किताबों को हाथ में लेकर पढ़ना दोनों अनुभव अलग हैं। किताबों के साथ बिताया गया समय हमें गहराई से सोचने की आदत देता है। दोस्तों, पुस्तकालय केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं है, यह व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र है। यहाँ से हमें भाषा मिलती है, विचार मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं और समाज को समझने की दृष्टि मिलती है। आज जरूरत इस बात की है कि युवा फिर से पुस्तकालयों से जुड़ें, क्योंकि जो युवा पढ़ता है वही आगे बढ़ता है और जो भाषा को समझता है वही अपने विचारों को सही तरीके से समाज तक पहुंचा सकता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार एक पुल दो किनारों को जोड़ता है, उसी प्रकार पुस्तकालय ज्ञान और भाषा के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करता है। यह हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर, सीमित सोच से व्यापक विचारों की ओर, केवल सूचना से वास्तविक समझ की ओर ले जाता है। इसीलिए हमें पुस्तकालयों से जुड़ना चाहिए, पढ़ने की आदत विकसित करनी चाहिए और ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहिए, क्योंकि सच तो यह है किताबें केवल शब्द नहीं होती, वे जीवन को दिशा देने वाली रोशनी होती हैं। अंत में गुलजार साहब की चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है, यानी कि उन्हें समझना पड़ता है।
1: दोस्तों, आपने ये सुना है, इनसिक्योरिटीज आर लाउड, कॉन्फिडेंस इज साइलेंट, थोथा चना बाजे घना, जिनमें खुद कोई बात नहीं होती केवल वही दूसरों के बारे में गलत बात करते हैं। इवन सोक्रेटिस, वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर, सेड ऑल आई नो इज नथिंग। तो हम किस फॉल्स ईगो में जीते हैं? आगे बढ़ने की सबसे पहली शर्त ही है ये मानना कि मुझे सब नहीं आता लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। अहम को त्यागिए, अहम अर्थात घमंड, खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानना ग्रोथ के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है। हमारे भारतीय संस्कार में भी हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। कहा भी गया है कि फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है। अहंकार मनुष्य को अकेला बना देता है, जबकि विनम्रता उसे सबका प्रिय बनाती है। इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां अहंकार के कारण बड़े बड़े राजा और शक्तिशाली व्यक्तियों का पतन हुआ। रावण का अहंकार ही उसे विनाश का कारण बना। दूसरी ओर महात्मा गांधी ने सादगी और विनम्रता के बल पर पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त किया। कबीर दास जी ने भी कहा है, उनका एक दोहा है, जो उग्या सो अंतवे, फूल्या सो कुमलाही।

चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। जो उगा है वो खत्म भी होगा, जो फूल खिला है वो कुमलाएगा भी, जो इमारत चिनी गई है वो एक दिन ढहेगी भी, और जो आया है वो जाएगा भी। तो अहंकार किस बात का, बस खुशियां बांटिए, जिए जिए और जीने दें, और प्रेम के साथ मिलजुल कर रहें। और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

और बस दोस्तों, अब वक्त है आज के सवाल का उत्तर जानने का। आज भारत के किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि है और उनकी कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है, आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। उनका निधन 27 मई 1964 को हुआ था। बच्चे उनको चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे, इसीलिए तो उनके जन्मदिन पर 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और बस दोस्तों, चलते चलते मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिए और जीने दें, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये धरती जितनी अपनी है उतनी ही बाकी सब जीव जंतुओं की भी है। और ये दुआई देना कि हम कुछ लोग जैसे उनकी परवरिश हुई है वो वैसे ही जी सकते हैं, ये सही नहीं है। अगर आप अडल्ट हो गए हैं, अगर आप बड़े हो गए हैं, अगर आपका विवेक जागरूक है, तो आप कुछ भी अनलर्न कर सकते हैं। आप अपने फैसले खुद लीजिए, आप ये देखिए कि क्या सही है क्या गलत, और फिर उसको बाद उसका डिसीजन लीजिए। केवल ब्लाइंडली कुछ फॉलो करना, ब्लाइंडली वो बात मानना जो हम बचपन से सीखे हैं, वो सही नहीं है। तो अपने फैसले खुद लीजिए, सही और गलत में खुद आंखें खोल कर चुनिए। और बस दोस्तों, घड़ी की सुइयां हमें ये इशारा कर रही हैं कि वक्त है आपसे विदा लेने का। आप सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त स्वस्ति जैन। फिर मिलेंगे।

स्वस्ति जैन से आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बज चुके हैं। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम ग्रामीण लोक का।

किसान भाई और बहनों, राम राम। कार्यक्रम ग्रामीणलोक में आप सभी का बहुत स्वागत। साथियों, आज इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त अनिरुद्ध कुमार। किसान साथियों, गर्मी अपने चरम पर है, तपन के मारे सबके हाल बेहाल हैं, आसमान से आग बरस रही है, तापमान 45 डिग्री है। तो साथियों, आप सब अपनी सेहत का ध्यान रखिए, दोपहर में बाहर जाने से बचिए, पानी पीते रहिए, खेती किसानी के कामों को सुबह शाम में निपटा लें। और हाँ साथियों, एक बात और, आप अपने साथ अपने पशुओं का भी ध्यान रखें, उन्हें भी गर्मी से बचाने के पूरे इंतजाम करें। और हो सके तो एक काम और करें, अपने घर के

बाहर अपने नोहरे में खेतों पर खड़े पेड़ों पर पक्षियों के लिए किसी बर्तन में पानी और दाने की व्यवस्था जरूर करें। दोस्तों ये बड़ा ही पुण्य कर्म है, इसे आप लोग जरूर करें। किसान साथियों को पता है कि आज के समय में हमारी खेती भी धीरे धीरे डिजिटल होती जा रही है। हमारी सरकार चाहती है कि हमारे अन्नदाता तक सभी योजनाएं सीधी और बिना किसी दिक्कत के पहुंचे। दोस्तों पहले हमें सही जानकारी के लिए अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था, कहीं जमीन का रिकॉर्ड था, कहीं बैंक की जानकारी, तो कहीं योजना का डेटा। इसी कारण कई बार जो हमारे पात्र किसान होते थे उनको सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। साथियों इसी समस्या को दूर करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री शुरू की गई। ये एक तरह से किसानों की डिजिटल पहचान यानी डिजिटल आईडी है, जिसमें किसान की जमीन, उनकी फसल और व्यक्तिगत जानकारी एक जगह दर्ज होती है। कहीं आपको जगह जगह नहीं जाना होगा। इससे सरकार को यह पता रहता है कि कौन किसान किस योजना के लिए पात्र है। साथ ही हमारे प्रदेश सरकार ने इसे बहुत ही गंभीरता से लागू करना शुरू किया है। हल्का लेखपाल गांव-गांव जाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं। भाई बहनों अब इसे हर किसान के लिए जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बिना फार्मर रजिस्ट्री के सरकारी योजनाओं का फायदा मिलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। साथियों चलिए जानते हैं कि किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री क्यों जरूरी है, इसकी प्रक्रिया क्या है। किसान भाइयों आपको बता दें कि फार्मर रजिस्ट्री एक यूनिक किसान पहचान संख्या होती है। इसमें किसान की जमीन की पूरी जानकारी, आधार और मोबाइल नंबर, बैंक और योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी इसमें शामिल होती है। मित्रों ये किसान की डिजिटल फाइल है जो हमेशा ही उसके काम आएगी। भाई बहनों आइए अब बात करते हैं कि किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री भाई जरूरी क्यों है, सरकार इस बात पर इतना जोर क्यों दे रही है, तो आइए समझते हैं। साथियों फार्मर रजिस्ट्री होने से किसानों को योजनाओं का जो पैसा है सीधे उनके खाते में मिलता है, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, कृषि सब्सिडी, इसमें बीच में शामिल लोगों का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। किसानों को आसानी से केसीसी मिलेगा। पहले किसानों को लोन लेने के लिए बहुत कागजी काम करना पड़ता था, बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे, कभी तहसील के चक्कर लगाने पड़ते, अब ये सब खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही बैंक आपकी फार्मर आईडी डालेगी आपकी पूरी जानकारी बैंक के सामने आ जाएगी, जिससे आपका केसीसी जल्दी बनेगा और कम ब्याज पर लोन मिलने में आपको आसानी होगी। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री से किसान एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच सकेंगे। ऑनलाइन मंडी जैसे कि ईनाम से जुड़ सकते हैं, इससे उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिलेगा। मित्रों फार्मर रजिस्ट्री के बाद हमें अच्छी क्वालिटी के बीज मिलते हैं, खाद और कृषि मशीनों पर सब्सिडी मिलती है, तो हमारी खेती की लागत कम हो जाती है। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री में किसान की सारी जानकारी सुरक्षित रहती है, गलत नाम का रिकॉर्ड आसानी से सुधारे जा सकते हैं और भविष्य में किसी भी धोखाधड़ी होने से आराम से बचा जा सकता है। दोस्तों अगर हम अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं या अभी तक हमने अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो सरकार ने साफ कहा है कि बिना फार्मर रजिस्ट्री के आपको सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलने वाला है, आपकी सम्मान निधि की किस्त रुक सकती है, खाद और बीज मिलने में आपको दिक्कत होगी। किसान साथी फार्मर रजिस्ट्री कराने के पूरे प्रोसेस को जाने तो फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए किसान के पास उसका आधार कार्ड, जमीन की खतौनी और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि अगर आपके गांव में कैंप लगा है तो आप वहां पर करा सकते हैं, जहां ये प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क होगी और अधिकारी खुद आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा किसान जन सेवा केंद्र CSC पर जाकर भी रजिस्ट्री आप करवा सकते हैं। सरकार इस प्रक्रिया को पूरी तरह से आने वाले दिनों में ऑनलाइन करने वाली है, जिससे किसान घर बैठे ही पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो किसान साथियों अगर आपने अभी तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है तो जल्दी से जरूर करा लें। किसान साथियों फार्मर रजिस्ट्री की जानकारी के बाद आपको एक और बात याद दिला दें कि आज के दिन देश ने, इस भारत भूमि ने एक ऐसे नायक को, एक ऐसे सपूत को खोया था जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देश को स्वतंत्र कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जी साथियों हम बात कर रहे हैं अपने प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। साथियों आज ही के दिन यानी कि 27 मई 1964 को वो हमें छोड़कर चले गए। मित्रों आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें हम

0: किसान साथियों, भीषण गर्मी से इन दिनों सब लोग हाल बेहाल हैं। पारा 45 के पास है। वह हमें अपनी सेहत का ध्यान तो रखना ही है और साथ ही साथ अपने पशुधन को भी गर्मी से बचाने के पूरे इंतजाम हमें करने होंगे। मित्रों, गर्मी में हम अपने पशुओं की उचित देखभाल कैसे करें ताकि वो गर्मी से बचे रहें, इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रेवतीलाल राजपूत।
1: प्रिय पशुपालक भाइयों, दूध प्राप्त करने के लिए आप अधिकतर गाय भैंस पालते हैं। आजकल गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, इसलिए अभी से जब तक बरसात के महीने आएं तब तक पशुओं की विशेष देखभाल रखना बहुत जरूरी है। यदि इन दिनों अच्छी देखभाल नहीं रखी गई तो गाय भैंस से दूध प्राप्त तो भरपूर मिलेगा ही नहीं और पशु का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो जाएगा, जिसके कारण आगे के ब्यांत में उत्पादन अच्छा नहीं मिल सकेगा। गर्मियों में पशुधन की देखभाल के मुख्य पहलू हैं पशु की प्रजनन संबंधी देखभाल, खिलाई पिलाई संबंधी देखभाल और रोग बीमारी संबंधी देखभाल। गर्मियों में गायें तो गाभिन होने के लक्षण दिखाती हैं, लेकिन भैंस गर्मी में आने के लक्षण प्रकट नहीं करती हैं। इसलिए पशुपालक भाई अपनी गायों पर नित्य निगरानी रखें तथा गर्मी में आने पर फ्रोजन सीमन से कृत्रिम गर्भाधान कराएं। ध्यान रखा जाए कि पशु को गर्मी में आने के लगभग 16 से 18 घंटे बाद गाभिन कराएं, क्योंकि इस अवधि में गर्भ ठहरने की अधिक संभावना रहती है। गर्मियों में भैंस के गर्मी में न आने का मुख्य कारण है कि ये गर्म मौसम में बहुत परेशान रहती हैं। भैंस मुख्य तौर पर जाड़े के मौसम में गर्मी के लक्षण प्रकट करती हैं, अर्थात इन्हें ठंडी जलवायु की जरूरत होती है। यदि इनको गर्मी के मौसम में ठंडा वातावरण देकर अच्छी खिलाई पिलाई की जाए तो गाभिन होने के लक्षण प्रकट कर सकती हैं तथा गर्भधारण भी कर लेती हैं। इसलिए गर्मी के दिनों में पशुओं के लिए सुबह दोपहर शाम पीने के ताज़ा व साफ पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा रहे कि उनके बांधने के स्थान पर ही पीने के पानी की हर समय व्यवस्था रहे। इसके अलावा पशुओं को सुबह शाम ताज़ा पानी से नहलाना भी चाहिए। नहलाते समय ध्यान रखें कि यदि पशु धूप में जंगल से चरकर आए तो उसको थोड़ी देर बाद छाया में बांधकर नहलाएं। अच्छा रहे कि गर्मी के दिनों में पशु को सुबह शाम ही चरने को भेजें, दोपहर के समय कदाप चरने को न भेजें। चराते समय ध्यान रखें कि पशु छोटे छोटे पानी के गड्ढों या पोखर में लोरे नहीं, पशु को नहर या ट्यूबवेल आदि से भरे पानी में लोराना अच्छा रहता है, लेकिन दोपहर के समय तेज धूप में नहीं। यह भी ध्यान रखें कि यदि पशु 7 महीने से अधिक समय का गाभिन है तो उसे पानी में लोरने नहीं दें, क्योंकि इस अवस्था में पानी में लोर कर यदि पशु हिलोरें लेता है

है तो उसके पेट में बच्चा उलझने की बहुत संभावना रहती है। गर्मी के दिनों में लू झाँक से बचाने के लिए पशु को छप्पर अर्थात छायादार बाड़े में बांधना चाहिए, जहाँ पर गर्म हवाएं सीधी न पहुँचती हों। गर्म हवाओं से बचाव के लिए बाड़े में घास फूस या टाट की टटिया लगाई जा सकती है। टटिया पर दिन में एक दो बार पानी का छिड़काव लाभदायक रहता है। यदि संभव हो तो पशुशाला के आसपास छायादार वृक्ष नीम सहसुत के लगा देने चाहिए। गर्मी के दिनों में सामान्य तौर पर पशुओं के लिए हरे चारे की कमी रहती है, जिसके कारण विशेष रूप से भैंसों का दूध उत्पादन गिर जाता है, क्योंकि इस समय भैंस दुग्धावस्था के अंतिम दौर में रहती हैं और बरसीम जई का चारा भी समाप्त हो जाता है। यदि इन दिनों बहुकट ज्वार लोबिया बाजरा का चारा उपलब्ध न हो तो पशु

0: है क्योंकि इस समय भैंस दुग्धावस्था के अंतिम दौर में रहती हैं और बरसीम जई का चारा भी समाप्त हो जाता है। यदि इन दिनों बहुकट ज्वार लोबिया बाजरा का चारा उपलब्ध न हो तो पशु को प्रतिदिन कम से कम 2-3 किलोग्राम पेड़ों की पत्तियां, नीम देसी बबूल सहसुद आदि की अवश्य खिलानी चाहिए। अच्छा दूध उत्पादन हेतु प्रति 2.5-3 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम रातव मिश्रण देना चाहिए। इसके अलावा 1-2 किलोग्राम रातव मिश्रण जीवन रक्षा हेतु देना भी नितांत आवश्यक है। गाभिन पशु को गर्भ रक्षा हेतु 2 से 2.5 किलोग्राम रातव देना चाहिए। रातव मिश्रण में 2 भाग जौ या दले हुए गेहूं, 1 भाग सरसों की खली, आधा भाग भूसी या चोकर, आधा भाग दालों की चूनी मिलाकर देना चाहिए। रातव को कम से कम 2-3 घंटे पानी में भिगो देना चाहिए। गेहूं जौ के भूसे को भी पानी से अच्छी तरह धोकर खिलाना चाहिए। इसके अलावा पशु को प्रतिदिन 50-60 ग्राम खनिज लवण मिश्रण तथा 50-60 ग्राम साधारण नमक रातव मिश्रण में मिलाकर खिलाना चाहिए। जो पशुपालक अभी तक हरा चारा नहीं बो सके हैं तथा जिनके पास सिंचाई का मीठा पानी उपलब्ध है वे बहुकट ज्वार मक्का लोबिया बो सकते हैं। इन फसलों से लगभग 1 महीने बाद चारा उपलब्ध हो जाएगा। यदि गर्मी के दिनों में भी पशु को 40 से 45 किलोग्राम हरा चारा प्रतिदिन दें जिसमें लोबिया भी शामिल हो तो पशु की सेहत भी ठीक रहती है और दूध का उत्पादन भी भरपूर मिलता है। इसके अलावा रातव मिश्रण की भी बचत हो जाती है अर्थात दूध सस्ता मिलता है। कहने का मतलब है कि यदि कोई पशु 6 किलोग्राम दूध प्रतिदिन दे रहा है तो उसे भरपूर दाल का हरा चारा दिया जाए तो बिल्कुल दाना रातव देने की आवश्यकता नहीं है। यदि पशुपालक सरसों आलू के खाली खेतों में हरा चारा बहुकट ज्वार लोबिया मक्का फरवरी मार्च के महीने में बो देते हैं तो उन्हें गर्मी भर हरा चारा बहुतायत से मिलता रहता है जिससे पशु को दूध उत्पादन भी भरपूर मिलता है। अर्थात गर्मी के दिनों में दूध उत्पादन कम नहीं होता जिससे दूध की कीमत भी अच्छी मिलती है। लेकिन ज्वार का चारा खिलाते समय ध्यान रखा जाए कि चारे की फसल 1 मीटर बढ़ी हुई हो तथा उसमें 4-5 सिंचाई हो जानी चाहिए जिससे उसमें SCN विषाक्तता जहरीलापन न हो सके क्योंकि इस जहर से पशु के मरने की पूर्ण संभावना रहती है। गर्मियों में आमतौर पर पशुओं को कोई रोग बीमारी नहीं होती है। यदि पशु को फरवरी मार्च में खुरपका मुंहपका का टीका लगवा दिया जाए तो यह बीमारी नहीं होती। यदि टीका नहीं लगा है तो बीमारी हो सकती है। अतः ध्यान रहे कि पशुओं को तालाबों में पानी नहीं पिलाना चाहिए। यदि बीमारी हो जाए तो पशु चिकित्सक से इलाज अवश्य कराएं क्योंकि इस बीमारी में पशु की सेहत बिल्कुल खराब हो जाती है। दूध उत्पादन गिर जाता है। गाभिन पशु बच्चा भी फेंक देता है। गर्मी में पशुओं को अधिकतर जुआ कलीली हो जाते हैं जिससे छोटे लवारे खुजली से पीड़ित होकर मर जाते हैं। बड़े पशुओं की सेहत तथा दूध उत्पादन गिर जाता है। इनसे बचाव और इलाज के लिए बूटेक्स दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर पशु के शरीर पर सूती कपड़े से लगा देनी चाहिए। दवा लगे पशु को अलग अलग बांधें ताकि वे दवा चाट न सकें तथा 1-2 घंटे बाद नहला दें। इस प्रकार दवा हर 2-3 दिन पर 3-4 बार लगाएं तो जुआ व कलीली खत्म हो जाएंगे। पशु को पेट के कीड़ों की दवा भी देनी चाहिए। गाभिन पशु को 5 माह के बाद फेनबेंडाजोल 3 ग्राम की बोलस केवल 1 बार दें जिससे उसके पेट के कीड़े मर जाएंगे। साथ ही पेट में पल रहे बच्चे के पेट में भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। बिना गाभिन पशु को एल्बेंडाजोल 3 ग्राम की बोलस पेट कीड़ों के लिए खिलाएं। जून के अंतिम सप्ताह में पशु को गलघोंटू का घुर्रक HS का टीका अवश्य लगवाएं ताकि पशु इस जानलेवा बीमारी से काल कवलित न हो सके।
1: किसान भाई और बहनों, अभी हमने डॉक्टर रेवतीलाल राजपूत से जाना गर्मी में पशुओं की देखभाल कैसे करनी है। साथ ही डॉक्टर राजपूत ने जो जो बातें बताई हैं उन्हें ध्यान रखिए और अपने पशुधन को गर्मी से बचाते रहिए। किसान साथियों अपने पशुधन की

0: सेहत के बाद चलिए जान लेते हैं खरीफ में मुख्य फसल बाजरा की उन्नत किस्मों के बारे में। साथियों, अच्छी पैदावार, चारे और रोगों से बचाव के लिए बाजरे की कई उन्नत और हाइब्रिड किस्में हैं, जिनमें RHB 234, ये किस्म 80 से 81 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ब्लास्ट रोग के प्रति इसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। HHP 229, कावेरी 62-88, नंदी 67, सुपर 36, ये ऐसी किस्में हैं जो बाजरा के लिए बहुत ही उन्नत किस्में मानी जाती हैं और किसान भाई इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। किसान भाई, बाजरा की उन्नत किस्मों को जानने के बाद आइए अब जान लेते हैं मौसम के हाल। बात करते हैं आज के तापमान की, तो आज का न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस रहा। कल के तापमान की बात करें तो कल का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और दोस्तों, अब हम रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: साथ जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में गर्मी कैसी होती है आप लोग रोजाना देख ही रहे हैं, और जेठ के महीने में गर्मी से परेशान होकर ये क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण लोक, प्रस्तोता थे अनिरुद्ध कुमार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

कार्यक्रम मजदूर मंडल के सभी श्रमिक भाई बहनों को कल्पना सरकार का नमस्कार। और श्रमिक भाई बहनों, कैसे हैं आप सब? गर्मी से बुरा हाल है ना, तो आप अपना ध्यान रख रहे हैं ना। देखिए, हल्का भोजन कीजिए, घर का बना भोजन ही कीजिएगा, और 11 से 4 बजे तक तो बाहर ना जाएं, ये कोशिश कीजिए। अजी जा रहे हैं तो भाई गामछा साफा जो है उसे बांध कर जाइए, छाता लेके जाइए, और पानी भी पीते रहिए। शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो पानी है ना, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। फिर तरबूज, खरबूज, खीरा, लीची जैसे रसीले फल, मौसमी फल को भी अपने भोजन में शामिल कीजिए, क्योंकि ये ऊर्जा देते हैं, फिर ठंडक भी देते हैं। फिर साथियों, जो कपड़े हैं, जो वस्त्र आप पहनते हैं, उसे हल्के रंग का ही पहने, ढीले ढाले सूती वस्त्र पहने। और हाँ, एक और बात साथियों, कुछ लोग ना बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत व्यायाम करते हैं, तो ऐसे इन दिनों ना करें, क्योंकि हीट स्ट्रोक होने का डर रहता है। साथियों, हम सोचते हैं कि आज गर्मी से बचने के लिए सब कुछ सुविधाएं हैं हमारे पास। घर में रहते हैं, पंखे के नीचे रहते हैं, कूलर भी है,

एसी में भी राहत पाते हैं, फ्रिज भी है, क्योंकि आज हम लोगों का जो जीवन है, जीवन स्तर है, वो सन 1947 से कई गुना अच्छा है। हर तरह की सुविधाएं हैं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। लेकिन उस वक्त साथियों, देश के विकास को पटरी में लाना आसान नहीं था। एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी और उस भूमिका को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। अब आप ही सोचिए ना, जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए थे, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। केवल हम लोगों का शोषण नहीं किया था, यहाँ के संसाधनों का भी शोषण किया था। और साक्षरता दर 15% से भी कम थी। ऐसे में साथियों, लोकतंत्र देश की स्थापना करना आसान नहीं था, क्योंकि देखिए, लोकतंत्र के लिए वोट डालना जरूरी है, वोट डालने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। तो और उन दिनों तो महिलाओं को तो क्या, उनका नाम से तो कोई जानता ही नहीं था। कोई कहता था मोहन की अम्मा, रामू की दादी, श्याम की दीदी, इसी नाम से तो पुकारते थे, है ना। लेकिन इस असंभव को संभव बनाया गया। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। साथ ही उस दौर की बात हो रही है, 1947 की। साथियों, उस वक्त दूसरे देशों में, अमेरिका में भी अश्वेत लोगों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। 1960 में दिया गया था यह अधिकार साथियों। और उस वक्त विदेशी जो थे ना, अन्य देश के लोग कहते थे कि भारत में अशिक्षित लोग हैं, लोकतंत्र कहाँ कायम हो पाएगा। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा देश। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना, उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में ना देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो भूमिका रही, वो अत्यंत ऐतिहासिक और निर्णायक रही। फिर बहुदलीय प्रणाली का भी उन्होंने समर्थन किया। वो चाहते तो एक पार्टी, एक दल रख सकते थे, नहीं, उन्होंने सोचा कि एक मजबूत लोकतंत्र देश के लिए बहुदलीय प्रणाली का होना जरूरी है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रेस की स्वतंत्रता देने से हमारा देश आज इतना आगे बढ़ पाया। उनकी प्रगतिशील सोच के कारण ही साथियों, पंचवर्षीय योजनाएं जो थी, देश के विकास में अहम भूमिका निभा पाई। इस योजना के माध्यम से कृषि और बुनियादी उद्योग जैसे भिलाई, राउरकेला स्टील प्लांट का विकास किया गया। लोगों को रोजगार मिला, उनका जीवन स्तर सुधरा। और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा तो देश आगे बढ़ेगा ना साथियों। फिर साथियों, उन्हें ना वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का जनक भी माना जाता है। क्यों? देखिए, आज एम्स विश्व स्तर का संस्था है ना, वो जानते थे कि आने वाले दिनों में इसका महत्व क्या है। उसकी स्थापना उनके कार्यकाल में हुई। आईआईटी, आईआईएम, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसरो जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे विश्व स्तरीय संस्था की स्थापना उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। फिर कृषि और बिजली की जरूरत भी तो थी ना साथियों, क्योंकि देखिए, देश को विकास करना है तो बिजली की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने भागा नांगल, दामोदर घाटी जैसी विशाल घाटी परियोजनाएं है ना, उसकी शुरुआत की। वे इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। फिर गुट निरपेक्ष नीति ने तो साथियों, भारत की स्वतंत्र विदेशी नीति को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। फिर सिंधु जल सिंधि ने उनके उदारवादी सोच का परिचय भी दिया। जी हाँ, आप तो जानते हैं ना, झेलम, चिनाब, सिंधु जो नदी है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है? भारत। लेकिन 80% पानी का इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान को दिया। साथियों, उनके इस सोच ने, दूरगामी दृष्टिकोणों ने, उनके फैसलों ने भारत के वर्तमान स्वरूप को आकार दिया है। और बच्चे उन्हें प्यार से क्या कहते थे? चाचा नेहरू, क्योंकि बच्चे उन्हें बहुत प्रिय थे। और उनके जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आप जानते भी हैं कि उनका जन्मदिन कब आता है? 14 नवंबर को। तो आज का प्रश्न ये है कि उनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? आप सोचिए। और लौट कर आते हैं हमारे आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। पता है साथी, उनका व्यक्तित्व महान था। महान व्यक्तित्व शब्दों से महान नहीं बनता, बल्कि महान कार्यों से, अच्छे विचारों से बनता है। उनके विचार, उनके कर्म हमेशा समाज को एक नई दिशा देते हैं। वो रहे ना रहे, लेकिन उनकी सोच, उनका काम, उनका प्रयास जीवन रूपी बगिया को महकाते हैं।

में साथी हूँ। इंसान नहीं रहता, लेकिन उसकी बातें, उसकी सोच, उनकी हर एक चीज़ याद आती है। बात ही तो कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उनके राष्ट्र निर्माण के कार्यों की, है ना। पता है साथी, उनका व्यक्तित्व ना हर वर्ग को प्रभावित करता था। मधुरभाषी होने के कारण निम्न वर्ग तो जो था उनमें तो वो प्रिय थे ही, लेकिन उच्च वर्ग में भी उनकी प्रगतिशील सोच, ज्ञान के कारण सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। यूएन में दिया गया उनका भाषण सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए थे। बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था विश्व पटल पर। उनके भाषणों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विश्व

0: शांति और जो नए स्वतंत्र देश थे ना, उन देशों को नीति बनाने को एक दिशा दी थी। सबसे मन प्रेम की बातें करते थे। मन में सबके प्रति जब प्रेम होता है ना साथियों, तो नफरत रह ही नहीं सकती, है ना, किसी के प्रति। और आज के जो हमारे कहानीकार हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह की जो कहानी हम प्रस्तुत करने वाले हैं, उसका शीर्षक भी यही है, मन प्रेम।
1: हमारी कहानी का शीर्षक है मन प्रेम। आज कॉन्फ्रेंस हॉल स्टूडेंट से खचाखच भरा हुआ था। कुछ छात्र फील्ड में टहल रहे थे, कुछ प्रांगण में अध्ययनी फाइलों को पूर्ण करने में व्यस्त थे। प्राचार्य जी प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर चुके थे। अब बस एग्जामिनर के आने का इंतजार था। आगंतुकों के आते ही प्रैक्टिकल का वैवा शुरू हो गया था। छात्र छात्राएं कतारबद्ध मुद्रा में अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पंक्ति में कुछ ही दूरी पर खड़ी आभा अपने साथी छात्रों से बतिया रही थी। माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में स्वर्ण कंगन उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। वह हर्षोल्लास से इतनी परिपूर्ण थी कि उसकी चंचल बातें सबको सम्मोहित कर रही थी। बरसों बाद आभा को इतना प्रसन्नचित्त देखकर मैं उसके गुजरे कल में लौट गया। क्लास का फर्स्ट डे स्टूडेंट बारी बारी से अपना परिचय दे रहे थे। अचानक आभा ने कक्ष में प्रवेश किया, जिसे सब छात्र अचरज की निगाहों से घूर रहे थे। आभा ने परिचय देते हुए कहा, मैं आभा, BA LLB। आभा की एजुकेशन को देखकर मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो कोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए आभा, कहाँ तुम टीचिंग लाइन में आ गई, क्या वकालत का पैसा रास नहीं आया? आभा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, सर मुझे झूठ बोलना नहीं आता और यह पैसा तो झूठ की बुनियाद पर ही टिका है। फिर सीधे शब्दों में कहूँ, मैं किसी को अंधेरे में नहीं रख सकती। आभा की बेबाक बातें सुनकर क्लास में शोरगुल बढ़ गया। छात्र छात्राएं आपस में कानाफूसी करने लगे थे। मैंने कक्ष के वातावरण को शांत करते हुए कहा, सब लोग शांत हो जाइए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें पाल लेते हैं और अपने अधूरे सपनों को बच्चों के ऊपर जबरन थोप देते हैं। वह बच्चों की रुचि और क्षमता पर तनिक भी सोच विचार नहीं करते हैं। फिर वही हर्ष होता है जो आभा का हुआ। खैर, देर आए दुरुस्त आए, आभा गुड डिसीजन। पठन पाठन में ज्ञान की ऐसी अद्भुत गंगा बही कि क्या स्टूडेंट क्या टीचर सभी सराबोर हो गए। हमेशा हंसती खेलती आभा को कुछ दिनों से मैं गुमसुम सा देख रहा था। जब मैंने उससे उदासी का कारण जानना चाहा, तो वह बेफर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो आभा, सब ठीक हो जाएगा, पंकज से मैं बात करूंगा। आभा रोते हुए बोली, सर अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ अब खत्म हो गया। मैंने कहा, मतलब? आभा बोली, रोहित सर ने पंकज से बात की है। पंकज बोल रहा है मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। मैंने क्रोधित होते हुए कहा, तुमसे प्यार उसने क्या अपने माता पिता से पूछ कर किया था? मेरी बात मानो, तुम भी उसे गुजरा हुआ कल समझकर भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं सर, यह मुझसे नहीं हो सकता। मैंने आभा को डांटते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता, तुम्हें उसे भूलना होगा। पहली बार तो तुमने अनमैच्योर लड़के से प्यार करके सबसे बड़ी गलती की है, जो अपनी जिंदगी के फैसले स्वयं नहीं ले सकता। आज भी वह अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलना चाहता है। तुम उसे भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो और जहां तुम्हारे माता पिता कहें वहां शादी संबंध करो। आभा भावुक अंदाज में बोली, सर एक बार फूफा जी मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए थे, घर के सब लोग राजी थे, लेकिन पंकज के चक्कर में मैंने इतना बढ़िया रिश्ता ठुकरा दिया। तब से घर में कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, सब मुझसे नाराज रहते हैं। अब आप ही बताइए सर मैं क्या करूं? कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में मथुरा वृंदावन चली जाऊं। मैंने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, जिंदगी से भागना किसी समस्या का हल नहीं है। माता पिता का हृदय बड़ा कोमल होता है, उनसे बात करो, उनके नजदीक जाओ, उनका दिल जीतो, वह जरूर तुम्हें माफ कर देंगे। आभा से जब भी मेरी मुलाकात होती मेरा एक ही प्रश्न होता, आभा कोई रिश्ता आया? मेरे बार बार पूछने पर वह झुंझला कर बोली, मेरी यह समझ में नहीं आता आप हमारी शादी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, अब हम सर आपसे कभी बात नहीं करेंगे।

0: आभा के कटु शब्दों का कभी बुरा नहीं माना। हाँ, उसके कटु अल्फाजों से इतना जरूर मेरी समझ में आ गया था कि यह लड़की आज भी पंकज को चाहती है। एक लंबे अरसे के बाद आभा अपने सहपाठियों के वार्तालाप में मंत्रमुग्ध थी। उसके चेहरे की भाव भंगिमा बता रही थी जैसे कठिन परिश्रम के बाद उसे कोई खुशी की प्राप्ति हुई हो जिसे वह संगीत साथियों के साथ बांट रही हो। मैंने आभा के नज़दीक जाकर कहा, आभा इंगेजमेंट मुबारक हो। आभा मुस्कुराते हुए बोली, सर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा, आभा मुझे किसी ने नहीं बताया, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। समय बीतता गया। आखिर वह समय भी आ गया जब आभा कॉलेज कैंपस में अपनी शादी का निमंत्रण पत्र बांट रही थी। वह अपनी शादी में आने के लिए सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी लेकिन उसने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। कैंपस के लोग मुझे चिढ़ाने लगे, गुरुजी आपकी शिष्या की शादी है, क्या आप नहीं चलेंगे? आभा के हाथों की मेहंदी अभी छूटी भी नहीं थी कि उसकी सहेली ने मुझे फोन पर बताया, सर आपको कुछ पता चला? आभा के पिताजी एक्सपायर हो गए। यह खबर सुनते ही मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। कैसे, उन्हें क्या हुआ? सहेली बोली, हार्ट अटैक पड़ा है। मैंने आभा की सहेली से कहा, आभा से बोलना इस दुख की घड़ी में हम सब उसके साथ हैं। आभा के पिता का स्वर्गवास हुए अभी 13 दिन भी नहीं बीते थे कि उसने मुझे फोन पर खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। जब वह सुनाकर खामोश हो गई तो मैंने कहा, अब मैं बोलूं, मैं तुम्हारी शादी के पीछे क्यों पड़ा रहता? वह तुम्हें मैं आज बताता हूँ। मुझे तुमसे कोई लालच नहीं था, हाँ आत्मीय लगाव जरूर था क्योंकि तुम मेरी प्रिय शिष्या थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम उस आवारा कंप्यूटर ऑपरेटर पंकज के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर लो। वैसे भी तुम बताती थी कि तुम्हारी माँ सौतेली है, वह तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहती। तुम्हारे पिता को 2 अटैक आ चुके। मैंने सोचा अगर तुम्हारे पिता को कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ तो तुम्हारी शादी के बारे में सोचने से रही। आखिर मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। आभा को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, सॉरी सर, मुझे माफ कर दो सर, मुझे आपको समझने में बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में इतना अधिक सोचते हैं।
1: मन प्रेम, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानीकार थे डॉक्टर राकेश कुमार सिंह। साथियों, हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, आपको याद है, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो साथियों, उसका उत्तर है 27 मई को मनाई जाती है, जो आज का दिन है ना? साथियों, वो हमेशा के लिए चले तो गए हैं छोड़कर, लेकिन रहे ना रहे कहाँ ना महका करेंगे। अब देखिए ना, उन्होंने जो काम किए वो महका ही रहे हमारे भारत को। उन्होंने श्रमिक भाइयों के लिए भी बहुत कुछ किया है, श्रमिक भाइयों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं की है, श्रम कानून बनाया, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कदम भी उठाया है। वैसे एक बात तो है साथियों, जो श्रमिक है हमारे, जो मजदूर हैं, हमारे देश के आधार है। एक बात नोटिस की आपने? जहाँ देखो आपके यानी हमारे श्रमिक साथियों का हुनर ही दिखाई देता है। जिस पर चलते हैं वाहन साइकिल, जिस पर आप दौड़ाते हैं फर्राटे के साथ, वो सड़क भी तो आपकी मेहनत से बनी है। बाजार जाएं तो दुकानों में से जो सामान खरीदते हैं वो आपके श्रम के बिना संभव ही नहीं। घर जिसमें हम रहते हैं आराम के साथ, उसमें भी आपकी मेहनत की छाप दिखाई देती है। मशीनें हो या घर में नल को ठीक करवाना हो, बिजली की मरम्मत करवानी हो, घर की सुंदरता में 4 चांद लगाना हो, उसके लिए फर्नीचर की आवश्यकता होती है ना, तो फर्नीचर की बात हो, कारखानों में सामान उत्पादन की बात हो, स्टील, कोयला, सीमेंट, हर एक क्षेत्र में आप ही आप है, आपकी मेहनत ही दिखाई देती है साथियों। और हमारी बहनें बड़ी नखरे के साथ इठला के जो आभूषण पहनती हैं, अंगूठी, गले का हार, पायल, उसमें भी तो आपकी छाप दिखाई देती है ना? यानी साथियों, देश की प्रगति में, अर्थव्यवस्था में भोजन की आपूर्ति हो या आवश्यक वस्तुओं की बात हो, हमारे श्रमिकों के बिना हमारा जो दैनिक जीवन है ना साथियों, वो थम सकता है ना? यानी हमारे मजदूर भाई हमारे लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। अब देखिए, आप खड़े हैं किस लिए? रीढ़ की हड्डी आपकी स्वस्थ है ना? चोट लग जाए तो हम बिस्तर में नहीं आ जाएंगे। इसी तरह श्रमिक हमारे देश को खड़ा रखता है है ना, उसकी भागीदारी के कारण ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था

ऊंचाइयों को छू पाती हैं। लेकिन देखा ये भी जाता है साथियों कि कुछ श्रमिक, जो सब श्रमिकों की कार्य क्षमता एक जैसी नहीं होती, वजह बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है स्वच्छ वातावरण में नहीं रह रहे हों, अशिक्षा वजह हो सकती है, भोजन करते हैं पेट भरने के लिए, उसमें पौष्टिक तत्वों की कमी होती है, नींद पूरी नहीं होती है, फिर उनकी जो कौशल है उसमें कमी होती है। अकौशल श्रमिकों के कारण उत्पादन में विपरीत असर पड़ता है। इसलिए साथियों जरूरी है अपनी कौशलता को बढ़ाएं, सुरक्षित रहें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि देश के विकास की राह है उसे आगे तक आप ही ले जा सकते हैं, क्योंकि श्रमिक के श्रम की बूंद से ही ये धरा हरी भरी होती है। मिट्टी सोना उगलती है, उनकी मेहनत से ही देश प्रगति करता है, उनकी मेहनत ही देश की असली ताकत है। ऐसे हाथों को साथियों हमारा सलाम है जो हमारे सपनों को हकीकत में बनाते हैं। देखिए, सपने को हकीकत में बना रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए और मनोरंजन का भी, क्योंकि देखिए यदि आप अपने आराम का, मनोरंजन का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो कार्य क्षमता है ना वो और बढ़ जाएगी, उत्पादन अधिक होगा। तो अभी क्या करें, एक प्यारा सा गीत सुन लें।

0: वे साय तू। ए, क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

श्रोताओं, इस गीत के संगीत में आप खोइए, आनंद लीजिए और मुझे लेकिन अभी कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। प्रोग्राम प्रेजेंटर थी कल्पना सरकार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित

0: करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल हैं। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration, transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called the Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation and PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said the scheme will provide assistance to state agencies for intra-state movement of food grains, will support fair price shops and help in modernization of public distribution system.
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: 3 मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
1: The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. He said the scheme is not a replacement of the existing PDS scheme. Home Minister Amit Shah has hailed the approval of Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet. The Assam Legislative Assembly today adopted the Uniform Civil Code Bill, making Assam the first state in the Northeast and the third state in the country to adopt such a legislation. The bill, introduced during the first session of the 16th Assam Legislative Assembly on Monday, was passed by the House

0: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है विविधा कार्यक्रम का, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नीरज जैन से वार्ता, स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक वीर सावरकर।
1: साहस, धैर्य, सहनशीलता, वीरता और कर्तव्यनिष्ठा के पुंज सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में नासिक जिले के भगुर नामक गांव में 28 मई 1883 ईस्वी को हुआ। चितपावन ब्राह्मण कुल में जन्मे विनायक के घर का नाम तात्या था। पिता दामोदर पंत और माता राधाबाई से देशभक्ति और स्वाभिमान का पाठ इन्हें घुट्टी में ही मिला। 10 वर्ष की आयु में ही वे मराठी में अच्छी खासी कविता करने लगे। तभी हैजा के प्रकोप से इनकी मां चल बसी और वे अपनी शिक्षा पूरी करने हेतु अपने बड़े भाई गणेश के साथ नासिक आ गए। उस समय महाराष्ट्र पर भीषण अकाल और प्लेग की छाया थी, परंतु तत्कालीन अंग्रेज सरकार महारानी विक्टोरिया के शासन की हीरक जयंती मना रही थी। इस उत्सव का विरोध करने की घटनाओं के सिलसिले में अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारी चाफेकर बंधुओं को फांसी पर चढ़ा दिया। चाफेकर बंधुओं के इस अमर बलिदान के अमिट छाप सावरकर बंधुओं पर भी पड़ी। उसी समय विनायक ने प्रतिज्ञा की कि देश की स्वाधीनता के लिए मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक सशस्त्र क्रांति का झंडा उठाते हुए साम्राज्यवादियों से जूझता रहूंगा। इसी क्रम में सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की, जो गदर पार्टी के नाम से विदेशों में विख्यात हुई। इसका उद्देश्य था भारत को पूर्ण राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त कराना। 1 अक्टूबर 1905 को पूना में सावरकर ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा की और 7 अक्टूबर को पहली बार पूना में ही विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। वर्ष 1905 में पूना से बीए करने के बाद लॉ की पढ़ाई करने वे बंबई आ गए।

अगले वर्ष उन्हें लंदन आने का सुयोग प्राप्त हुआ। लंदन रहकर उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर के विस्तृत इतिहास से भारतीयों को परिचित कराने के लिए सावरकर ने लगातार 18 माह तक परिश्रम करके मराठी भाषा में स्वातंत्र्य समर नामक ग्रंथ की रचना की। भारत में चल रही तमाम क्रांतिकारी घटनाओं से संबद्ध रहने और शासन के विरुद्ध विप्लवकारी साहित्य के प्रचार प्रसार के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। न्याय का नाटक हुआ और विनायक सावरकर पर भारत में ही अभियोग चलाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुपालन में जुलाई 1910 में SS मूरिया नामक जलपोत विनायक सावरकर को लेकर लंदन से भारत की यात्रा पर रवाना हुआ। यात्रा के दौरान फ्रांसीसी समुद्र तट के पास मार्सेल्स नामक स्थान पर विनायक सावरकर शौचालय के रास्ते समुद्र में कूद गए और तैरते हुए फ्रांस के सागर तट तक पहुंच गए, लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेज सिपाहियों द्वारा पीछा करके फ्रांस की भूमि पर उन्हें पुनः बंदी बना लिया गया और भारत भेजने की कार्यवाही की गई। परंतु सावरकर के इस अदम्य साहस और सूझबूझ की कहानी सारे संसार में फैल गई। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका के सभी छोटे बड़े अखबारों ने इस घटना को अपने मुखपृष्ठ पर प्रकाशित किया। इधर भारत में सावरकर पर मुकदमा चला और उन्हें 50 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। बंबई के डोगरी कारागार से शुरू हुई यह जेल यात्रा भायखला और ठाणे जेल होती हुई 4 जुलाई 1911 को अंडमान पहुंची। बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर पहले ही अंडमान जेल में थे, परंतु जेल के कड़े कानूनों के चलते दोनों भाइयों की मुलाकात असंभव थी। वैसे भी राजनीतिक बंदियों पर अंडमान जेल में बहुत ज्यादा सख्ती की जाती थी। उन्हें भूखा रखा जाता, कोल्हू में पेरा जाता और तमाम तरह की अमानुषिक यात्राएं दी जाती। कैदियों पर किए जाने वाले इस घोर अमानवीय अत्याचार की खबर जेल की दीवारों से छनकर जब भारत पहुंची तो समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक बंदियों को कुछ सुविधाएं मिलने लगी, परंतु यहां भी सावरकर को इन सुविधाओं से वंचित रखा गया, क्योंकि जेल अधिकारियों को पूर्ण विश्वास था कि इस सारे फसाद की जड़ सावरकर ही हैं। उसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग की गई। फलस्वरूप 24 दिसंबर 1919 में ब्रिटिश सम्राट की दया के आधार पर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए गए, परंतु जन सुरक्षा के नाम पर अंग्रेज सरकार ने सावरकर को मुक्त नहीं किया। तब भारत में नेशनल यूनियन के हस्ताक्षर अभियान के फलस्वरूप सरकार ने समस्त राजबंदियों को छोड़ने की घोषणा की और 2 मई 1921 को सावरकर ने अंडमान को अंतिम प्रणाम किया, परंतु देश की मुख्य भूमि पर पहुंचते ही उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। 6 जनवरी 1924 को कुछ शर्तों के साथ जब उन्हें रिहा किया गया, तब तक उनका स्वास्थ्य बहुत क्षीण हो चुका था, फिर भी वे मन प्राण से राष्ट्र सेवा में लगे रहे और बंबई को अपना स्थायी निवास बनाया। इस दौरान अनेक तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं और क्रांतिकारियों के साथ उनका संपर्क हुआ। उनका मानना था कि अत्याचार और आतंक पर आधारित ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए पहले उसकी नींव में ही बारूद लगानी पड़ेगी। इसी दृष्टिकोण के चलते उन्होंने भारतीय युवकों को आजाद हिंद फौज में भर्ती होने की प्रेरणा दी। देश के विभाजन की बात सावरकर को कभी भी गले नहीं उतरी। उनका स्पष्ट मत था कि कोई भी राष्ट्रभक्त अपने देश का विभाजन स्वीकार नहीं कर सकता और जो विभाजन चाहता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता, और इसीलिए क्रिप्स मिशन के भारत पहुंचने पर सावरकर ने स्पष्ट घोषणा की कि रक्त की अंतिम बूंद तक हम पाकिस्तान के विचार का विरोध करेंगे। इन सब के बावजूद देश के विभाजन का 63 अध्याय पूरा हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दुखद हत्या हुई और सारा देश शोक संतप्त हो गया। संयोगवश सावरकर का नाम भी हत्या रूपियों की सूची में शामिल हो गया, परंतु 84 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त घोषित कर दिया। हालांकि अंडमान की घोर यातनाओं के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य पहले ही जर्जर हो चुका था, लेकिन फिर भी अभिनव भारत की यात्रा का यह पथिक अपने अंतिम पड़ाव तक अदम्य जीजीवी शाह का उत्कट प्रदर्शन करता रहा और अंततः 26 फरवरी 1966 को मां भारती का यह लाडला सदैव के लिए उसकी गोद में सो गया। वास्तव में वीर सावरकर के जीवन की हर सांस, उनके शरीर का प्रत्येक रोम और उनके हृदय की हर धड़कन जनहित के लिए समर्पित रही। इसीलिए उनके निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने सावरकर को भारत की महान विभूति बताते हुए कहा था कि साहस और देशभक्ति के पर्याय सावरकर एक आदर्श क्रांतिकारी के सांचे में ढले थे। देश के ऐसे महान सपूत को शत शत नमन, शत शत वंदन।

विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे नीरज जैन से वार्ता। वार्ता का विषय था स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक वीर सावरकर। इसी के साथ ये कार्यक्रम विविधा यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
1: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। वहीं बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 29 मई से लू से राहत की संभावना जताई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 29 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी

0: में आंधी, तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स है, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य एआई, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास एसआईआर कराने का अधिकार है।
2: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है एसआईआर कराने का, उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें संचालित करने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
3: 15 जून से जेएर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम 30 रुपए होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह यूपी रोडवेज निगम से एमओयू की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: कल मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को लेकर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। कई जगहों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की 2023 की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस की तरफ से लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि खुले में जानवरों की कुर्बानी

0: न दी जाए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रों में गश्त करके शासन के आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। श्रावस्ती में संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिले को 4 सुपर जोन, 12 जोन और 71 सेक्टर में बांट दिया गया है। अयोध्या में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अयोध्या रेंज के DIG सोमेन वर्मा ने बताया कि पर्व को लेकर संबंधित लोगों और समितियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
1: हमारी जो भी संबंधित जनपद हैं वहाँ पे हर जगह पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है जहाँ पे DM और SP स्वयं रहे हैं। इसके बाद भी हर स्थान पे जहाँ पे कुर्बानी होती है, नमाज अदा होगी, वहाँ पे भी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट उसको संवाद के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से सबको बता दिया गया है।
0: वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि शासन और जिला प्रशासन के आदेशों को का पालन करें। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फिरंगी महले ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है।
2: हर साल की तरह इस साल भी इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जो कि जहां पर की पहले से इजाजत है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

आप सुन रहे थे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हो चुके हैं। अब समय है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का, तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। आप कर रहे हैं आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा से आज के प्रोग्राम का आगाज। सभी मेरे प्रिय श्रोताओं और साथियों को आपके रेडियो होस्ट यानी कि मैं सागर जक्की का प्यार भरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरी माटी मेरा देश, ये वो कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं भारत की उस गौरवशाली मिट्टी की जिसने अनगिनत वीरों को जन्म दिया और देशभक्ति की अमर गाथाएं रची। श्रोताओं, आज का दिन भारत के इतिहास में एक भावुक और महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। देश उन्हें प्यार से पंडित नेहरू और चाचा नेहरू के नाम से जानता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल एक राजनेता नहीं थे श्रोताओं, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माता,

लोकतंत्र के सशक्त प्रहरी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत को वैज्ञानिक सोच, शिक्षा, औद्योगिक विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों की दिशा दी। उनका सपना था कि एक ऐसा भारत हो जहां ज्ञान, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का सम्मान हो।

0: दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। हम बात कर रहे थे पंडित नेहरू जी के बारे में। श्रोताओं, आज जब हम नेहरू जी को याद कर रहे हैं तो यह भी जरूरी है कि हम उस भारत को देखें जो तेजी से तकनीक और डिजिटल युग की ओर बढ़ रहा है। आज का युवा सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जुड़ा हुआ है। तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, हमें दुनिया से जोड़ा है, जानकारी को हमारी उंगलियों तक पहुंचा है, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को समझना भी उतना ही जरूरी हो गया है। पंडित नेहरू जी हमेशा संतुलित सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते थे। वे मानते थे कि कोई भी प्रगति तभी सार्थक है जब वह मानवता और समाज के हित में हो। आज AI और सोशल मीडिया के दौर में यही विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। सोशल मीडिया ने जहां लोगों को अभिव्यक्ति का मंच दिया है, वहीं कई बार ये तुलना तनाव, अकेलेपन और मानसिक दबाव का कारण भी बनता जा रहा है। लगातार मोबाइल स्क्रीन पर समय बिताना, लाइक्स और फॉलोअर्स की चिंता और हर पल खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की होड़ युवाओं के मन पर असर डाल रही है। दूसरी ओर AI तकनीक तेजी से हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही है। ये शिक्षा, चिकित्सा और कामकाज में मददगार है, लेकिन इससे अत्यधिक उपयोग से इंसानी संवाद और भावनात्मक जुड़ाव में कमी आने का खतरा भी महसूस किया जा रहा है। ऐसे समय में हमें नेहरू जी की उस सोच को याद करना चाहिए जिसमें वे इंसानियत, संवाद और मानसिक संतुलन को सबसे बड़ी ताकत मानते थे। तकनीक का उपयोग जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने मन और रिश्तों को स्वस्थ बनाए रखना। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुत है एक खास भीड़ वार्ता, सोशल मीडिया और AI का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। इस विषय पर बातचीत करेंगी वार्ताकार वैशाली शर्मा और उनके साथ होंगी काउंसलर मंजू शर्मा।
3: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं इस समय एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम कुछ जरूरी विषयों पर जानकारी प्रदान करते हैं, चर्चा करते हैं और बात करते हैं किसी विशेषज्ञ से। आज का समय सोशल

0: मीडिया का है। सोशल मीडिया हर जगह छाया हुआ है। प्रतिभाओं का सम्मान करना हो, मनोरंजन हो, ज्ञान का भंडार हो या फिर दिली तसल्ली हो, हर चीज के लिए सोशल मीडिया एक आधार बन गया है, या ये कहें कि हमारी दिनचर्या का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। तो आज के समय में घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम चुटकियों में किया जा सकता है। बहुत सी टेक्निकल चीज़ों को, बहुत से तकनीकी साधनों को अपनाकर, जिसमें सोशल मीडिया भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हम संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से सात समंदर पार अपने किसी अपने से बात कर सकते हैं, उसकी शक्ल देख सकते हैं, उसका हालचाल ले सकते हैं और भी बहुत कुछ। इसी सोशल मीडिया के अंतर्गत एक और तकनीक है जिसका नाम है AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही एक तकनीक है जो आने वाले समय में मानो इंसान का विकल्प बनने को तैयार है। क्या ये बात एकदम सटीक और सही है? ऐसी ही कुछ बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि AI का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है। तो इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंजू शर्मा जी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक काउंसलर हैं और एक बहुत अच्छी विशेषज्ञ हैं साइकोलॉजी से जुड़ी हुई। आप दिव्यांग बच्चों की, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं और उनकी टीचिंग करने का कार्य भी करती हैं। मैं हूं डॉक्टर वैशाली शर्मा। तो मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू डॉक्टर वैशाली, थैंक यू सो मच।
0: तो मंजू जी, सबसे पहले शायद ये कहने की या बताने की जरूरत नहीं है कि सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका को लिए हुए है, फिर भी मैं आपकी दृष्टि से, आपकी नज़र से जानना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का क्या रोल है आज के समय में।
1: सही कहा आपने वैशाली, सोशल मीडिया अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझना चाहें, इस वेबसाइट्स जो हम बात करते हैं या ऑनलाइन और जो एप्स हैं जो कि लोगों को आपस में क्रिएट उनको शेयर और टॉक जो हम बात करते हैं, दैट इज ऑल सोशल मीडिया। और जैसे कि आज हम आपस में बात कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो सोशल मीडिया।
0: बिल्कुल,
1: क्यों हम आपस में बात कर रहे हैं, हमारी बातें और लोगों तक जाएंगी, हमारे विचार, आपके विचार
0: और आप जो जुड़ पा रहे हैं,
1: जुड़ पा रहे हैं, दैट इज ऑल सोशल मीडिया। जैसे फेसबुक है
0: जी,
1: इंस्टाग्राम है, दिस इज ऑल कम्स अंडर सोशल मीडिया, है ना। जैसे 2010-12 में जब सोशल मीडिया आया था तो एक बहुत ही एक बूम जिसको बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा, जैसे कि हमें अलादीन का चिराग मिल गया।
0: बिल्कुल
1: नहीं, तो वो चीज, तो हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। आप जैसे अपने आकाशवाणी में गाने सुनाते हैं पसंद के, या हम अपनी जो सारी टॉक्स होती हैं जो बाहर लोगों तक हमारे, जैसे आपने बताया कि दूर दराज तक भी हम अपने मैसेजेस किसी के भेज सकते हैं, दिस इज ऑल सोशल मीडिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे फोन को लेकर ही कहा जाए कि बातचीत करने के लिए पहले पत्र चलते थे, उसके बाद में फोन का आगमन हुआ।
1: हाँ हाँ।
0: और फोन के बाद फिर मोबाइल फोन आए,
1: मोबाइल फोन आए,
0: तो वो भी एक अलादीन के चिराग की तरह था, जैसे कि आपने बताया जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मंजू मैम, और जानते हैं कि ये तो रही बात सोशल मीडिया की, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल एक बहुत ही गर्मा गर्म विषय है बात करने का और सब जगह छाया हुआ है, तो उसके बारे में पहले, सबसे पहले आपसे जानेंगे, AI है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या?
1: हम इसको बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
0: जी,
1: तो वही मैंने बोला सिंपल भाषा में, जो हमारी आम भाषा में अगर हम इसको जाने, इट्स लाइक ब्रेन, वी बिल्ट, जो हमने जो ब्रेन बनाया है, दैट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर ब्रेन इक्वल टू AI, अगर मोटी भाषा में, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो ब्रेन है,
0: मस्तिष्क है
1: जो, और कंप्यूटर ब्रेन की जब हमने सहायता ली तो हमने इन्वेंट किया AI को। कंप्यूटर मशीन है जो कि थिंक्स एंड लर्न्स लाइक ह्यूमन बींग्स,
0: मतलब कुल मिला के वो कंप्यूटर ब्रेन,
1: कंप्यूटर ब्रेन है, इट्स अ टूल, है ना, ये एक टूल है, उसमें हम डाटा फीड करते हैं, डाटा से उसे हम सिखाते हैं और वो बाद में हमारी मदद करता है, दैट्स ऑल, दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
0: छोटे मतलब कम शब्दों में अगर समझा जाए तो AI जो है वो कंप्यूटर
1: ब्रेन है, जिसको
0: जिसको मानव ने ही बनाया,
1: हमने ही बनाया उसको
0: अपनी सुविधा,
1: डाटा उसमें फीड किया है, तो एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट में वी कैन यूज इट, उसको हम यूज करते हैं।
0: ओके, ये तो रही बात की कि AI है क्या, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी दृष्टि में, आपकी नजर में आज के समय में AI का रोल क्या है।
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, वेरी इफेक्टिव। इनफैक्ट जैसे कि हम वीडियोस देखते हैं, आपने देखा होगा, मैंने कुछ डाला उसमें, अपना सर्च में डाला, जैसे कि AI से मैंने कुछ मांगा सॉल्यूशन, तो उसके बाद वही चीजें आना शुरू हो जाएंगी, इजंट इट। हम जब मतलब इतने सारे सॉल्यूशंस हैं मेरे पास एक छोटे से क्वेश्चन के लिए, तो मुझे पलक झपकते मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी है।
0: बिल्कुल,
1: और जैसे कि गूगल मैप है, वो कितना इफेक्टिव है, फास्टेस्ट रूट हमें दिखाता है।
0: बिल्कुल, इवन कि जैसे हम कुछ टाइप भी करते हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि अगर आप

0: उस वर्ड का एक छोटा सा अल्फाबेट टाइप करो या
1: हाँ
0: दो अल्फाबेट करो तो
1: स्पेलिंग,
0: वो पकड़ लेता है,
1: हाँ
0: स्पेलिंग करो
1: स्पेलिंग
0: तो
1: से,
0: उसके लिए
1: और
0: आपको पूरा टाइप करने
1: पूरा
0: की
1: टाइप
0: जरूरत
1: करने
0: नहीं
1: की
0: है।
1: जरूरत
0: जी
1: नहीं, और स्पेल करेक्शन जो है वो इतना इजीली हो जाता है। मेरी वो लेटर्स फ्रेम करना है, इनफैक्ट आजकल तो आप गाना डालिए, अब मैंने अपनी एक सिचुएशन क्रिएट की, मुझे लगा कि मुझे इमिजिएटली कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन, और इवन राइटअप्स इतना ईजीली मिल रहे हैं। जो लोगों का काम है, ह्यूमन बींग का काम है, एकदम चुटकी में हो रहा है।
0: मतलब कुल मिला के वो पहचान जाता है कि व्हाट डू यू लाइक टू से एंड व्हाट डू यू वांट टू
1: यस
0: गेट।
1: यस मुझे
0: जी
1: क्या चाहिए, ऐसा लगता है कि जैसे उसको पता है मुझे क्या चाहिए।
0: मुझे क्या
1: मैंने जैसे कि
0: चाहिए।
1: मान ली वॉशिंग मशीन की, उसमें कुछ डाला, सर्च कर रही हूँ मैं, उसके पास देखिए बार बार वॉशिंग मशीन की एड आएंगी उसमें, तो मेरे लिए कितना ईजी हो गया है। मैं
0: बिल्कुल।
1: सर्च करना कि अरे ये भी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मॉडल, ये भी मैं देख सकती हूँ, वो भी, मतलब सो मेनी सोल्यूशंस आर अवेलेबल।
0: तो अगर पॉजिटिव चीज़ों की बात करें या पॉजिटिव प्रभाव की बात करें तो एआई के कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हैं जिन पर हम जान सकते हैं।
1: जैसे कि पहले हम बहुत दिमाग लगाते थे, और आजकल क्या है, हम एआई, हम आजकल ब्रेन ना लग, मतलब ब्रेन तो लगा ही रहे हैं क्योंकि हमारे द्वारा ही बनाया गया है वो ऐप, तो बहुत ही इफेक्टिव है, फास्ट, मतलब जैसे
0: समय की
1: बोलेंगे
0: बचत
1: समय
0: करता
1: की
0: है,
1: बचत करता
0: एनर्जी
1: है,
0: एंड समय
1: एनर्जी,
0: की बचत
1: समय,
0: करता
1: और
0: है।
1: बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, एक ही टास्क के बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल
0: तो
1: हैं।
0: जाहिर सी बात है जब कम समय में ज्यादा काम हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इससे
1: हाँ
0: कैपेसिटी भी बढ़ेगी।
1: बढ़ेगी, उससे होगा नेचुरली, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुत सारे लोगों का काम, और इफेक्टिव है
0: और हमारा जो देश है
1: जॉब,
0: वो
1: और जो जॉब भी मिल रही है ना लोगों को,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इफ आई एम गुड इन ऑल दिस थिंग्स, कंप्यूटर्स में, इन सब चीजों में मैं अच्छी हूँ, तो मेरे लिए मतलब कुछ भी, बहुत मेरे लिए यूजफुल है वो।
0: मतलब हमारा जो
1: और बच्चों
0: देश
1: को
0: है वो
1: देखिए, बच्चों के प्रोजेक्ट्स देखा, छोटे छोटे बच्चे यूज कर रहे हैं इसको, स्कूल्स में देखिए बच्चे अपना कुछ भी प्रोजेक्ट्स जो उनको मिल रहे हैं, आप वो तो चलो मीडिया हो गया हमारा, सोशल मीडिया भी हो गया, उसी के साथ कनेक्टेड चीजें हैं ये सब,
0: मतलब एआई से हार्ड वर्क की तरह हम स्मार्ट वर्क की तरफ जा
1: स्मार्ट
0: रहे
1: वर्क की
0: हैं।
1: तरफ जा रहे हैं। यस
0: तो ये तो रही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की बात, लेकिन अब अगर हम नेगेटिव चीज़ों को लेकर या इसका कहें कि एक नकारात्मक इसका परिणाम है तो उसके बारे में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं।
1: बस वही चीज लगता है कि बहुत ही यूजफुल है, नो डाउट, कुछ भी डाउट नहीं है, और हम ऐसा नहीं बोलेंगे इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे अब, बिकॉज ये हमारे डेवलपमेंट का एक तरीका है, बहुत ही अच्छी इन्वेंशन हुई है, पर इसके साथ हमें इसको समझना है कि ये एक दोधारी तलवार की तरह है, इट वर्क्स एज अ, मतलब डबल जो एस शॉर्ट बोलेंगे हम, उसकी तरह काम कर
0: ये
1: रही
0: जो
1: है।
0: आपने दोधारी तलवार कहा, ये साइंस को लेकर भी यही बात की जाती है और
1: यस
0: टेक्निक को लेकर भी
1: टेक्निक को
0: यही
1: लेके
0: बात की
1: भी,
0: जाती है कि टेक्निक आपके अच्छे के लिए है लेकिन वो दोधारी तलवार का काम भी करती
1: हाँ
0: है। जी
1: जैसे कि हमने अपने जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो लूज कर दिए इसके आते,
0: बिल्कुल।
1: एबिलिटीज हैं, जैसे हम हर चीज, हर सोल्यूशन, हर चीज कंसल्ट एआई को करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए।
0: हमारी रचनात्मकता पर इसका सीधा
1: हाँ,
0: असर पड़ता
1: और
0: है।
1: अभी तो मैंने, अभी पीछे एक एफएम में, जब व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैंने सुना उसमें कि अभी तो वो राइटअप्स भी, जैसे मैंने बोला कि तो हमारे जो पुराने राइटर्स थे, ओरिजिनलिटी कहाँ रह गई। मैंने
0: बिल्कुल।
1: सिचुएशन दी कि मुझे एक बारिश का सीन चाहिए, या मुझे एक ऐसी बुक लिखनी है जिसमें कि ये सब चीजें चाहिए, मैंने उसमें फीड किया, तो उसने मुझको इतने इतने अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस दे दिए, पर समहाउ आई फील कि हम तो क्या स्लेव्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं।
0: मतलब सवाल ये उठता है कि क्या एक समय ऐसा आ जाएगा या अभी वर्तमान में जो स्थिति है कि क्या हम अब सोच नहीं पाएंगे, हम अपनी जो ओरिजिनलिटी है क्या वो हमारी खत्म हो जाएगी,
1: यस
0: जो हम देख रहे हैं क्या हम देखेंगे एआई की नज़र से, सोचेंगे एआई की नज़र से,
1: हाँ
0: कोई
1: जी,
0: कार्य करेंगे तो एआई के द्वारा,
1: एआई
0: मतलब
1: के
0: हमारा
1: द्वारा
0: अपना सेल्फ क्या बचेगा।
1: सेल्फ कुछ नहीं बचेगा, जैसे कि
0: जी
1: ना कि मैं आजकल, आप देखिए कि बच्चे हैं या हम भी हैं, हेयर स्टाइल तक हम उसमें डाल के देखते हैं, अपना एक फोटो डालते हैं
0: बिल्कुल।
1: तो वी आस्क सजेशन फॉर सजेशंस, तो मेरा पूरा वो चेंज करके बताता है, तो क्या मैं अपना, मेरी ओरिजिनलिटी क्या रही,
0: और फिर आपकी
1: मैं
0: सोचने
1: आपके
0: की
1: फीड,
0: क्षमता जो है,
1: क्षमता,
0: बिल्कुल
1: फोन नंबर पहले हम याद रखते थे, वो
0: जी
1: तो चलो मैं सोशल मीडिया की बात करूंगी, फोन जब से आया, पहले हमें सारे फोन नंबर्स याद होते थे, आजकल हमें याद ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन दैट,
0: यस
1: तो
0: डेफिनेटली।
1: उसमें क्या है, किस दिन अगर नेट हमारा या कुछ और प्रॉब्लम हो गया तो मैं फिर हैंडीकैप्ड,
0: बिल्कुल।
1: तो डिपेंडेंसी हमारी बहुत बढ़
0: डिपेंडेंसी
1: गई
0: बहुत
1: है।
0: ज्यादा बढ़ रही है। जी
1: और जीपीएस आप देखिए, अब मैप्स कहाँ हैं, पहले हम मैप्स से नेविगेट करते थे अपना रूट्स, और
0: बिल्कुल।
1: ज्योग्राफी हमारी स्ट्रांग होती थी बच्चों की या हमारी भी, पर अभी क्या है, झट से जीपीएस डालते हैं, चाहे वो एट टाइम्स, वो मैंने बोला ना, इट्स मैन मेड, दिस टूल इज मैन मेड, हमें
0: मैन
1: नहीं
0: मेड
1: भूलना है
0: बिल्कुल।
1: कि वो कहीं ना कहीं जाके कई बार हमें अटका देता है, क्योंकि वो उसमें जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फीड है, हो सकता है मे बी वो चेंज हो गई हो, अपडेट ना हो,
0: बिल्कुल।
1: तो हम अपडेट, मतलब उसके लिए हम इतना डिपेंडेंसी हो गई है,

0: अच्छी चीज है, पर हमें उसे प्रोग्रेस के लिए यूज करना है, छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं, है ना। जीपीएस का जैसे कई बार हुआ है मेरे साथ भी कि हमने डाला, हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट
1: हम
0: कि हम
1: उसको
0: पहुंचे
1: एक
0: जाएंगे,
1: हेल्पिंग हैंड की तरह
0: हेल्पिंग
1: यूज
0: हैंड
1: कर
0: की तरह।
1: सकते हैं। और वो जहाँ तक फिजिकल एक्टिविटीज की बात आ जाती है और फिजिकल तरीके से एक्टिव रहने की बात आती है,
0: हाँ
1: वहां पर भी इसका शायद नेगेटिव इम्पैक्ट
0: हाँ
1: है,
0: वहां
1: क्योंकि
0: पर
1: जो
0: भी
1: थोड़ी बहुत मेहनत हम करते थे अब वो भी नहीं
0: वो भी
1: करेंगे।
0: नहीं कर रहे हैं,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि मुझे, और मैं उसको पता है कि जब बच्चे हमसे पूछते हैं, हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, फोन खोलते हैं, एआई से कंसल्ट करते हैं, तो समटाइम्स आई फील कि उनको ऐसा कर रहे हैं कि वो
1: उसको मालिक
0: उसको
1: बना रहे हैं
0: मालिक
1: तरीके
0: बना
1: से,
0: रहे हैं,
1: जी
0: है ना,
1: मतलब उसको मास्टर बना रहे हैं।
0: मास्टर बना रहे हैं, और वो उसको इंटेलिजेंट समझ रहे हैं अपने आप को, पर वो
1: बिल्कुल।
0: इंटेलिजेंट तो नहीं हुए ना, तो हर चीज के उनके पास सोल्यूशन है, ठीक है सोल्यूशन, बट दैट इज नॉट सजेस्टेड बाय यू, आपने तो सोल्यूशन नहीं निकाले हैं, आप किसी और ने आपके लिए, आपकी ड्रेस, आपके कॉस्ट्यूम जो भी
1: आपका
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: आपके
1: मेकअप।
0: मेकअप, सब चीजें, और बच्चों के जो भी, हम बच्चे जो भी काम करते हैं आजकल एआई के थ्रू, तो सब इट्स फीडेड बाय सम अदर।
1: जी। अब देखिए ना, एक समय पर लोग लिखा करते थे, अब लोगों की लिखने की आदत बिल्कुल छूट गई है, बच्चे हों या बड़े हों, स्पेशली स्टूडेंट्स, वो अब लिखना प्रेफर नहीं करते,
0: प्रेफर नहीं
1: उनको
0: करते।
1: टाइप करना है या फिर प्रिंट आउट निकालना है या फिर जो भी है
0: हाँ
1: एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन, लेकिन वो लिखना नहीं चाहते। अब जब हम एआई की मदद से सोचेंगे भी, तो अब हम लिखेंगे भी एआई की मदद से और सोचेंगे भी एआई की
0: सोचेगी
1: मदद से, तो हमारा क्या
0: तो
1: बचा?
0: डबल हमारे ऊपर हो रहा है ना,
1: जी
0: ये जो वार हो रहा है ये डबल हो रहा है,
1: जी
0: क्योंकि रियली इट इज स्केरी आगे जाके। अभी तो हमें अच्छा लग रहा है, और कई लोग तो अभी मेंटल हेल्थ के लिए भी सॉल्यूशंस, जबकि मेंटल हेल्थ का कारण ही वो है, सॉल्यूशंस उस पे ढूंढ रहे हैं, बट दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम ना, आपकी प्रॉब्लम अलग है, 10 लोगों की प्रॉब्लम अलग है, उन्होंने सॉल्यूशन तो फीड हो गए हैं उसमें, पर मे बी दैट इज नॉट सुटेबल फॉर मी।
1: इट मीन्स कि एआई इज अ मास्टर एंड वी ऑल आर स्लेव।
0: यस, वी ऑल आर बिहेविंग लाइक स्लेव्स। जॉब इनसिक्योरिटी हो गई, अभी आप लेटेस्ट आप न्यूज में पढ़िए या देखिए, कितनी कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज उनको निकाल रही हैं, जबकि इतने प्रेशर में लोग काम कर रहे हैं, इजंट इट, कितना प्रेशर है उन लोगों के ऊपर, पर स्टिल वो 10 10 12 12 घंटे काम करते हैं, फिर भी उनकी जॉब इनसिक्योर है, क्योंकि मेरा रिप्लेसमेंट कोई आ चुका है, मेरा जो रिप्लेसमेंट है एआई है या जो भी मास्टर्स हैं, वो बहुत फास्ट चुटकियों में काम कर रहे हैं, तो मेरी वैल्यू डे बाय डे, और मैंने अपनी और स्किल डबल, मैंने क्यों बोला अटैक, कि डबल अटैक इसलिए है कि मैंने अपनी स्किल डेवलप ही नहीं की, तो मुझे टाइम टू टाइम अगर इससे बचना है तो मेरे, जैसे कहते हैं ना, सेकंड मेरे पास एक प्लान होना चाहिए, और स्किल टाइम टू टाइम हमें डेवलप करनी है, यंग जनरेशन को पूरी डिपेंडेंसी सही नहीं है।
1: तो ये तो रही बात मैम की एआई का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या सामने निकल कर आ रहा है, उस पर लगातार बात भी हो रही है, बहुत जोर शोर से ये टॉपिक आजकल छाया हुआ है। अब एक बात और जो कि इससे रिलेटेड ही है कि मानसिक स्वास्थ्य, जो कि हम सभी के लिए बेहद जरूरी है, आने वाले समय में या वर्तमान में एआई तकनीक का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है मैम?
0: ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही कई लोग, जब मैं उनके आर्टिकल्स पढ़ती हूँ उसमें कि जॉब चली गई है, तो ऑब्वियसली वो जस्ट बिकॉज ऑफ
1: प्रेशर।
0: प्रेशर है, 10 12 घंटे के काम करने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट क्वालिटी, वो क्वालिटी वो नहीं दे पा रहे हैं इतना काम करने के बावजूद भी, और इनसिक्योर हैं अपनी जॉब को लेकर, स्ट्रेस तो है ही है नॉर्मल जो जनरेशन में है, जो लेट नहीं है, और नो डाउट अपॉर्चुनिटी, और हम कहते हैं ग्रोथ बड़ी है, पर जो है कि परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस का प्रेशर हो गया, नहीं असली और नकली का हमें नहीं पता चल पा रहा है, अब
1: बिल्कुल।
0: देखिए फेक कितना चल रहा
1: ये बहुत बड़ी बात है, ये जो
0: है
1: अभी
0: ना,
1: आपने बात कही
0: हाँ
1: कि चीजें मिक्स हो गई
0: मिक्स
1: हैं।
0: हो गई हैं, जो बड़े हैं, जो बड़ी जनरेशन के लोग, बड़े ओल्ड पीपल हैं या यंग जनरेशन है, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और वो उसको जो फेक है उसको रियलिटी मान लेती
1: और
0: है,
1: उसे पहचानना एक चुनौती बन गया
0: चुनौती
1: है।
0: बन गया है,
1: बिल्कुल।
0: कि वो भी हमें चेक करना पड़ता है, और इस स्ट्रेस तो है ही है, और मेंटल हेल्थ तो ऑब्वियसली, जैसे मैंने बोला कि कंसल्ट इसी को कर रहे हैं हम, ले दे के घूम फिर के, हम मेडिसिन को भी लेके, कि छोटे छोटे सॉल्यूशन, हमें लगता है कि इसके पास सब चीज़ें है, अलादीन का चिराग है, इसके पास सब सॉल्यूशन, सब प्रॉब्लम्स का हल
1: पूरा
0: इसके पास,
1: ज्ञान का भंडार
0: पूरा
1: भरा
0: ज्ञान
1: पड़ा
0: का
1: है।
0: भंडार है, पर
1: बिल्कुल।
0: वो ज्ञान का भंडार, जैसे मैंने बोला कि हमारे द्वारा ही बनाया गया है, तो हमें उस पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, और इस लूप से बाहर निकलना है, जो टेक्नोलॉजी है, जो कहीं ना कहीं हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है कि कितनी कहाँ तक मुझे इस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, तो वो मुझे अपनी यंग जनरेशन्स को या हमें सोच सोच कर उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल जैसे संवाद तो है, हम आपस में बात कर रहे हैं, मोबाइल है, मीडिया है, एआई है, जो भी है, व्हाट एवर मे बी सोशल मीडिया, हम संवाद तो है, मेरा और आपका बहुत संवाद है, मैंने वीडियोस डाल रही हूँ, आप मुझे लाइक्स डिसलाइक्स देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मेरी पर्सनैलिटी
1: रिस्पॉन्स मिल रहा है,
0: रिस्पॉन्स मिल रहे
1: टोटली
0: हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरी पर्सनैलिटी इज
1: इनहेंस हो रही है।
0: एनहेंस हो रही है, और आपके ऊपर ही डिपेंड

0: स्ट्रेस हो रहा है बच्चों को कि आपने 4 दिन मुझे लाइक्स नहीं मिले तो मेरे को,
1: आफ्टर ऑल यू विल डिसाइड
0: यू विल डिसाइड
1: हु एम आई.
0: हाँ हु एम आई, तो अपनी ओरिजिनलिटी खत्म है.
1: बिल्कुल.
0: तो बहुत ही ज्यादा जो नई जो जनरेशन, नए बच्चे आ रहे हैं, और सोशल बच्चों की मैं जहां तक बात करूं, वर्चुअल जो ऑटिज्म हो रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली, स्क्रीन टाइम है.
1: और मैम जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब अटेंशन सीकर
0: अटेंशन
1: बन
0: सीकर,
1: रहे हैं बच्चे
0: हाँ.
1: जो हैं, वो उनको अटेंशन चाहिए है ना. तो अब
0: और
1: जैसे फोटोज वगैरह आपने एडिट कर
0: हाँ,
1: रहे हैं एआई की मदद से या कुछ, तो इससे तो और वो
0: और
1: चीज़.
0: हो रही है मेरी ओरिजिनलिटी. मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है फेक, जैसे हम भी कई बार यहाँ हम स्टूडियो में बैठे हैं, नो डाउट हमने भी अपने आप को अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाया, पर
1: जी
0: इतना भी नहीं है कि मेरा काया ही पलट हो जाए, कि जैसे
1: बिल्कुल.
0: हम कई बार अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी मिलते हैं, बच्चों को, और कई बच्चे तो मतलब ऐसा अटेंशन सीकिंग इतना हो गया है कि पेरेंट्स को नहीं पता कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं उस.
1: तो इसका बच्चों, वृद्ध लोग जो हैं, सीनियर सिटीजन हैं, और यंग लोग हैं, महिलाएं हैं, सब पर अपना
0: सब
1: अलग अलग
0: सब
1: प्रभाव है
0: हाँ
1: सबके
0: जी
1: मानसिक स्वास्थ्य पर, क्योंकि
0: हाँ
1: सबको अलग अलग तरीके से प्रभावित
0: कर रहा है,
1: कर रहा है और कर सकता है
0: कर
1: आगे
0: सकता
1: आने
0: है.
1: वाले समय
0: हमें
1: में.
0: ये चीज मान के चलनी है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, हमने बोला ना कि जब हम, तो वो अगर हमें सोशल रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, मतलब ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, ह्यूमन जो रिलेशन है उसको हमें बनाए रखना है. अब जैसे संवाद तो हो रहा है, जैसे हम अपने दूर दराज सबसे बात करें, क्या उसमें संवेदनशील हैं हम, फीलिंग्स हैं उसमें?
1: हाँ, तो वही अब हम बात करना चाह रहे थे मैम कि ये तो रही समस्या, अब इसके समाधान की तरफ अगर हम जाएं तो इससे एआई से संबंधित जो समस्याएं पैदा हो रही हैं स्पेशली मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है.
0: इससे जैसे कि मैं, यंग जनरेशन जो जॉब से रिलेटेड आजकल बहुत ही आर्टिकल्स पढ़ने को मिल रहे हैं, मैं तो एक तो ये बोलूँगी कि अपनी न्यू स्किल्स डेवलप करें, और सेट बाउंड्रीज विद द टेक्नोलॉजी, जो
1: सेट
0: नई
1: बाउंड्रीज,
0: बाउंड्रीज
1: जी
0: विद द
1: वो बहुत
0: टेक्नोलॉजी की
1: जरूरी
0: बहुत
1: है.
0: ज़रूरी
1: बिल्कुल.
0: है. जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको, जो हम स्ट्रेस में आ रहे हैं या बातों में आ रहे हैं अपना सोशल मीडिया को देख के, उससे बचें. सेल्फ टॉक भी बहुत यूजफुल है, जैसे कहते हैं ना, अपने आप से देखें, कहीं रुकें, सोचें, समझें, को बोला
1: कहाँ
0: है
1: रुकना है, द
0: कहाँ
1: पॉइंट
0: रुकना
1: इज
0: है,
1: दैट.
0: पॉइंट इज दिस.
1: जी
0: बच्चे तो करेंगे, नो डाउट उनकी एज है, पर
1: बिल्कुल,
0: जो बड़े हैं वो उसको
1: उनको
0: समझें,
1: सीमाओं को तय करना
0: सीमाओं को
1: होगा.
0: तय करें, ह्यूमन कनेक्शन को बढ़ाएं, क्योंकि ह्यूमन कनेक्शन के बिना कुछ भी संभव नहीं है. कोई भी एआई हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, वो ह्यूमन रिलेशन को, उसको कम्पीट नहीं कर सकता है. तो वो एक बना के रखना है, अगर इस स्ट्रेस से, इस चीज़ से हमें बाहर रखना है, पॉजिटिव रहना है हमेशा, और जागरूक रहना है, हमेशा बात करें, स्टे कनेक्टेड. याद रखें कि जो एआई है वो हमारी जो कंट्रोल, डोंट लेट एआई टू
1: कंट्रोलिंग
0: कंट्रोल
1: पावर,
0: माई वाइब्स और माई इमोशंस,
1: डेफिनेटली.
0: कंट्रोल योर एआई टाइम. हमें अपना एआई टाइम कंट्रोल करना है, ना कि एआई
1: उसको
0: मुझे
1: अपने आप
0: अपने ऊपर
1: कंट्रोल करने
0: हावी
1: देना
0: होने
1: है.
0: देना है.
1: जी
0: जैसे कि मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, मेंटल हेल्थ को लेके भी आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो वही कि हम इसको कंसल्ट कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए. तो कोई भी मेंटल हेल्थ ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती, कभी भी, पहले भी नहीं और आगे भी नहीं. तो ये हमें
1: बिल्कुल
0: ध्यान रखना है.
1: बिल्कुल. तो मैम जैसे कि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और एक काउंसलर हैं, तो लोगों के मन से आपका बहुत गहरा नाता रहता है, मानसिक समस्याओं को आप बहुत करीब से समझती हैं, तो आपके अनुसार ये जो टिप्स हैं इनको अपनाकर एआई का जो मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव है उससे बचा जा सकता है.
0: हाँ, उससे बचा जा सकता है. अगर मैंने जैसे कि कुछ पॉइंट्स बताए कि कनेक्टेड रहें,
1: फ्रेंड से,
0: फ्रेंड
1: फैमिली
0: से,
1: से,
0: जागरूक रहें,
1: बिल्कुल
0: जागरूक रहना बहुत ज़रूरी
1: जागरूकता
0: है,
1: बहुत ज़रूरी
0: बहुत
1: है.
0: ज़रूरी है. जैसे मैंने बताया फेक, और उसमें आजकल नहीं पता चल रहा है, बड़ी जो हमारी जनरेशन है, बड़े लोग हैं, बहुत ट्रैप हो रहे हैं इसमें, और बच्चे बहुत हो रहे हैं, है ना. मैं एक एपिसोड, एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि अटेंशन सीकिंग का. अभी लेटेस्ट ही मेरे पास एक बच्चे का वो आया कि एक लड़की ने अपना जो है स्टेटस डाला, उसने वो पहना हुआ था जैसे कि प्लास्टर लगा हुआ है, तो बाय चांस वो, उनकी मदर मेरे साथ कनेक्टेड थी, तो मैंने नेक्स्ट डे आई आस्क हर मदर कि मैम बेटी को कुछ हुआ है क्या? शी सेड कि नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. मैंने कहा नहीं, आई सॉ हर स्टेटस. तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है. मैंने कहा पता नहीं. फिर वो मदर भी डर गई, क्योंकि ऑब्वियसली जाहिर सी बात
1: कोई
0: है,
1: भी
0: कोई
1: डर
0: भी
1: जाएगा.
0: पेरेंट्स की,
1: बिल्कुल
0: मैंने अगर बोला है कि मैंने उनकी बेटी का स्टेटस देखा है एंड सॉ
1: बिल्कुल.
0: हर इन ऑन बेड हॉस्पिटल में और प्लास्टर बंधा हुआ है, तो इमिडिएटली शी आस्ट हर डॉटर कि क्या हुआ तुझे? तो उसने बोला कि नहीं मम्मी, उसने हंस के टाल दिया. अब ये अटेंशन सीकिंग ही तो है,
1: बिल्कुल,
0: सोशल मीडिया तो है,
1: कि आप
0: पर
1: किसी भी हद तक जा
0: किसी
1: रहे
0: भी हद
1: हैं.
0: तक जा रहे हो, तो हो सकता है बच्चे हैं, मैं मानती हूँ बच्चे हैं, देयर एज है, पर उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अटेंशन के लिए मे बी शी वॉन्टेड अटेंशन फ्रॉम हर फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैं उनको

0: ब्लेम नहीं करूंगी, बिकॉज उनके हाथ में एक जो कहते हैं ना एक नई चीज लगी है, जब ये एक फियर ऑफ मिसिंग आउट भी है, FOMO जिसको हम बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट. हर बच्चे को लग रहा है कि जैसे आपके पास बहुत अच्छा फोन है, मेरे पास नहीं है. आजकल नए नए आ रहे हैं, ऐप है उसमें, बहुत फीचर्स हैं, पर मेरे पास नहीं है तो मुझे बहुत अजीब लग सकता है, इजंट इट. तो बच्चों का जो दिमाग है उसको बहुत, माइंड को बहुत ज्यादा रूल कर रही है जो हमारी टेक्नोलॉजी है. तो कहीं ना कहीं हम बड़ों का ही
1: ये दायित्व है,
0: पेरेंट्स
1: सबसे पहले
0: का
1: सीमाएं तय करें,
0: सीमाएं तय
1: वो
0: करें,
1: बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी
1: और
0: है.
1: बड़े अपने लिए भी करें, बच्चों
0: अपने
1: के
0: लिए
1: साथ
0: भी
1: साथ
0: करें,
1: जी
0: रोल मॉडल बने ना. मैं कर रही हूँ, आज देखिए घर में कनेक्शन है, कनेक्टेड है ही नहीं हम. चार
1: बिल्कुल
0: लोग बैठे हैं, सब अपना फोन लेके बैठे हैं और बातचीत ही नहीं कर रहे हैं. तो मैंने बोला ना, संवाद तो हो रहे हैं. मैंने बच्चे को बुलाया, मैंने मैसेज किया कि आ जाइए, खाना लग गया है, बच्चा आ भी गया है, पर संवेदनशीलता है क्या उसमें?
1: जी.
0: तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा.
1: मन के हारे हार है मन के जीते जीत, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. और मन एक बहुत बड़ी ताकत है, और ये भी कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है. जाहिर सी बात है कि इससे ये स्पष्ट होता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के लिए, इन दोनों का ही अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है. हमारे साथ अभी थी मंजू मैम, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर, जिन्होंने इस विषय पर बात करी कि AI का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या दुष्परिणाम पड़ सकता है या पड़ रहा है. आज के समय में हम इस विषय को बहुत गंभीरता से उठा रहे हैं. ईश्वर ने मानव को बनाया और मानव ने तकनीक को, लेकिन अब सवाल उठ गया है कि क्या मानव या तकनीक. ये हमें खुद तय करना है कि ये तकनीक हमने बनाई है तो इसे हमें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना है. कितना, कहाँ और किस तरह से, ये हम पर निर्भर करता है. अगर हम ऐसा करेंगे तो रहेंगे हमेशा स्वस्थ. इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की अब मुझे इजाजत दीजिए. नमस्कार.
2: कार्यक्रम मेरी माटी मेरे देश के अंतर्गत आप सुन रहे थे काउंसलर मंजू शर्मा से वैशाली शर्मा की बातचीत. भेंट वार्ता का विषय था सोशल मीडिया और AI का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव. इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश यहीं संपन्न होता है.

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का, एक और अनेक का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

नैयर के संगीत निर्देशन में एसएच बिहारी के लिखे हुए गीत को आप सुन रहे थे, फिल्म कश्मीर की कली से। आवाज थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो कि फिल्म ताजमहल से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, जिसको लिखा है साहिर ने और संगीत है रोशन का।

आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक और अनेक। अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म अमर अकबर एंथनी से, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में, जिसको लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं अगला गीत, जो कि फिल्म हम दोनों से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार हैं साहिर, संगीतकार जयदेव।

मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा एवं साथियों की आवाज़ों में गीत आपने सुना फिल्म बरसात की रात से। गीतकार थे साहिर और संगीतकार रोशन। इसी के साथ ये कार्यक्रम एक और अनेक यही संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है चित्रपट संगीत के कार्यक्रम का। सदाबहार फिल्म संगीत की वो धारा जहाँ हर सुर में एहसास है, हर गीत में कहानी है और हर धुन दिल से दिल का रिश्ता जोड़ती है। तो आइए इन सुनहरे नगमों के साथ यादों के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं।

तू मिले या ना मिले ये गम नहीं, तेरे गीत हर पल मेरे संग हैं कहीं। तेरी आवाज बन गई है मेरी सांसों की तान, जैसे हर धुन में बसा हो बस तेरा नाम। आप सुन रहे थे फिल्म बागी 2 से ये गीत जुबिन नौटियाल की आवाज में, जिसको लिखा था सईद कादरी ने और संगीत था मिथुन का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो कि है फिल्म छिछोरे से अरिजीत सिंह की आवाज में। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम।

कुछ धुनें दिल को छू जाती हैं और कुछ यादों को जगा देती हैं। उम्मीद है ये गीत भी आपके दिल तक पहुंचा होगा। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला एवं अंतिम गीत, जो कि है फिल्म रॉक ऑन से फरहान अख्तर की आवाज में। शब्द रचना है जावेद अख्तर की और उसमें धुन है शंकर एहसान लॉय की।

इसी के साथ यह कार्यक्रम चित्रपट संगीत यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उसमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन

0: निर्मित नियम के अंतर्गत एफआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
2: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मतदान से पहले एक फैसला होता है।
1: हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी

0: मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
1: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जी यांग को हराकर पहला

0: स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैम्प दूसरे और मिरोस्लावा मिनिचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते
1: हैं? The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through PDS. In a social media post, the Prime Minister said the CCEA's decision will make the delivery, logistics and transportation arrangements under the PDS more transparent and efficient, while also speeding up the resolution of complaints. Home Minister Amit Shah also hailed the approval of Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet.

0: 42 points, held by South Korea's Kim Ye-ji, and claimed the gold medal. India has been awarded the hosting rights for the 2027 Asian Relays and the 2028 Asian Indoor Championships. The decision was taken at the Executive Council meeting of the Asian Athletics Association held in Hong Kong ahead of the Asian Under-20 Championships beginning tomorrow. World Athletics Vice President Adil Sumariwala said the 2027 Asian Relays will be held in Chandigarh, while Bhubaneswar will host the 2028 Asian Indoor Championships. In IPL cricket, Rajasthan Royals were 234 for 6 in 18.1 overs against Sunrisers Hyderabad in the eliminator match in New Chandigarh when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves extension of Sarthak BDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Aisha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं तनवील फरीद। पहले खबरों की सुर्खियां। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की एसआईआर मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मश्क आजाद और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। आसाम असेंबली ने यक्सा सिविल कोड बिल को मंजूर कर दिया है और इस कानून को पास करने वाली मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के आईएसएसएफ आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने मरकजी काबीना की जानिब से सार्थक पीडीएस के दूसरे मरहले के लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दिए जाने को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सरकार गरीबी दूर करने की स्कीमों को टेक्नोलॉजी से लैस कर रही है ताकि उन्हें और ज्यादा शफाफ और आसान बनाया जा सके। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि एआई की मदद से मुस्तफीद होने वाले अफराद का अंदराज जीपीएस के जरिए ट्रैकिंग और क्यूआर कोड जैसे आला टेक्नोलॉजी निजाम के जरिए गरीबों को स्कीमों के 100% फायदे मुहैया किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रियासतों की बढ़ती हुई लॉजिस्टिक लागत के लिए इक्तिसादी मदद की भी गुंजाइश रखी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है कि मुल्क में अवामी निजाम तकसीम पीडीएस के जरिए हर जरूरतमंद फर्द को वक्त पर अनाज फराहम हो। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इस सिस्टम में पीडीएस को ज्यादा जदीद और मुअस्सर बनाने के लिए फैसला किया जा रहा है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये इकदाम पीडीएस के तहत फराहमी लॉजिस्टिक और नकलो हमल के इंतजाम को मजीद शफाफ और मुअस्सर बनाएगा, जिसके साथ साथ ये शिकायतों को हल करने में तेजी भी लाएगा। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने आज पीडीएस में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक पीडीएस को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात

0: बताते हुए इतलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये स्कीम अनाज के एक रियासत से दूसरी रियासत में नकलो हमल के लिए रियासती एजेंसियों, राशन की दुकानों और अवामी निजाम में तकसीम की जदीदकारी में मदद फराहम करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उसमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम में तीन बड़े एआई पर मबनी मॉड्यूल होंगे जिनके नाम हैं निर्मल, आशा और सक्षम। उन्होंने कहा कि निर्मल एक एआई की क्यादत वाली रियल टाइम पीडीएस मुस्तफिदीन का निजाम है, आशा एक कसीर

0: जनाब वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम में तीन बड़े एआई पर मबनी मॉड्यूल होंगे जिनके नाम हैं निर्मल, आशा और सक्षम। उन्होंने कहा कि निर्मल एक एआई की क्यादत वाली रियल टाइम पीडीएस मुस्तफेदीन का निजाम है, आशा एक तस्वीर लेसानी मसनूई जहानत का शिकायतों के इजाले और शहरियों को मुंसलिक करने का प्लेटफॉर्म है, जबकि सक्षम एआई पर मबनी सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है जिसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग भी होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह स्कीम खुराक के तहफ्फुज के कौमी कानून के तहत अहाता किए गए 81 करोड़ 35 लाख अफराद के लिए हुकूमत के अहद को पूरा करने की जानिब काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मौजूदा पीडीएस स्कीम की जगह नहीं लेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जितना मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने सबको मशवरा दिया कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और जब कभी घर से बाहर जाएं तो पानी के बोतल के साथ जाएं। गर्मी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा जरिया बन जाती है। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी का एक गिलास पेश करें। उन्होंने हर किसी पर यह जोर भी दिया कि वो अपने कुनबा के अफराद और अजीजो अकरबा के राबते में रहें और उनकी सेहत के बारे में मालूम करते रहें। उन्होंने ज्यादा मिकदार में पानी पीने की याद दहानी कराएं, उन्हें तीसरे पहर सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करने और ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए घरों के बाहर बालकनियों में, छतों पर, दुकानों पर या दफातर में छोटे बर्तन में पानी भरकर रखें। वजीर आजम ने हर किसी पर जोर दिया कि वो इन मुश्किल अय्याम में मुकम्मल हसासियत और जज्बे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
2: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के शहर गैंगटॉक में पिंक सिटी रनर अमा दीदी बाहनी नामी ख्वातीन मरकूज सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। सिर्फ ख्वातीन के लिए यह बस सर्विस पूरे तौर पर ख्वातीन अमले के जरिए ऑपरेट की जाएगी, जिसका मकसद ख्वातीन मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और सस्ता ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। बाद में दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की 7वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमू तरक्की के लिए शुमाल मशिक की तरक्की इंतहाई अहम है।
3: नॉर्थ का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी जाम नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और यह भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन को आवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून

प्रक्रिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फेरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी करने का इख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फेरिस्तों पर खुसूसी जाम नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। अदालत ने कहा कि एसआईआर का अमल आजाद और शफाफ इंतखाब करने के मकसद को हासिल करना रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खुसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूद तरीक़ाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी अख्तियारात से तजावुज किया है। अदालत ने मजीद कहा कि चुनाव कमीशन ने जो वजूहात रिकॉर्ड की हैं उनका वाज़े मकसद इसकी बुनियादी सियासत को बरकरार रखना है। इनमें चार दहाइयों से ज्यादा मुद्दत पहले खुसूसी नजरसानी कराना, पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर राय दहिंदगान का इजाफा होना और हजफ करना, नीज तेजी के साथ बढ़ते हुए शहरी इलाके और नकल मकानी के मामलात शामिल हैं जिनकी वजह से चुनाव फहरिस्तों में मुसन्ना साजी और अदम दुरुस्तगी का इम्कान हो सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आसाम कानून साज असेंबली ने आज यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आसाम इस तरह के बिल को मंजूरी देने वाली शुमाल मशरक में पहली और मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। यकसा सिविल कोड आसाम बिल 2026 को पीर के रोज 16वीं आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इजलास के दौरान पेश किया गया था, जिसे ऐवान ने आज इजलास के आखिरी दिन मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मंजूर किए जाने पर आसाम के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि यकसा सिविल कोड उस वक्त से बीजेपी का अजम रहा है जब से इसका कयाम अमल में आया है। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज तमाम हाजियों को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने इस साल हज के दौरान भारतीय आजमीन हज को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने पहली बार सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए आरजी आंसर की जारी की है। एक बयान में कमीशन ने कहा है कि जो उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए हैं वो 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर दस्तयाब ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल पर अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। एक बड़ी छापेमारी में गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी के स्क्वाड और भारतीय साहिली मुहाफिजों ने आज गुजरात में कुछ जिले के साहिल के पास 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुश्तबा मनशियात के 115 पैकेट जब्त किए। ये मनशियात एक कश्ती से बरामद की गई जो कच्छ मुंद्रा बंदरगाह की जानिब जा रही थी। म्यूनिख में मुनक्किदा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ईशा ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकिर्दगी का मुजाहिरा किया है। उन्होंने मुमकिना 50 पॉइंट में 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बरस मुनक्किदा होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हुकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्किद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बरेआजम एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स काउंसिल की मीटिंग एशियाई U20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्किद हुई जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,000

500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में इंतलाई तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती है, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। मैं हूँ आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
1: प्रकाश जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहाँ पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहाँ पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
2: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पर बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पर रोशनी डाली है कि देश के सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए दोनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। तो यही कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया, उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पर उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो हम तो वहाँ पर सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहाँ पर रहेंगे। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे भी जिसकी वजह से घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था, वो बांग्लादेश तो बना था पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। इतना ही हो कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहाँ पर डरते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेज बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और ये 4 टास्क फोर्स बड़े हाई प्रायोरिटी बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी माधव गोड बोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,000 बात है, 1,000 की बात है। उसके बाद भी बढ़ता रहा होगा, आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा जा सकते हैं। अलग अलग समय पर भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 4 टास्क फोर्सेज की रिपोर्ट को इवेल्युएट

0: में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों का होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बात आ जाएगी 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया। और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से ही बहुत पहले चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद बांग्लादेश ये मांग करें कि असम के जो सीमावर्ती असम बाहुल्य प्रदेश है इन्हें बांग्लादेश में होने दें क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये अच्छा नहीं। कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है, 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि उन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीच में देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं अगवाल किले की पार्टी से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत को मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने एक तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसंख्या में अकुत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसंख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा है नोएडा में अचानक से एक इलेक्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, INDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बात तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद

0: करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए सीएए जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे है बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सूझी समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था, ये साफ साफ दिखाता है। या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक तनाव बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात, किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आगे है उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है, और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किया है, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बने हैं वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देंगे और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठ का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित कर, बिल्कुल सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। अगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पूरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको

0: संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
2: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी है अगर वो डिटर्मिन है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब को ऐसा काम किया है, उसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा गया, उसके बाद उसकी किताबें मैंने खोल कर रख दिया। बहुत सारे बड़े बांग्लादेशी जो थे, बड़े मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे, वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। तो मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करते थे, उसको बॉर्डर पार रोकते थे, उनको पंजाब पुलिस को हैंड ओवर करते थे, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे आतंकवाद से लड़े कि इनको कलकत्ते पहुंचाए, फिर छोड़ दें इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू डिड दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पास इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी को भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने तो इसका डिंडोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ही काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो बड़े साहब ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे अब बड़े साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए, अभी जैसे प्रभु जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको रिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या को आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहें कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया गया। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी, और इस आदमी को दो कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये दो कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मोबाइल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इस पर हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर मैं कहता हूं कि इस पर हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ जितना भारत सरकार का आंकड़ा हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक है चिकन नेक के अगल बगल चैनपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहेंगे इतने आदमियों को रहने के लिए कितने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, कितनी जमीन आपको देना पड़ेगा, वो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो उनको वापस लो, एक एक्शन लेना पड़ेगा हमें, उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रोफेसर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनती जा रही है भारत जैसे देश में जहाँ की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
0: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर लेना चाहता हूं।
1: जी,
0: 1983 में जो आईएनडीटी एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री जी, मुझे स्मरण है शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। आईएनडीटी एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। आईएनडीटी एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बयान नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है,

0: कि ये भारत का नहीं है, और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में एक कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद पता नहीं जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर, लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भी हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, जो भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ही आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, एयरलाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्रों में बनी हुई है, जिसके कारण उस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंजेस बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting.
1: प्रफुल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पहले नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
0: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल की चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज जकड़ देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पड़ोस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये संभव है। ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का एक कहता था मध्य प्रदेश की समस्या, मध्य प्रदेश वाला कहता था उसमें क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा केंद्र सरकार ने जब यह समिति बनाई है, तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि

0: क्या निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले डिटेक्ट डिलीट एंड डिकोड, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा करकर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमें क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को, घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
3: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। और हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, और खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली या क्वार्टरली कुछ इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पर कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है। जब हम नक्सल समस्या पर विजय पाई है तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से हो सकती है, इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रकाश जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
0: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसकी जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नमेंट्स में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, यह पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो

0: व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम चर्चा का विषय है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। पेश है हिंदी फिल्म जगत की वो अनमोल गीत जिन्होंने दशकों तक दिलों पर राज किया है। कभी रोमांस की मिठास, कभी जुदाई की कसक, तो कभी दोस्ती की मस्ती, हर एहसास को बखूबी बयां करते हैं गीत। आज फिर गूंजेंगे आपकी धड़कनों में।

उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के लिखे हुए गीत को आप सुन रहे थे फिल्म दिल तो पागल है से। आवाजें थी लता मंगेशकर और उदित नारायण की। आइए आप सुनते हैं अगला गीत जो कि यह फिल्म कुछ कुछ होता है से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीतकार हैं समीर और संगीतकार जतिन ललित।

कैसी लत लगी है तेरे दीदार की, कैसी लत लगी है तेरे दीदार की, बात करो तो दिल नहीं भरता, बात ना करो तो दिल नहीं लगता।

कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाजों में ये गीत आपने सुना फिल्म दिल है तुम्हारा से, बोल लिखे थे समीर ने और संगीता नदीम श्रवण का। आइए अब सुनते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है जतिन ललित का।

हुए गीत को अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में आपने सुना फिल्म कसूर से, धुनती नदीम श्रवण की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, जो कि फिल्म राजा हिंदुस्तानी से उदित नारायण की आवाज में, जिसको लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

कुछ नगमे आवाज नहीं होते, वो एहसास बनकर दिल में उतर जाते हैं और जब भी बजते हैं बीते लम्हों से फिर मुलाकात करा जाते हैं। इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम फिल्म संगीत यही संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर से राग रामदासी मल्हार में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर से राग रामदासी मल्हार में ख्याल गायन। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद, वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने

की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सुबह 5:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।